हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के सावन माह की तिथि 19 तदनुसार 10 अगस्त सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा। आज की सभा में आप सभी का स्वागत है।

0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आई सुनते हैं हिंदी में समाचार अपने दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
1: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
4: घर घर तिरंगा, आसमान को पाना है।
1: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता

0: में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। होर्मुज डमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दावा किया है कि उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उनकी ये टिप्पणी ईरान, ओमान और अमरीका के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चल रही बातचीत के रुकने के बीच आई है। मुंबई के सोम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी में खेले गए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की टीम इवेंट फाइनल में भारत और हांगकांग चीन के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा, लेकिन गेम के बेहतर अंतर के आधार पर भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए चिंतन के इन पलों को आत्मसात करते हैं, सुनते हैं ये विचार।
2: गुरु का अर्थ होता है अंधकार को दूर करने वाला। अंधकार है मन का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार और हृदय का भी अंधकार। सच्चाई जब नहीं दिखाई पड़ती है, विशाल हृदय जब स्वार्थवश संकुचित होकर आत्मा को कैद करता रहता है, तब हम अंधकार में जीते हैं। तभी हम मानव यानी जीवों की सर्वश्रेष्ठ रचना के पद से गिर जाते हैं। इसीलिए तलाश होती है प्रकाश की, रोशनी की। हमारे ऋषियों ने उज्ज्वलता के लिए प्रार्थना की है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। ये ले जाने वाला व्यक्ति कौन है? हाँ, यही है गुरु। गुरु शिक्षा से हमारे जीवन दीप को प्रज्वलित करता है और हम जगमग कर देते हैं जग को। गुरु का एक अर्थ होता है भारी। जो भारी है वही झुककर कुछ दे सकता है। भारी बादल जल की अपार राशि से झुका रहता है और जगत पर सृष्टि वर्षा की बूंदों से नृत्य कर उठती है। गुरु यानी शिक्षक को भी अपने ज्ञान से भारी होना होता है, तभी वो उढ़ेल सकता है ज्ञान रोशनी की शुभ्र धारा को। हल्का बादल गर्जन तर्जन करता हुआ व्यर्थ उड़ जाता है। वैसे ही बिना ज्ञान के गुरु गुरु हो ही नहीं पाते। हम वस्तुतः होते क्या हैं, कैसे हैं, क्या होना है हमें, ये हम गुरु के ज्ञान रूपी दर्पण और निर्देशन में ही दे।

पाते हैं, समझ पाते हैं। गुरु ही हमें जड़ चेतन, क्षुद्रता विशालता, अंधकार प्रकाश, क्षणभंगुरता अनश्वरता के दर्शन कराता है, हमारे विवेक को जागृत करता है और हम निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, हम समझने लायक होते हैं। बड़ी उहापोह में था अक्खड़ साधु कबीर। उसकी कल्पना उसी को डगमगा रही थी। क्या करे कबीर जब गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। पर तभी कबीर के गुरु द्वारा प्रकाशित हृदय में उत्तर कौंद गया। अरे कबीर अल्हड़, तू भगवान को क्या जानने लगा? भगवान की महत्ता, शक्ति, भगवान का अस्तित्व, किसी चीज का पता तुझे कहां था पगले? गुरु ने ही तो तुम्हें भगवान के बारे में बताया। और तब कबीर की वाणी निस्सृत हुई, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। गुरु तो ईश्वर से पहले पूजे जाने का अधिकार रखते हैं। गुरु के लिए भी जरूरत बहुत से चीजों की है। महात्मा गांधी ने सच ही कहा था, लंका में बैठा सावधान शिक्षक अपने आचरण से शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। सही शिक्षकों को सावधान होना होगा, ज्ञान प्राप्ति को देने की उदात्त भावना को जगाए रखना होगा। सबसे बड़ा महत्व है गुरु के जीवन और आचरण का। गुरु को अपना आचरण शिक्षा के अनुरूप ढालना होगा, तभी शिक्षा की सार्थकता होगी।

FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश भक्ति गीतों का हमारा कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले एक देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, कुछ लोग अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं और कुछ लोग अपनी हार बिल्कुल नहीं स्वीकार करते हैं, और जो हार स्वीकार नहीं करते हैं उनकी जीत आगे तय होती है।

जिसने हार को मंजिल नहीं एक पड़ाव की तरह माना, उसके लिए आगे एक खूबसूरत मंजिल इंतजार कर रही होती है। हार को हार नहीं बल्कि उसे भविष्य की जीत के रूप में देखना चाहिए।

0: श्रोताओं, इसी खूबसूरत से भजन के साथ ही भक्ति गीतों का हमारा कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी।
1: फाइव सेवन

दीर्घ काल तक राज्य करते हुए मनु को जब वृद्धावस्था का आभास मिला तो उनके मन में ग्लानि हुई कि हरि के भक्ति बिना जीवन अकारथ बीत गया। अतः स्वेच्छा से पुत्र को राजकाज सौंपकर पत्नी शत्रुपा के साथ उन्होंने वन की राह ली। वर्षों के तीर्थाटन तथा हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दंपति को प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत और अनुपम रूप मनु दंपत्ति की आंखें जैसे आघातीन न थी। दंपत्ति की भक्ति, समर्पण तथा कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, लेकिन उनके साक्षात दर्शन से ही मनु शत्रुपा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थीं। अतः मांगने को रहा क्या था। फिर भी मन में एक लालसा थी जिसका पूरा होना सहज भी था और कठिन भी, अतः उसे प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। जब प्रभु ने बार बार उन्हें निसंकोच हो मन चाहा वर मांग लेने को कहा तो मनु बोले, हे नाथ, मेरी सच्ची साध है कि मुझे आपके समान ही पुत्र प्राप्त हो। मनु की प्रीति देख करुणा निधान बोले, ऐसा ही होगा, किंतु हे राजन, अब मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूंगा, अतः स्वयं आकर ही आपका पुत्र बनूंगा। इसी प्रकार शत्रुपा को भी उनका मन चाह वरदान प्राप्त हुआ।

श्री रामचरित्र मानस का श्रोता भी सुन रहे थे। इसके आज की कड़ी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण, आज के तहत जानते हैं अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोता आपसे कुछ ही देर बाद 7 बजे सुनेंगे लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम लोक रंग विविधा। हिंदी वार्ता का यह कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:20 पर। गीत संगीत गैर फिल्मी एल्बम पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर। मॉर्निंग मेलोडी ये कार्यक्रम होगा सुबह 8:45 पर। हेलो हजारीबाग ये कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे सुबह 10 बजे। आज के इस प्रोग्राम में होंगी कई बातें, चर्चा करेंगे जैव ईंधन और पर्यावरण संरक्षण का महत्व विश्व जैव ईंधन दिवस के संदर्भ में, बड़ों के प्रति आदर और सम्मान का क्या महत्व है, इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे।

के बारे में शाम 5:30 पर आप सुनेंगे, माफ कीजिएगा शाम 5:02 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम इवनिंग मेलोडी। खेती बारी हमारा यह कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 पर।

श्रोताओं, आज सोमवार है, आज के दिन हम लेकर आते हैं महिलाओं का हमारा कार्यक्रम अंगना। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:02 पर।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए पेश है लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम लोकरंग।

0: श्रोता साथियों, इसी लोकगीत के साथ ही लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम लोकरंग यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे खोटा और नागपुरी लोकगीत। आज के हमारे कलाकार थे इग्नेश कुमार, महावीर नायक और सत्येंद्र मिश्र। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है हिंदी वार्ता का हमारा कार्यक्रम विविधा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं संदीप सिन्हा की वार्ता बहुप्रतिभा सिद्धांत और रुचि के अनुसार करियर का निर्माण। आज आप सुनेंगे इसका पुनः प्रसारण।
1: विभिन्न कृतियों में मानव का स्थान श्रेष्ठ कहा जाता है। ऐसा उसकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर माना जाता है। बुद्धि के स्तर को मापने की एक और इकाई है प्रतिभा। आमतौर पर एक व्यक्ति एक ही प्रतिभा रखता है, जैसे कि पढ़ने में तेज होना या खेलने में तेज होना या संगीत पे अच्छा होना। लेकिन किसी व्यक्ति में ये तीनों प्रतिभाएं हैं, जैसे वह पढ़ने में भी तेज है, खेलने में भी तेज है और संगीत में भी अच्छा है, तो इसे बहुप्रतिभावान कहा जाएगा। बहुप्रतिभा या मल्टीपल इंटेलिजेंस एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती है, लेकिन बात जब प्रधान प्रतिभाओं की करें तो किसी में 2 तो किसी में 7 प्रतिभाएं संतुलित रूप से हो सकती हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिभाओं के वर्गीकरण के क्रम में पहली 2 को स्कूलों में विशेष महत्व देने की बात कही, अगली 3 को सामान्य कला से जोड़ा और अंतिम 2 को व्यक्तिगत प्रतिभा करार दिया। वे 7 प्रतिभाएं क्या हैं? आइए क्रमानुसार जानते हैं। दृश्य संबंधी या स्थानिक प्रतिभा। दृश्य को समझने की क्षमता वाले लोग चित्रों के रूप में सोचते हैं। इन्हें नक्शों, चार्ट, चित्रों एवं फिल्म देखने में आनंद आता है। उनके कौशल में पहेलियां बनाना, पढ़ना, लिखना, चार्ट एवं ग्राफों को समझना, स्केच बनाना, प्रतिबिंबों में हेरफेर करना, वास्तविक वस्तुओं की डिजाइन बनाना शामिल होता है। इस प्रकार की प्रतिभा वाला व्यक्ति नाविक, आर्किटेक्ट, मैकेनिक, इंजीनियर या इंटीरियर डेकोरेटर बनता है। शाब्दिक या बहुभाषा प्रतिभा। ऐसी प्रतिभा वाले व्यक्ति चित्रों के बजाय शब्दों में सोचते हैं। सामान्यतः ये शिष्ट वक्ता होते हैं। इनके कौशल में लिखना, बोलना, सुनना, कहानी कहना, हास्य का उपयोग, शब्दों के विन्यास एवं अर्थ की समझ, किसी को अपना विचार मनवाना और भाषा के उपयोग का विश्लेषण करना। ऐसे लोग कवि, पत्रकार, शिक्षक,

राजनीतिज्ञ और अनुवादक बनते हैं। तार्किक या गणितीय प्रतिभा, ऐसी प्रतिभा वाले व्यक्ति तार्किक एवं संख्यागत तरीकों से संकल्पना कर विभिन्न जानकारियों के बीच समन्वय बैठाते हैं। अपने परिवेश के प्रति हमेशा जिज्ञासु होते हैं। उनके कौशल में प्राकृतिक घटनाओं के बारे में प्रश्न एवं विस्मय करना, जटिल गणितीय गणना करना, ज्यामितीय आकारों के साथ काम करना या जानकारी को वर्गों में बांटना शामिल होता है। ऐसी प्रतिभा वाले व्यक्ति वैज्ञानिक, लेखापाल, गणितज्ञ, कंप्यूटर प्रोग्रामर या शोधकर्ता बनते हैं। दैहिक या इंद्रियगत प्रतिभा, ऐसी प्रतिभा वाले व्यक्ति में शारीरिक हलचल एवं वस्तुओं को पकड़ने की दक्ष क्षमता होती है। ये खुद को हलचल के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इनमें हाथ एवं आँख के समन्वय का बेहतरीन बोध होता है। इनके कौशल में नृत्य, खेलकूद, अभिनय, कला एवं शारीरिक भाषा के बेहतर उपयोग की दक्षता होती है। ऐसी प्रतिभा वाले व्यक्ति एथलीट, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक, अभिनेता, नर्तक एवं कारीगर बनते हैं। तालग्राही या सांगीतिक प्रतिभा, ऐसी क्षमता या प्रतिभा वाले लोग अपने आसपास की ध्वनि के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं, जैसे चिड़ियों की चहचहाहट, झिंगुर की आवाज़ या फिर वर्षा की बूंदों का शोर। ऐसे व्यक्ति ध्वनि ताल या पैटर्न के रूप में सोचते हैं। इनके कौशल में स्वर लहरी पहचानना, संगीत रचना और स्वर लहरी के ताल एवं संगीतीय ढांचे को याद रखना शामिल है। ऐसी प्रतिभा वाला व्यक्ति गायक, संगीतकार या वादक बनता है। अंतर्व्यक्तित्व प्रतिभा, ऐसे लोगों में दूसरों को समझने की प्रतिभा होती है। ये किसी बात को अन्य लोगों के नज़रिए से देखने और समझने का प्रयास करते हैं। वे दूसरों से बातचीत शुरू करने के लिए बोलकर या नज़रों से सांकेतिक भाषा का प्रयोग दोनों करते हैं। इनके कौशल में लोगों की मनोदशा, प्रोत्साहन और इरादों पर ध्यान देना, विश्वास का निर्माण, शांतिपूर्ण ढंग से विवाद निपटाना और अन्य के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करना शामिल होता है। अंतर्व्यक्तित्व प्रतिभा वाले व्यक्ति व्यापारी, राजनीतिक या परामर्शदाता बनते हैं। अंतःव्यक्तित्व प्रतिभा, ऐसे प्रतिभावान लोगों में अन्य की अंतः स्थिति को समझने की क्षमता होती है। वे दूसरों के साथ संबंधों एवं उनकी शक्तियां और कमजोरियों को समझने की कोशिश करते हैं। इनके कौशल में स्वयं की शक्ति और कमजोरी पहचानना, अंदरूनी भावनाओं के प्रति जागरूकता, सोच प्रक्रिया का आकलन, स्वयं के साथ तर्क वितर्क तथा दूसरों के साथ स्वयं की भूमिका की समझ शामिल है। ऐसी प्रतिभा वाले व्यक्ति दार्शनिक, सिद्धांत प्रतिपादक या अनुसंधानकर्ता बनते हैं। आपने जाना हार्वर्ड गार्डनर के 7 प्रतिभाओं के सिद्धांत को। आइए अब नजर डालते हैं इनकी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में किन 3 विशेष प्रतिभाओं को विस्तारित किया गया है। हार्वर्ड गार्डनर की पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड 1983 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें प्राकृतिक प्रतिभा, आध्यात्मिक प्रतिभा और अस्तित्व संबंधी प्रतिभा पर चर्चा की गई है। जहां तक प्राकृतिक प्रतिभा की बात करें तो यह प्रतिभा मानव को पहचानने, श्रेणी में बांटने और सांस्कृतिक मूल्यों का आदर का भाव जगाती है। आइए अब जानते हैं यदि स्कूलों में हार्वर्ड गार्डनर के बहुप्रतिभा सिद्धांत या मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी को अपनाया जाए तो क्या होगा, बच्चों के प्रतिभा निर्माण में यह कैसे सहायक होगा। स्कूल छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं प्रतिभाओं के आधार पर उन्हें सीखने का अवसर प्रदान करेंगे, जिससे छात्र अधिक क्रियाशील और समर्पित विद्यार्थी बनेंगे। छात्र अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर उसे अपने सहपाठियों संग बांट सकेंगे। इसके द्वारा छात्रों को एक विशेषज्ञ बनने का प्रोत्साहन मिलेगा। शिष्य की तरह सीखने की गतिविधि अन्य छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में शामिल करेंगे। गार्डनर के सिद्धांत माने तो सीखना सामाजिक एवं

0: मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। छात्र जब अपनी बहु प्रतिभाओं का संतुलन समझने लगेंगे तो उनमें व्यक्तिगत शक्तियों के सम्मान की सीख मिलेगी और वे स्वयं सीखने की प्रक्रिया भी समझने लगेंगे। इससे शिक्षक भी जान पाएंगे कि किस छात्र में प्रबल अंतर व्यक्तित्व प्रतिभा की संभावना है। व्यक्ति में शक्ति उत्पन्न करने का अवसर भी सरल हो जाएगा। बहु प्रतिभा सिद्धांत वास्तव में किसी बालक में उसकी रुचि की प्रतिभा के विकास का अवसर प्रदान करती है, जिसे वह खुशी खुशी अपनाता है और क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ बनकर उभरता है। अध्ययन की इस राह में वह कुंठित नहीं बल्कि वास्तविक जिज्ञासु या व्यवहार करता है। खोज कर पाने की ललक उसे एक प्रतिभा संपन्न बनाती है।
1: अरे पहुंच गया।
2: बहु प्रतिभा सिद्धांत और रुचि के अनुसार करियर का निर्माण, अभी आप सुन रहे थे संदीप सिन्हा की पूर्व प्रसारित यह वार्ता। इसी के साथ ही हिंदी वार्ता का हमारा कार्यक्रम विविधा यही समाप्त होता है। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए पेश है गैर फिल्मी एल्बम पर आधारित हमारा कार्यक्रम गीत संगीत।

हम आपको बता दें कि अपने ट्यून के FM हजारीबाग और इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत संगीत। आज के कलाकार हैं गुलाम अली और पंकज उदास।

के 7:59 हुए हैं। कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने दिल्ली केंद्र के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। इसके तुरंत बाद 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार अपने रांची केंद्र से। तो समाचारों के लिए थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।

0: सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्मी ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
4: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
5: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: तिरंगा, हर घर तिरंगा।
3: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर

0: से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
1: कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है, क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। तिरंगे की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
2: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
3: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार 3 दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर

0: और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसलुनिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेल मार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाच ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून टर्फ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले दो दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाश समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
3: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, JPSC के सभी सदस्यों का इस्तीफा, तीन परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी CBI जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नवभारत टाइम्स लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने के लिए चार बड़ी घोषणाएं की। संसद के मानसून सत्र को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के अनुसार संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूट सकता है गतिरोध, लोकसभा में आ जाएंगे 4 विधेयक। मेटा को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, दैनिक जागरण की।

0: खबर है। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की टर्बुलेंस फ्लाइट के मुख्य पायलट का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट संदिग्ध पाया गया। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार परीक्षण की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार, जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक डीजीसीए ने उड़ान चालक दल के दोनों सदस्यों को ड्यूटी से हटाया। डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा, हिन्दुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है। बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितम्बर से लागू होंगे।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस पीपल टू जॉइन हर घर तिरंगा मूवमेंट एंड होइस्ट द ट्राइकलर एट होम्स। India crosses 300 gigawatts of non-fossil fuel-based installed electricity generation capacity. Indian and US Navy's explosive ordnance disposal exercise to begin today at Southern Naval Command in Kochi. Russia proposes railway route to India to reduce dependence on strategically important maritime routes like Strait of Hormuz. And Maharajan Arumuga Pandian clinches silver medal in men's 65 kg category at Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." The Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram, and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. In his Man Ki Baat program on Akashvani last month, Mr. Modi urged people to hoist the tricolour at homes.
3: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।
2: More on this in this report.
4: Ghar ghar tiranga, har ghar tiranga.
5: The Ministry of Culture has said the Har Ghar Tiranga campaign this year would seek to bring the spirit of patriotism to streets and homes across the country through Tiranga Yatras, Tiranga Rallies, Tiranga Concerts and mass singing of Vande Mataram. The Ministry said the 150th anniversary of Vande Mataram would provide an opportunity for citizens to celebrate the national song as part of the Independence Day festivities. A key feature of this year's celebrations will be Surya Path Tiranga, described by the Ministry as a first-of-its-kind initiative aimed at bringing Indians across the world together in a global celebration of the tricolour. The Ministry has appealed to citizens to hoist the national flag at their homes and upload their selfies on the Har Ghar Tiranga website. The Har Ghar Tiranga campaign has emerged as a nationwide public participation initiative associated with Independence Day celebrations, encouraging citizens to display the national flag and express their connection with the country. Ashish Abraham, Akashwani News, Delhi.
2: The Har Ghar Tiranga movement is gaining momentum across the nation. In Maharashtra, the Har Ghar Tiranga campaign has begun with patriotic fervor. More from our correspondent.
6: Tiranga rallies were organized in various districts of Maharashtra, including Bid, Thane and Buldhana, with enthusiastic participation from students, sportspersons, NCC cadets and citizens. In Thane, a cycle rally also promoted environmental conservation.

0: Parliamentary panel pitches integrated security grid for J&K's tourist spots as a headline in the Tribune. And finally, a report says with 99.95% punctuality, Delhi Metro beats New York, Hong Kong, Paris, line setting a new benchmark amongst the most reliable in the world, states Hindustan Times. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges people to join Har Ghar Tiranga movement and hoist the tricolour at homes. India crosses 300 gigawatts of non-fossil fuel-based installed electricity generation capacity. Indian and US Navy's explosive ordnance disposal exercise to begin today at Southern Naval Command in Kochi. Russia proposes railway route to India to reduce dependence on strategically important maritime routes like Strait of Hormuz. And Maharajan Arumuga Pandian clinches silver medal in men's 65 kg category at Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
3: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
4: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
3: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बाद भी गतिरोध बरकरार, आंदोलन जारी रखने का निर्णय। राज्य सरकार ने छात्रों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा, सरकार ने अधिकांश मांगे मानी, जेएसएससी परीक्षाओं पर कोर्ट के आदेश पर फैसला संभव। राज्य के जिला कोषागारों से अवैध निकासी के बाद राज्य सरकार ने तकनीकी प्रणाली में बदलाव करने का लिया निर्णय। अब बैंक खाता और पैन सत्यापन के बिना नहीं होगा भुगतान। राजकीय श्रावणी मेले की दूसरी सोमवारी पर बैद्यनाथ धाम में सुबह 8 बजे तक 70,000 कांवरियों ने किया जलाभिषेक। रांची के पहाड़ी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। और राज्य में अगले 5 दिनों तक मॉनसून के सक्रिय होने के संकेत, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बाद भी गतिरोध बना हुआ है। आंदोलन के 16वें दिन तीसरे दौर की वार्ता में अधिकांश मुद्दों पर सहमति बनी। हालांकि सभी मांगों पर अंतिम सहमति नहीं बनने के कारण छात्रों ने आंदोलन जारी रखने और विधानसभा घेराव का निर्णय जारी रखा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार तीन दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। मंत्री सुदीव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार सीबीआई जांच के बजाय 90 दिनों में जांच पूरी कराने और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित करने के पक्ष में है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राज्य सरकार ने छात्रों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। मंत्री सुदिव्य सोनू ने कल देर शाम प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार ने अधिकांश मांगे मान ली हैं। दोनों पक्षों में सहमति बनी कि 14वीं जेपीएससी और बैकलॉग 2023 और 2025

0: परीक्षा रद्द होगी। टीडीपीएल कंपनी ने जितनी भी परीक्षाएं ली हैं उनकी जांच सीआईडी करेगी, जबकि सरकार वित्तीय गड़बड़ी के मामलों की जांच ईडी से कराएगी।
1: बड़े दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि इन तमाम प्रयासों के बाद भी छात्रों के तरफ से सीजीएल को रद्द करने को लेकर और सीबीआई की जांच को मांग को लेकर इस समझौता वार्ता टूट गई। तमाम छात्रों से यह विनम्रता पूर्वक अपील करना चाहता हूं कि आपकी अधिसंघ के मांगों को सरकार ने मांगा, जो मामले न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनका प्रकाशन हुआ था परीक्षा फल का, उसको रद्द करना सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था। यदि इस संबंध में ऑनरेबल कोर्ट का कोई डायरेक्टिव आएगा तो वो सरकार निश्चित रूप से उसको मानेगी।
0: जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के विरोध में आज के प्रस्तावित विधानसभा घेराव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। कचहरी चौक से लेकर विधानसभा तक सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। इधर रांची जिला प्रशासन ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन ने कहा कि झारखंड विधानसभा के नए परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन या विरोध करना प्रतिबंधित है। प्रशासन का कहना है कि कानून तोड़ने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हजारीबाग, बोकारो और पलामू समेत विभिन्न जिलों के कोषागारों से अवैध निकासी मामलों के बाद राज्य सरकार ने सरकारी भुगतान व्यवस्था को और सुरक्षित बनाने के लिए तकनीकी प्रणाली में बदलाव करने का निर्णय लिया है। भुगतान प्राप्त करने वालों के बैंक खाते तथा पैन का ऑनलाइन और वास्तविक समय में सत्यापन किया जाएगा। बैंक खाते के विवरण में गड़बड़ी या खाता संख्या का मिलान नहीं होने पर वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली से भुगतान रोक दिया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
2: श्रावणी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
3: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
4: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
3: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत छाताबाद में भू धसान की घटना के बाद भी बीसीसीएल की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं किए जाने से लोगों में नाराजगी है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी कल छाताबाद पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
5: जिला प्रशासन को जानकारी है, हमारे सारे पदाधिकारी आए हैं, लेकिन जो सच्चाई ये है कि बहुत बुरा हाल है और घर गिर गया, भूदशान हो गया, तो अब विस्तृत रिपोर्ट हम बनाएंगे और जिनका घर गिरा है उनको आशियाना हमारी सरकार देगी। बीसीसीएल क्या कर रहा है? इलीगल माइंस हो रहा है, कोयला चोरी हो रहा है और आप चुपचाप हैं।
0: सावन की दूसरी सोमवारी पर आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम, रांची के पहाड़ी मंदिर और राज्यभर के शिवालयों में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। देवघर से हमारे संवाददाता ने बताया कि सुबह 8 बजे तक करीब 70,000 श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया।
6: हर हर महादेव। बाबा नगरी देवघर में राजकीय सावनी मेला की दूसरी सोमवारी को श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। रात 1 बजे ही बाबा बैद्यनाथ धाम पर जलार्पण के लिए कांवरियों का कतार नंदन पहाड़ से चमरी डी पुल तक पहुँच गयी है। सोमवार सुबह पट खुलते ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार जलाभिषेक के लिए लगी है। भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर QRT पर्याप्त पुलिस बल और दंडाधिकारी की तैनाती 24 घंटे की गई है ताकि हर

0: कांवरियों को सुरक्षित और सुगम जलार्पण का अनुभव मिल सके। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
1: राज्य में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। झारखंड में अगले 5 दिनों तक बादल छाए रहने और कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। रांची की युवा स्क्वाश खिलाड़ी आद्या बुधिया ने हांगकांग जूनियर स्क्वाश ओपन 2026 के बालिका अंडर 17 वर्ग में चैंपियन बनकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झारखंड का नाम रोशन किया है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने लगातार 5 मुकाबले जीते। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों और सरकार के बीच 3 दौर की वार्ता में भी अंतिम सहमति नहीं बनने को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, सरकार 14वीं जेपीएससी पीटी और बैकलॉग परीक्षा रद्द करने और ईडी से जांच पर राजी, नहीं माने छात्र, आज विधानसभा मार्च की चेतावनी। दैनिक भास्कर ने सीआईडी से पूछताछ में टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी के खुलासे की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अखबार ने लिखा है, ख्यांगते की एजेंसी से डील, 2 करोड़ 1 मुश्त और 20% कमीशन। जेपीएससी विवाद पर आयोग के अध्यक्ष के बाद अब जेपीएससी के 3 सदस्यों के इस्तीफे की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पेज पर जगह दी है। वहीं हिंदुस्तान ने आदिवासी महोत्सव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, धरती पर आदिवासी समाज की अलग पहचान। और अंत में मुख्य समाचार। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और राज्य सरकार के बीच 3 दौर की वार्ता के बाद भी गतिरोध बरकरार, आंदोलन जारी रखने का निर्णय। राज्य सरकार ने छात्रों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा, सरकार ने अधिकांश मांगे मानी, जेएसएससी परीक्षाओं पर कोर्ट के आदेश पर फैसला संभव। राज्य के जिला कोषागारों से अवैध निकासी के बाद राज्य सरकार ने तकनीकी प्रणाली में बदलाव करने का लिया निर्णय। अब बैंक खाता और पैन सत्यापन के बिना नहीं होगा भुगतान। राजकीय श्रावणी मेले की दूसरी सोमवारी पर बैद्यनाथ धाम में सुबह 8 बजे से 70,000 कांवरियों ने किया जलाभिषेक। रांची के पहाड़ी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। और राज्य में अगले 5 दिनों तक मॉनसून के सक्रिय होने के संकेत, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए पेश है प्रोग्राम मॉर्निंग मेलोडी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी
2: एक ट्रेड में सिक्सर
3: ए अक्का
4: प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर,
5: मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हम हैं राही प्यार के श्रोता, भी सुन रहे थे कार्यक्रम का पहला गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। अब हम आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म का नाम हम आपको बता दें, इसे हमने लिया है फिल्म जीना तेरी गली में। इससे

बी प्राक को आप सुन रहे थे केसरी में, और इसी के साथ ही मॉर्निंग मेलोडी का आज का ये खूबसूरत सा छोटा सा सफर यहीं समाप्त होता है। सूरज को दीजिए रमती नमस्कार। श्रोता भी सुन रहे थे मॉर्निंग मेलोडी एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं। आइए अब हम आपको शामिल करते हैं अपने विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों में।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। साथियों, मुस्कान वो खूबसूरत एहसास है जो बिना कुछ कहे दिलों तक पहुंच जाता है। इसे बांटने में कोई खर्च नहीं होता, मगर किसी का पूरा खूबसूरत दिन बन सकता है। यानी कि आपकी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है। तो कभी कभी यूं ही बेवजह मुस्कुरा लेना चाहिए किसी को देखकर, ताकि उनका दिन बन जाए और आपकी मुस्कान से आपका भी दिन अच्छा शुरू हो जाए। तो चलिए इसी के साथ सुनते हैं भूल भुलैया 3। इस फिल्म का गीत सोनू निगम की आवाज, समीर की शब्द रचना और अमाल मलिक और प्रीतम का संगीत।

भूल भुलैया तीन फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आइए अब आपको सुनवाते हैं धमाल चार। इस फिल्म का गीत आवाज संजू राठौड़ की। रश्मि विराग और संजू राठौड़ ने इस गीत की रचना की है, तनिष्क बागची और संजू राठौड़ का संगीत।

0: और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं एमी विर्क और बी प्राक की आवाजों में योद्धा फिल्म का गीत। जानी ने इसके बोल लिखे हैं और बी प्राक और आदित्य देव का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं सितारे जमी पर। इस फिल्म का गीत सिद्धार्थ महादेवन और शंकर महादेवन और दिव्या कुमार की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं शंकर एहसान लॉय का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल प्रीतम का संगीत।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा हुजूर।
3: पति पत्नी और वो दो, इस फिल्म का गीत सुनिए उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, समीर की रचना, आनंद मिलिंद का संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, कोदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

फिल्म संगीत के चाहने वालों में बिरला ही कोई होगा जिसने महल फिल्म का ये गीत ना सुना होगा। हम बात कर रहे हैं 40 के दशक के मशहूर संगीतकार खेमचंद प्रकाश की। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्हें समुचित सम्मान और प्रसिद्धि मृत्यु उपरांत मिली है। खेमचंद प्रकाश उन्हीं में से एक थे।

खेमचंद प्रकाश का जन्म 12 दिसंबर 1907 को राजस्थान के सुजानगढ़ में हुआ था। न केवल संगीत बल्कि नृत्य की भी आरंभिक शिक्षा उन्हें अपने पिता से मिली, जो राज दरबार में ध्रुपद गायक और कथक नर्तक थे। किशोरावस्था में ही खेमचंद प्रकाश को पहले बीकानेर और उसके बाद में नेपाल के राज दरबार में गायक कलाकार के रूप में नियुक्ति मिल गई थी। आगे किस्मत उन्हें कोलकाता ले आई, जहां वे सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर्स में नियुक्त हुए। 1935 में बनी फिल्म देवदास के संगीतकार तिमिर बरन के सहायक के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। 1938 की फिल्म स्ट्रीट सिंगर के लिए खेमचंद प्रकाश ने एक मजाहिया गीत भी गाया। उसके बाद खेमचंद प्रकाश मुंबई आ गए। शुरुआत हुई 1939 में। सुप्रीम पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्में मेरी आंखें और गाजी सलाउद्दीन के लिए उन्होंने संगीत निर्देशन किया।

और फिर बहुत जल्द रणजीत मूवीटोन फिल्म स्टूडियो के नियमित संगीतकार के रूप में खेमचंद प्रकाश नियुक्त हुए। उस शुरुआती दौर में रणजीत मूवीटोन की फिल्में थीं दिवाली, होली, परदेसी, फरियाद इत्यादि। उन दिनों खेमचंद प्रकाश के गीतों में ज्यादातर स्वर होता था खुर्शीद का। इस जोड़ी ने 40 के दशक के आरंभ में बहुत से मशहूर गीत दिए। 1943 में बनी रणजीत स्टूडियो की फिल्म तानसेन जबरदस्त हिट हुई।

1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आई जिद्दी। इस फिल्म में एक गायक के रूप में किशोर कुमार को सबसे पहला अवसर दिया संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने। जिद्दी का ही एक और गीत जो लता जी ने गाया था, संगीत प्रेमियों द्वारा खूब पसंद किया गया।

और फिर 1949 में आई फिल्म महल। महल के पहले बाजार में फिल्मी गीतों के जो रिकॉर्ड्स मिलते थे, उन ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पर फिल्म की कहानी के उस गीत को पर्दे पर गाने वाले पात्र का नाम हुआ करता था। महल फिल्म का ये गीत आएगा आने वाला रिकॉर्ड पर इन बोलों के आगे नाम लिखा था कामिनी। ऑल इंडिया रेडियो से ये गीत प्रसारित हुआ। बहुत से सुनने वालों ने रेडियो के दफ्तर में फोन करके जानना चाहा कि ये आवाज किसकी है, और फिर रेडियो से गायिका का नाम प्रसारित हुआ लता मंगेशकर। संगीतकार खेमचंद प्रकाश। इस गीत को और लता जी को बेशुमार शोहरत हासिल हुई, मगर अफसोस महल के रिलीज होने से 2 माह पूर्व 10 अगस्त 1950 को संगीतकार खेमचंद प्रकाश 42 वर्ष की अल्पायु में इस संसार से विदा हो चुके थे।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार खेमचंद प्रकाश पर। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब जयंत पात्रीकर को दीजिए इजाजत।
1: आज के फनकार।

0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है प्रोग्राम हेलो हजारीबाग।
1: टेन नाइन एट सेवन

प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।

श्रोताओं, कहते हैं ना कि जीवन में एक दूसरे से जुड़ने का माध्यम है हमारा व्यवहार, और इसी व्यवहार से हम अपने आसपास के वातावरण को भी सृजित करते हैं। हमारी सोच, हमारा व्यवहार वास्तव में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे लोगों के हृदय में अच्छी भावना पैदा हो, लोगों के हृदय से जुड़ाव हो। श्रोताओं, सबसे ज़्यादा व्यवहार सजगता तो बड़ों के साथ व्यवहार रखने में हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, जीवन के सभी अवस्थाओं से उसे गुजरना होता है। हर किसी को वृद्धावस्था में आना होता है। वास्तव में जो हमसे बड़े हैं वो हमारा कल है। तो आज हम जो व्यवहार करते हैं वो हमारा कल उससे निर्धारित होता है। तो अपने से बड़ों के प्रति सद्व्यवहार रखने की ज़रूरत है, और हम अपने से बड़ों के प्रति अगर अच्छा व्यवहार रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट के रूप में भी हमें मिलती हैं। उनके पास जो अनुभव है, व्यापक अनुभव है, उससे भी हम मालामाल होते हैं। बहरहाल, इस बातचीत को थोड़ी देर के लिए देते हैं। खूबसूरत से गीत के साथ आज के इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं।

श्रोताओं, थोड़ी चर्चा मौसम की कर लेते हैं। दिन में अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री रहने की संभावना व्यक्त की गई है। रात्रि तापमान 23.5 डिग्री न्यूनतम रहने की संभावना व्यक्त की गई है। ये तो ये थे न्यूनतम और अधिकतम तापमान की, और तापमान में इस तापमान में निरंतरता अभी देखने को मिलेगी ऐसी संभावना व्यक्त की गई है, और बादल और बरसात दोनों की संभावना व्यक्त की गई है। और इसके अलावा शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की गतिविधियों की बात करें तो आज शहर में सावन की दूसरी सोमवारी है, और इसको लेकर के शिव मंदिरों में दूसरे मंदिरों में अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही लोग कतारबद्ध होकर पूजन सामग्री जल आदि लेकर के मंदिरों में देख पूजन आदि के लिए वो इकट्ठा हो रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो बरसात शुरुआत है, अच्छी बरसात हो रही है, और इस समय खेती बाड़ी के कार्य में लोग लगे हुए हैं। रोपाई का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है, कहीं कुछ लोगों ने पूरा कर लिया, कहीं कुछ बकाया है, लेकिन खेती बाड़ी का पूरा उत्साह और उमंग है। और बरसात में लोग ऐसे भी कह रहे थे कि बरसात में बरसात नहीं दिखाई दे रहा है, तो बरसात में पूरी तरह से बरसात दिखाई दे रहा है और लोग इस बरसात का आनंद भी उठा रहे हैं। तो ये थी गतिविधियों के बारे में, आगे भी चर्चा करेंगे, अखबार के पन्नों को पलटेंगे, इतिहास के पन्नों से ढूंढ कर लाएंगे आपके लिए कि आज के तारीख के साथ कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी तमाम बातें करेंगे, जैसे कि आज बातचीत भी कर रहे हैं, जो जैव ईंधन दिवस भी है आज, तो इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, और साथ ही बड़े बुजुर्गों के साथ किस तरह का सम्मान का व्यवहार हमारा होना चाहिए इस पर भी बातचीत करेंगे, और इस पर बातचीत की शुरुआत भी हम कर चुके हैं और आगे भी इस पर बातचीत करेंगे, इसमें निरंतरता हम बनाए रखेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से गीत के साथ।

और श्रोताओं, अखबार के पन्नों की बात करें तो ज्यादातर रांची के छात्र आंदोलन की खबरों से ये प्रथम पृष्ठ रंगे हुए। इसके अलावा एक दूसरी महत्वपूर्ण खबरें हैं, आदिवासी दिवस पर जो कार्यक्रम हुए हैं उसको लेकर भी खबर अलग अलग तरीके से अलग अलग अखबारों ने प्रकाशित किए हैं, उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इतिहास के पन्नों की ओर हम थोड़ा झांक कर देखें कि आज के तारीख में इतिहास की कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, जिनका हमारे साथ संबंध भी रहा है। तो हम आपको बता दें कि इतिहास के पन्नों की जब हम चर्चा करते हैं तो जो आज के तारीख के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई थी वो 10 अगस्त 1741 ईस्वी का ये ऐतिहासिक प्रसंग है। आज ही के दिन कोलाचील की लड़ाई में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्णायक रूप से हराया था। इसके अलावा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी भी इसी दिन हुई थी। और इसके अलावा प्रसिद्ध खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन ने दुनिया की परिक्रमा करने वाली के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी 1519 ईस्वी में। और पेरिस का प्रसिद्ध लवरा म्यूजियम आम जनता के लिए खोला गया था, ये 10 अगस्त 1793 ईस्वी की बात है। और आज की तारीख के साथ हम बताएं तो महत्वपूर्ण है विश्व जैव ईंधन दिवस है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है। पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में किस तरह से हम आगे बढ़े वो इसके लिए प्रेरित करता है। कुछ और 10 अगस्त से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और 1990 ईस्वी में अमरीकी अंतरिक्षयान मैगलिन शुक्र ग्रह पर पहुंचा था 1990 ईस्वी में। 10 अगस्त 1990 ईस्वी 10 अगस्त 2000

तीन से जुड़ी हुई भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, वो हम आपके साथ साझा कर दें। अंतरिक्ष में शादी करने वाले पहले व्यक्ति यूरी मालेचिन को बने, और जब वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर थे उसी दौरान उन्होंने अपनी शादी की थी। और प्रमुख हस्तियों के जन्मतिथि की बात करें तो भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का जन्म 10 अगस्त 1894 ईस्वी को हुआ था, और बैंडिट क्विट के नाम से मशहूर फूलन देवी का जन्म भी आज ही के दिन 10 अगस्त 1963 ईस्वी को हुआ था। तो इतिहास से जुड़ी हुई ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, और इसके अलावा थोड़ी और भी चर्चा करेंगे जैव ईंधन से संबंधित, और दूसरी जो अखबार के पन्ने हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस बातचीत को थोड़ी देर के लिए देते हैं विराम एक खूबसूरत से गीत के लिए।

और श्रोताओं, हेलो हजारीबाग में अब रुख करते हैं अखबार के पन्नों की ओर। और ये हजारीबाग भास्कर, दैनिक भास्कर का हजारीबाग पन्ना है और इसमें दो तीन खबरें हैं जो ध्यान खींचती हैं। सबसे जो कहें कि एक तरह से बैनर हेडलाइन है, फैशन शो में आदिवासी परंपरा वेशभूषा संस्कृति की झलक देखने को मिली, दर्शकों ने खूब सराहा। आदिवासी महोत्सव गीत नृत्य और फैशन शो ने मोहा। जिला प्रशासन ने रविवार को हमारी समृद्ध आदिवासी संस्कृति परंपरा कला व विरासत को समर्पित आदिवासी महोत्सव का आयोजन पैराडाइज रिजॉर्ट में किया और इस आयोजन में आदिवासी समाज के साथ साथ गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पारंपरिक गीत संगीत और नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। मांदर और ढोल की थाप पर कलाकारों ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन किया। और इसके अलावा अखबार ने छौ नृत्य करते एक कलाकार की तस्वीर और एक बड़ी सी तस्वीर भी इस खबर में लगाई है। और जो इसी पन्ने के प्रथम पृष्ठ पर ही ये कहें कि एक बहुत ही खूबसूरत भास्कर एक्सक्लूसिव के नाम से एक खबर अखबार ने लगाई है। अखबार ने लिखा है, शहर में 41,000 भवनों में से मात्र 100 में ही लगाया गया वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट। नगर निगम ने कहा, नियम नहीं मानने वाले लोगों पर लगेगा जुर्माना। और पूरी खबर नगर निगम कार्यालय की तस्वीर भी अखबार ने प्रकाशित की है और कई बातें, कई तथ्यों का कहें कि एक तरह से विश्लेषण करते हुए ये खबर प्रकाशित की गई है। अखबार लिखता है कि बहुमंजिला इमारत के निर्माण के दौरान ही वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट तो लगाए गए, पर नियमित साफ सफाई नहीं होने से प्लांट ने काम करना बंद कर दिया। इससे पानी जमीन में जाना बंद हो गया और एक्सपर्ट की माने तो टैंक की नियमित साफ सफाई जरूरी है और वर्षा के समय पानी छनकर जमीन में जाता रहे। अखबार लिखता है कि नगर निगम में आपका घर है और बोरवेल और सबर में शिवल लगाकर आप जमीन से पानी निकाल रहे हैं तो जल संचयन वाटर हार्वेस्टिंग करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई होगी, भारी भरकम जुर्माना भी देना होगा। झारखंड सरकार भूमिगत पानी को लेकर पहले भी गंभीर है और यही वजह है कि लोगों को जल संसाधन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वे वर्षा जल को संचित करें, उसे दोबारा धरती को लौटाएं, जलस्तर नहीं घटे। और इस पर लगा है कि और कुछ और बातें अखबार ने प्रकाशित की है। संचय नहीं करने पर 50% लगेगा जुर्माना। और इसके अलावा जागरूक करने के बाद भी लोग प्लांट नहीं लगा रहे हैं, इसे बॉक्स में अखबार ने प्रकाशित किया। और एक और खबर है इसी अखबार के, ये मॉडलर ओटी तैयार, अब यही होंगे घुटने व कुल्हे के जटिल ऑपरेशन। SBMCH में आई नई सुविधा, इन्फेक्शन का खतरा होगा ना के बराबर, स्पाइन सर्जरी भी होगी संभव। थोड़ी चर्चा खबर की भी कर लेते हैं। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण कराना चाहते हैं और इन्फेक्शन का डर लग रहा है तो अब निश्चिंत हो जाएं। अस्पताल

के ऑर्थो यानी हड्डी विभाग में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर ओटी बनकर तैयार है। इसके हैंडओवर की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की संख्या हजारों में है। प्रमंडल का एकलौता बड़ा मेडिकल कॉलेज होने के कारण यहाँ अन्य जिलों के मरीज भी उपचार कराने के लिए आते हैं। इनमें हड्डी से संबंधित मरीजों की संख्या भी अधिक होती है और हड्डी से संबंधित मरीजों के लिए नई बिल्डिंग में विभाग है और वहीं दूसरी मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर है और तीसरी मंजिल पर वार्ड बना हुआ है। ऑपरेशन पहली मंजिल पर होने के बाद मरीजों को दूसरी मंजिल में वार्ड में भर्ती किया जाता है और वहां उनकी देखभाल होती है। और इससे जुड़ी हुई दूसरी बातें भी अखबार ने बहुत ही प्रमुखता से तस्वीरों के साथ बॉक्स में बातों को डालकर इस खबर को खास बना दिया है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें, आगे कुछ और खबर भी हम आपके साथ साझा करेंगे। अलग अलग अखबारों को आगे बढ़ते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ।

श्रोताओं, अखबार के पन्नों की ओर फिर से एक बार लौटते हैं और ये प्रभात खबर का प्रथम पृष्ठ है और पूरी तरह से कहें कि प्रथम पृष्ठ ये छात्रों के आंदोलन से जुड़ी हुई खबरों से भरी हुई है और जो कहें कि एक तरह की बैनर खबर है वो सरकार 14वीं जेपीएससी पीटी व बैकलॉग परीक्षा रद्द करने और ईडी से जांच पर राजी। जेपीएससी के तीनों सदस्यों का इस्तीफा, नहीं माने छात्र, आज करेंगे विधानसभा मार्च। और इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें, छोटी बड़ी खबरें, इसके अलावा मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं, ये सारी चीज़ें अखबार ने प्रकाशित की है और तस्वीरों के साथ अखबार ने इसे प्रकाशित किया है। अब थोड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर दें। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में अनियमितता के खिलाफ जारी आंदोलन के 16वें दिन सरकार और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता विफल रही। स्टेट गेस्ट हाउस में 5 घंटे की मैराथन वार्ता के बाद भी अंतिम सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद आंदोलनकारी छात्रों ने सोमवार को विधानसभा घेराव करने के पूर्व के निर्णय को जारी रखा। वार्ता में शामिल सरकार के मंत्री ने कहा कि सरकार ने आंदोलनकारियों की 98% मांगे मान ली है। कुछ मांगों को लेकर जिस आंदोलनकारी छात्रों के विधानसभा घेराव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राज्य भर से युवा राजधानी पहुंचने लगे हैं। आंदोलनकारी छात्रों ने दावा किया है कि सोमवार 1 लाख से अधिक युवा सड़कों पर उतरेंगे और इन सब के बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनीमा हंसदा और डॉक्टर जमाल अहमद ने रविवार को अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। सीआईडी ने अपनी जांच में तीनों सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा था। इससे पहले भी तीनों ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पूर्व आयोग के अध्यक्ष एल ख्यांगते ने सीआईडी छापेमारी के एक दिन ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और इसके बाद अखबार ने और सारी बातें लिखी है। मंत्री दीपिका ने देवेंद्र महतो से वीडियो कॉल करके बात की। आज जेपीएससी के पूर्व सदस्य डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य से पूछताछ होगी और लगातार तीसरे दिन छात्र प्रतिनिधियों के साथ मंत्री समूह ने की मैराथन बैठक। और अब जेएसएससी भी लेगा पीटी व मेंस दोनों। और प्रथम पृष्ठ पर एक छोटी सी और दूसरी खबर है, बहुत ही एक सिंगल कॉलम की खबर है लेकिन ध्यान खींचती है। आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में नए सिरे से जांच के आदेश। और सिंगल कॉलम की खबर है, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं आपके साथ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 2024 में महिला डॉक्टरों के दुष्कर्म और हत्या के मामले में विशेष आयोग अधिनियम 1952 के तहत नए सिरे से जांच की घोषणा की। शुभेंदु ने कहा कि सरकार ने यह फैसला मृत चिकित्सक की मां के अनुरोध पर लिया है, वह अब भाजपा की विधायक हैं। तो ये थी जो प्रथम पृष्ठ पर छपी हुई महत्वपूर्ण खबर। इसके अलावा दैनिक जागरण के राजधानी जागरण पन्ना जो है उस पर भी कुछ खबरें हैं जो ध्यान खींचती हैं, जैसे अब तीनों शिफ्ट में होगी जेएसएससी की प्रारंभिक परीक्षा, तीनों के प्रश्न पत्र होंगे अलग। मुख्यमंत्री हेमंत ने युवाओं से किया संवाद का आह्वान, परीक्षाओं में सुधार पर मांगा सुझाव। तो ये दो खबरें

इसके अलावे दूसरी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं। कमेटी के मंत्री ने कहा सीजीएल रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर छात्रों के संग टूटी वार्ता। दूसरी सोमवार पर 4 लाख से अधिक कांवरियों के पहुंचने का अनुमान। इनमें से कुछ खबरों को हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन इससे पहले इस गीत को सुनते हैं।

और श्रोताओं, ये हिंदुस्तान अखबार का पन्ना है और ये इसमें अपना कोडरमा जो पन्ना है उस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और वो भी ध्यान खींचती है। वो खबर हम आपके साथ साझा कर दें। जे कॉलेज समेत जिले भर के डिग्री कॉलेज बचाने के लिए हुई सर्वदलीय बैठक, जुलूस निकाल कर दिया एकता का संदेश, आंदोलन होगा तेज। अखबार लिखता है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय से हटाकर जेजे कॉलेज समेत जिले भर के डिग्री कॉलेजों को जेसी बोस विश्वविद्यालय से जोड़ने के विरोध में जेजे कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। आंदोलन को धारदार बनाने के लिए रविवार को ब्लॉक रोड स्थित साहू भवन में सर्वदलीय बैठक हुई। अध्यक्षता संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेश भारती ने की, जबकि संचालन पूर्व छात्र नेता वीरेंद्र कराटे ने किया। वक्ताओं ने कहा कि जेजे कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति पिछले 2 माह से अधिक समय से जनप्रतिनिधियों से लेकर विभिन्न स्तरों पर अपनी मांग रख रही है, जिस मुद्दे को विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाना चाहिए था उस पर अपेक्षित पहल नहीं हुई। ऐसे में सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए अब आंदोलन का रास्ता ही बचा है। मशाल जुलूस निकालकर एकजुटता की गई प्रदर्शित। इससे पूर्व संघर्ष समिति की ओर से मशाल जुलूस निकालकर जेजे कॉलेज समेत जिले के डिग्री कॉलेजों को बचाने के लिए एकजुटता प्रदर्शित की गई। मशाल जुलूस के विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के साथ छात्र, अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक व मशाल जुलूस में जो लोग शामिल थे उनके नाम भी अखबार ने प्रकाशित किए हैं, जिसमें डोमचांच नगर पंचायत अध्यक्ष उमेश वर्मा, राजद जिलाध्यक्ष महेश यादव, कांग्रेस जिला प्रकाश रजक, आप जिलाध्यक्ष महेश यादव और इसके अलावा दूसरे सभी नेताओं के नाम भी अखबार ने प्रकाशित किए हैं। और ये बहुत ही प्रमुखता से यह खबर अखबार में छपी हुई है। और राजधानी जागरण पन्ना है दैनिक जागरण का, इसमें एक खबर है वो हम आपके साथ साझा करें। मुख्यमंत्री हेमंत ने युवाओं से किया संवाद का आह्वान, परीक्षाओं में सुधार पर मांगा सुझाव। अखबार लिखता है कि जेपीएससी और जेएसएससी तथा इसके परीक्षाओं में व्यापक सुधार को लेकर छात्रों से बातचीत के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं से एक बार फिर संवाद करने का आह्वान किया। उन्होंने रविवार को अपने एक्स अकाउंट पर एक बार फिर छात्रों के साथ शीर्षक में युवाओं और छात्रों को संबोधित कर उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि उनका हमेशा से यह विश्वास रहा है कि संवाद ही सुधार आते हैं और संवाद उनकी भागीदारी के बिना अधूरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोई छात्र वर्षों तक मेहनत करता है तो उसके साथ केवल उसका भविष्य नहीं बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदें जुड़ी होती है, इसलिए शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, निष्पक्ष, विश्वसनीय और समयबद्ध बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि वर्षों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आयोग और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपेक्षित मजबूती नहीं मिल सकी है। उनकी सरकार ने समस्याओं से मुंह मोड़ने की बजाय उन्हें स्वीकार किया और एक एक कर सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने शुरू किए हैं। तो इस तरह से पूरी खबर अखबार ने प्रकाशित की है। वहीं एक और खबर है, राज्य सरकार बताए आदिवासियों के अधिकारों और भविष्य के लिए क्या किया। सुदेश महतो के हवाले से यह खबर अखबार ने प्रकाशित किया है। दूसरी सोमवारी पर 4 लाख से अधिक कांवरियों के पहुंचने का अनुमान, ये तस्वीर के साथ यह खबर दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया है और ये खबर देवघर की है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जो ध्यान खींचती हैं और इस बातचीत में, इस संवाद में आगे हम कोशिश और करेंगे कि कुछ चर्चा, कुछ बातें हम जरूर करें। फिलहाल इस गीत के साथ आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में।

श्रोताओं, जो हमसे बड़े हैं वास्तव में वो हमारा कल है, इसकी चर्चा हम शुरुआत से ही कर रहे हैं। जैसे नकारात्मकता, उपेक्षा, दुर्व्यवहार, इससे हमारे अंतर मन और बाहरी वातावरण सभी को प्रदूषित कर देता है, तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। जब भी ऐसे तो किसी के साथ व्यवहार करें तो हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन बड़ों के साथ व्यवहार में हमें सहृदयता का परिचय जरूर देना चाहिए। कुछ समय हमें अपने बड़ों के साथ गुजारना चाहिए। जीवन में अनुभव का मित्रों बड़ा महत्व होता है। लंबा जीवन गुजार चुके लोगों के पास बहुत अनुभव होता है। हमें बड़ों के साथ बैठने, समय बिताने से उनके अनुभवों का लाभ भी हमें जरूर मिलेगा। तो आज जितने भी लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं, इस संवाद में शामिल, इस प्रोग्राम में शामिल है, तो सब आज से एक संकल्प लेते हैं कि अपने से बड़ों के प्रति हम सम्मान का भाव रखेंगे और उनका केयर करेंगे। और बढ़ती उम्र के साथ जो पीछे वाले पीढ़ी है उनका यह दायित्व बन जाता है कि अपने बड़ों का वो केयर करें, समय निकाल कर करें। थोड़ा समय जरूर निकालें, दिन में अगर लंबे समय तक नहीं बैठ पाते हैं तो थोड़ा थोड़ा समय जब मिले तो हमें उनको जरूर केयर करना चाहिए, भावनात्मक सबलता देनी चाहिए, ये कोशिश हमें जरूर करनी है। तो आज इस बातचीत को यहीं समाप्त करते, इस प्रोग्राम को भी यहीं समाप्त करते, लेकिन चलते चलते इस खूबसूरत संगीत का हम आनंद जरूर उठाएंगे।

श्रोता भी सुन रहे थे हेलो हजारीबाग एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने विविध भारती प्रसारण से।

रंग तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। आप सभी को हमारा सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले शिव शंभु इस एल्बम का गीत सुरेश वाडकर की आवाज में, नवाब आरजू के बोल, नटराज दस्तीदार का संगीत है।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग।
1: इश्क की ये शम्मा अपने दिलों में।
0: मिताली सिंह और भूपिंदर सिंह की आवाजें, शब्दकार सुदर्शन फाकिर और संगीत है भूपिंदर सिंह का। एल्बम ये प्यार

0: और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: तलत अजीज की आवाज है, शब्दकार तस्लीम फाजिल, संगीत मोहम्मद अशरफ का, एल्बम ये मिलन ख्वाब सा।

रूप कुमार राठौड़ और साधना सरगम की आवाज़ों में गुलजार का लिखा हुआ गाना, उस्ताद अमजद अली खां का संगीत, एल्बम वादा।

0: जरा।
1: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
2: श्याम अनुरागी के बोल, चार्ल्स श्रीनिवासन का संगीत, विस्पी की आवाज, एल्बम तेरी मर्जी।

0: ये आवाजें थी साबरी ब्रदर्स की, शब्दकार निदा फाजली, संगीत आदेश श्रीवास्तव का एल्बम तरकीब।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अगला गाना आपको सुनवाते हैं तन्हा दिल, इस एल्बम का गाना, आवाज, गीत और संगीत शान का।

उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में पिया बसंती इस एल्बम का गाना, संगीत है संदेश शांडिल्य का।

रंग तिरंग कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सपना अवस्थी की आवाज में परदेसिया एल्बम का ये गाना। गीत और संगीत है पी के मिश्रा का।

आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति। रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ की आवाजें, मदन पाल के बोल, जय विजय का संगीत। एल्बम का नाम है मोहब्बत हो गई।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन के 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी एन के प्रेमचंद्रन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने

0: सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। अभी समाचार मिला है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि एशियाई शेर के संरक्षण में भारत की सफलता वन्य जीव और जैव विविधता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का गौरवशाली प्रमाण है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के भारोत्तोलक महाराजन अरुमुंग पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको परवरिश फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाजें हैं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: चलती का नाम गाड़ी, इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत एसडी बर्मन का।
1: बाजू।

0: चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

अंतराल का समय पूरा हो चुका, अब आपके लिए लेकर आए हैं पड़ोसन फिल्म का गाना, किशोर कुमार, मन्ना डे और महमूद की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है आरडी बर्मन का।

चतुर नार।

0: चतुर एक पेर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला। गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात। अरे आय आय आय आय आय आय, चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार, अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात, घुसत जात, हम हंसत जात, मरत जात, मरत जात, अरे मरत जात।
2: पड़ोसन फिल्म का ये गाना आपने सुना। आज यादों की महफिल कार्यक्रम में जो गाने आप सुन रहे हैं, अगर उन पर आपने गौर किया होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज के कार्यक्रम में या तो पुरुष आवाजों में जो युगल गीत हैं वो, या तीन पुरुष आवाजों में जो गाने हैं वो हम आपको सुनवा रहे हैं। बैजू बावरा फिल्म का गाना उस्ताद अमीर खान और पंडित डी वी पलुस्कर की आवाजों में। लीजिए अब सुनिए शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये है मासूम फिल्म का गाना, भूपिंदर सिंह और सुरेश वाडकर की आवाजों में, गुलजार के बोल, संगीत आरडी बर्मन का।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये समझौता फिल्म का गाना मुकेश और मोहम्मद रफी की आवाजों में, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

आ रहे हैं महबूबा विविध भारती पर सुन जरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11

0: और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आई,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का, फिल्म का नाम शोले।

सागर फिल्म का गाना आइए सुनते हैं, किशोर कुमार और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल संगीत है आरडी बर्मन का।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम उजाला।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न

प्यार पे सब कुछ है कुर्बान। जरा सी है गरीबी यही है कम नसीबी, जरा सी है गरीबी यही है कम नसीबी।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आदमी और इंसान, ये फिल्म का नाम, महेंद्र कपूर, बलबीर जोगिंदर और साथियों की आवाजें, साहिल उद्यानवी के बोल, संगीत है रवि का।

स्त्रियों का अधिकार है, खास तौर पर जब मौसम सुहाने हो तो सजना और भी मन को भाता है। बिंदिया, काजल, कजरा, गजरा, पायल, मेहंदी, चुनर, ये सब श्रृंगार के साधन हैं। हरे कांच की चूड़ियां बड़ी सुहावनी लगती है, पर इन्हें किसी का दिल समझकर आहिस्ता आहिस्ता हाथों में डालिए। चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सजाइए, जब बिंदिया चमकेगी आंखों में कयामत ढाने वाला काजल होगा, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचाकर धानी चुनरी पहन जब जाओगी तो साजन कहेंगे ही ना, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए। क्या पता ये भी कह दें, तेरी बिंदिया रे के आए हाय तेरी बिंदिया रे। तो सज धज कर आइएगा जरूर विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर में। ये आज की इबारत है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ी और बहुत सारी बातें उन्होंने श्रृंगार के बारे में लिख करके भेजी है। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि वाह क्या खूबसूरत इबारत है, आज सावन की दूसरी सोमवारी स्त्रियां सोलह श्रृंगार, हरी चूड़ियां, हरी साड़ी, मेहंदी, आलता से सजे हाथ पांव, हाथ में फूलों की डलिया, जल भरा कलश लेकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के लिए मंदिरों में जा रही है। भगवान भोलेनाथ का और माँ गौरी का खूब श्रृंगार किया गया है, आज उसी श्रृंगार की बात सुरीला सफर में। एक साथी हमारी लिख रही है कि भारतीय संस्कृति में नारी का श्रृंगार केवल बाहरी रूप को सजाना नहीं है, ये संस्कार सौभाग्य, पारिवारिक परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। सोलह श्रृंगार स्त्री के जीवन के अलग अलग चरणों और उसकी पहचान को दर्शाते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक महोत्सवों भाग्य का प्रतीक, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, पति की लंबी उम्र की कामना और वैवाहिक बंधन को दिखाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा, चूड़ियां, बिछिया और पायल शरीर के एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर असर डालते हैं, ये शरीर में ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। भारतीय परंपरा में नारी को शक्ति या लक्ष्मी का रूप माना जाता है, श्रृंगार उसी दिव्य सम्मान को प्रकट करता है। सजना संवरना स्त्री के मन में खुशी और सकारात्मकता लाता है, परिवार और समाज के उत्सवों में उल्लास और जुड़ाव का माध्यम बनता है। जी, आपने स्त्री के श्रृंगार की बातें की और जब श्रृंगार की बात आती तो अक्सर श्रृंगार को स्त्रियों से ही जोड़ करके देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, पुरुष भी तो अपना श्रृंगार कर सकते हैं, वो भी अपने आप को सजा संवार सकते हैं, बालों को अच्छी तरह से उन्हें कटवा करके और जिस तरीके से भी आपको पसंद हो वो स्टाइल, और चेहरे पर भी आजकल तो पुरुष भी जाते हैं पार्लर में और वो भी अपना श्रृंगार करवाते हैं। तो श्रृंगार सभी का अधिकार है, लेकिन हाँ स्त्रियों से इसे खास तौर पर जोड़ करके देखा जाता है। तो और भी हम इस विषय पर बातें करेंगे और कुछ सवाल भी हैं आज हमारे, तो वो भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले सजने संवरने का, सजना के लिए जो गीत है वो आपको सुनवा देते हैं। सौदागर फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, गीत और संगीत रविंद्र जैन का, कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये आप बताइए।

0: सजने संवरने की
1: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विधानसभा घेराव जारी। मामले की सीबीआई जांच और सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर छात्र अड़े। झामुमो ने भाजपा पर छात्र आंदोलन और विधानसभा घेराव को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। भाजपा ने आरोपों को बताया निराधार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्र आंदोलन के बीच छात्रों की बात, छात्रों के साथ अभियान शुरू करने की पहल की। श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम पहुंचने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेनों का करेगा परिचालन। और मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतम जिलों में बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की जताई संभावना। कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया है। आंदोलनकारी छात्र मार्च करते हुए विधानसभा की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी मार्च में शामिल हुए हैं। इधर रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि छात्रों ने शांतिपूर्वक मार्च करने का पुलिस को भरोसा दिया है। वहीं एसडीएम सौरभ कुमार ने कहा कि प्रदर्शन के बीच कुछ असामाजिक तत्वों के शामिल होने की संभावना है, जिसे लेकर पुलिस सतर्क है।
2: सभी व्यवस्था ठीक ठाक से है। बच्चों ने भी हम लोगों को आश्वस्त किया है कि बहुत ही शांतिपूर्वक हम लोगों का मार्च रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शांति

0: शांतिपूर्वक ये प्रोटेस्ट बच्चों का हम लोग निकाल देंगे। या
1: आज जो है ये इनका जो कंडक्ट है वो पीसफुल रहेगा, उनके द्वारा भी अश्योर किया गया है कि ये प्रोटेस्ट पीसफुल रहेगा। और स्टूडेंट्स ने ही बोला है कि अगर कोई पीसफुल नहीं है तो वो हमारे प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं है।
2: गौरतलब है कि सरकार के साथ तीन दौर की वार्ता के बाद भी मांगों पर पूरी सहमति नहीं बन पाई। सरकार ने अधिकांश मांगें मान ली हैं, लेकिन छात्र परीक्षा में कथित धांधली पर सीबीआई जांच की मांग और सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई कथित अनियमितता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस संबंध में जवाब की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। घेराव में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक नवीन जायसवाल, सीपी सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। झामुमो की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने आरोप लगाया है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के बहकावे में छात्रों ने विधानसभा मार्च निकालने का फैसला किया, जबकि सरकार 98% मांगों को मान ली है। वहीं कोर्ट के ऑर्डर के बिना जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को कैंसिल करना सरकार के पावर में नहीं है।
3: प्रतिनिधि मंडल के साथ छात्रों की बैठक हुई, वहाँ खड़े होकर उन्होंने मीडिया में कहा कि 98% मांगे मान ली गई है। छात्रों ने भी इसे स्वीकार किया, उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन बाद में वो जाकर आपस में बैठे तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो उन्हें पीछे से धकेल रही है कि नहीं तुम आंदोलन बंद मत करो, शायद उन्हीं के कहने पर आज विरोध मार्च हो रहा है, हमें ऐसा लगता है।
2: वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में विधानसभा घेराव के पीछे भाजपा का हाथ होने के आरोपों को निराधार बताया है। संसद परिसर में आज उन्होंने कहा कि जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था तो हमने कभी नहीं कहा कि इसके पीछे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी है।
4: कि जो जेपीएससी के मेंबर है वही जेएमएम के कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आज फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ा। हमारी कौन सी बात है जो गलत हो रही है? यदि हम गलत बात कर रहे हैं तो इस्तीफा नहीं दिलाते आप। तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि झारखंड के बच्चों के साथ कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने अन्याय किया है। आपने परिवार रिश्तेदारों को उन्होंने नौकरी दी है और हम इस आंदोलन के साथ।
2: जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर छात्रों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं से सीधे संवाद की पहल की है। उन्होंने छात्रों की बात, छात्रों के साथ अभियान शुरू करने की जानकारी एक्स पर दी। इसके तहत छात्र परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी अपनी परेशानी और सुझाव सरकार तक पहुंचा सकेंगे। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित आदिवासी महोत्सव के तहत झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से कल अमर शहीद चांद भैरव मुर्मू मंडप में आदिवासी जीवन और संस्कृति पर आधारित फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। कार्यक्रम में कई शॉर्ट फिल्में दिखाई गईं। महोत्सव में युवाओं के लिए फिल्म निर्माण पर विशेष मास्टर क्लास आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। पेश है एक रिपोर्ट।
5: हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
6: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देशभर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की

0: अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत। तिरंगा हर घर
1: तिरंगा। सावन महीने की दूसरी सोमवारी पर आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम, दुमका स्थित बासुकीनाथ धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देवघर में 3 लाख से अधिक लोगों के जलाभिषेक करने का अनुमान है। दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में पहली सोमवारी से अधिक कांवरियों का जुटान हुआ है। दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि भक्तों को सुगमतापूर्वक जलार्पण का अवसर सुलभ कराया जा रहा है।
2: आज सावन का दूसरी सोमवारी है, इसमें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं की काफी भीड़ आने वाली है। ट्रेन सिटी में भी हम लोगों ने देखा और रोड में भी काफी लोग हैं, जोश और उत्साह के साथ है, तो उनको सही तरीके से जलार्पण हम लोग करा पाए इसलिए प्रशासनिक तैयारी कर ली गई है।
1: श्रावणी मेले के दौरान देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। इन ट्रेनों में जसीडीह बासुकीनाथ स्पेशल, बासुकीनाथ पटना स्पेशल, पटना जसीडीह स्पेशल और मधुपुर नरकटियागंज स्पेशल शामिल है। इन ट्रेनों से कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा मिलेगी। ये ट्रेनें 10 अगस्त, 11, 17, 18, 24 और 25 अगस्त को चलेंगी। पलामू जिले के चर्चित विनीत तिवारी हत्याकांड में फरार आरोपी रोशन तिवारी ने आज मेदिनीनगर शहर थाना परिवार के साथ सरेंडर कर दिया। गौरतलब है कि 25 अप्रैल 2026 को मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के रेडमा में विनीत तिवारी के घर के निकट से उसका अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम। झारखंड में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। आज राज्य के अधिकतम जिलों में बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। वहीं रांची, धनबाद, गिरिडीह समेत 13 जिलों में जमकर बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विधानसभा घेराव जारी। मामले की सीबीआई जांच और सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर छात्र अड़े। झामुमो ने भाजपा पर छात्र आंदोलन और विधानसभा घेराव को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। भाजपा ने आरोपों को बताया निराधार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्र आंदोलन के बीच छात्रों की बात, छात्रों के साथ अभियान शुरू करने की पहल की। श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम पहुंचने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेनों का करेगा परिचालन। और मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतम जिलों में बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की जताई संभावना। कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मेरा साहू पर फिल्माया गया ये गाना।

हरे कांच की चूड़ियां इस फिल्म का गाना सुना, शैलेंद्र का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आप श्रृंगार की बातें कर रही हैं, कभी हमारी पत्नी साथ थी तो हमें इस सावन में मेघों बिजलियों बरसात को देखते थकते नहीं थे, उसके साथ भीग भी जाते थे। आज ये हरियाला सावन हमें घर में बंद रहने को मजबूर कर रहा है क्योंकि वो चूड़ी बिंदी वाली नहीं रही। क्या कहें इस बारे में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक हमारे साथी की ये बात है कि जब पति शाम को थका हुआ घर पर आता है तो घर पर पत्नी इंतजार करती है, अगर पत्नी सजी संवरी मिलती है तो अच्छा लगता है, सारी थकावट और परेशानी समाप्त हो जाती है और फिर शुरू होती है श्रीमती जी की फरमाइश, जो कि उनका हक है। एक साथी लिख रहे हैं कि सावन के महीने में हरा रंग, प्रकृति के सौंदर्य, सुख समृद्धि और भगवान शिव के प्रति अटूट शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सावन में हरे रंग का बहुत महत्व है। और एक साथी ये लिख रही है कि सावन के महीने में हरा रंग प्रकृति में प्रेम, सौभाग्य और भगवान शिव की उपासना से जुड़ा है, बारिश के कारण चारों तरफ हरियाली छा जाती है और हरा रंग जीवन में नई शुरुआत, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं से भगवान शिव को प्राकृतिक वातावरण और बेलपत्र प्रिय है, हरा रंग प्रकृति का रूप है, इसलिए इसे पहनकर भक्त शिव के प्रति अपना प्रेम और भक्ति प्रकट करते हैं, इसलिए नारियां हरे रंग से श्रृंगार करके भोलेनाथ की पूजा करती है। धन्यवाद आपका। और हाँ, एक साथी ने यह बात लिखी कि क्षेत्रवार सजने सवरने की प्रथा अलग अलग है, यानी जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के कुछ अलग रिवाज होते हैं। सजी सवरी जो स्त्रियाँ हैं वो अलग अलग उनका जो रूप होता है वो दिखाई देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि माथे की बिंदिया में सपनों की चमक, आंखों के काजल में अनकहे जज्बात है, चूड़ियों की खनक में बसी है यादें, पायल के रुंझुन में दिल की सौगात है, नारी जब स्नेह और मुस्कान से श्रृंगार करती है तो केवल उसका रूप नहीं संवरता, उसके साथ घर, आंगन, रिश्ते और कई बिखरे हुए एहसास भी खिल उठते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि सावन हर एक के लिए मनभावन होता है, धरती साथ श्रृंगार करके हरी भरी बन जाती है, उसी तरह महिलाएं हरी भरी साड़ी और हरे कांच की चूड़ियां पहनकर सजधज कर उनके मुख पर निखार आता है, उसी

तरह विविध भारती भी प्रसारण तरंगों पर निखार आ जाता है और गीत बज उठता है। चांद जैसे आकाशवाणी के मुखड़े पर विविध भारती जैसा सितारा नहीं भूलेगा, मेरी जान नहीं भूलेगा। जी आप मत भूलिए, याद रखिए विविध भारती का ये कार्यक्रम सुनते रहिए। विविध भारती के और अन्य कार्यक्रम भी है, उन्हें भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक सवाल यहाँ करते चलते हैं कि जो नई नई बेटियों की शादियां हुई हैं और वो अपने ससुराल से मायके आई हैं, तो ससुराल से कुछ भेंट उनके लिए भेजी जाती, उसे क्या कहा जाता है और उसमें खास तौर पर क्या होता है जो उन बेटियों के लिए, नई शादी जिनकी हुई है, जिनका पहला साल है, ये पहला सावन है, तो उनके लिए भेजा जाता है, तो इस बारे में आपके यहाँ क्या रिवाज है और क्या भेजा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, इस बारे में आप हमें बताइए। चलिए गैम्बलर फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, नीरज के बोल हैं, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए।

गैम्बलर फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत एसडी परमन का। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मंजू जी प्यारी सी इबारत लेकर आप आई हैं और आपने हमें सज धज के विविध भारती के इस प्रोग्राम में बुलाया है, वो भी इतने प्यार से, और अगर हम सज धज के ना आए तो क्या करेंगे आप, शामिल नहीं करेंगे हमें? ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ज्यादा सजना तो हमें पसंद नहीं है, पर चूड़ी बिंदी बहुत प्रिय है। बिंदी तो हमने लगाना अब छोड़ दी है क्योंकि अब हम बिंदी नहीं लगाते हैं, लेकिन हाँ सजना संवरना ये हर स्त्री का अधिकार है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। धन्यवाद आपका। और हमने आपसे सवाल किया था कि जिन बेटियों की अभी शादी हुई है उनके लिए क्या भेजा जाता है ससुराल की तरफ से, तो हमारे एक साथी ने लिखी है कि हम लोगों के यहाँ उसे सावनी कहते हैं, जिसमें राखी, रुमाल, कपड़े, श्रृंगार सामग्री और मिठाइयाँ भेजी जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि श्रावण में समूची धरती ही वर्षा ऋतु के परिणाम से अपने प्रसव धर्मी गुण से हरी भरी चादर ही ओढ़ लिया करती है, फिर ऐसे में हरे रंग का प्रयोग कोई क्यों ना करे। और एक साथी ने लिखा है कि साल होने पर जो तोहफा भेजा जाता है उसे शगुन कहा जाता है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि हरा रंग सृजन का प्रतीक है, सावन में धरती और पर्जन्य का मिलने से नव चैतन्य, हरी फसल, पेड़ पौधे, फूलों फलों का सृजन हो जाता है, इसलिए व्रत वैकल्य में भी हरा रंग शुभ माना जाता है और हरे रंग का श्रृंगार किया जाता है। जी धन्यवाद आपका। चलिए एक सवाल तो हमने आपसे किया था और कि क्या भेजा जाता है, लेकिन हमने जहां तक हमारी जानकारी है उसके अंदर एक लहरिया भी भेजा जाता है। लहरिया किसे कहते हैं, लहरिया कौन कौन से प्रदेशों में इसका ज्यादा उपयोग होता है और लहरिये में कौन से जो रंग है वो प्रधानता लिए होते हैं, इसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो हमें बताइएगा। और अब सावन को आने दो, इस फिल्म का गाना, येसुदास की आवाज, राजकमल का संगीत, कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया आप बताइए हमें।

अरुण गोविल और जरीना वहाब पर फिल्माया गया ये गाना है। हमारे साथी की बात है कि जिस कपड़े पर तिरछी लाइंस बनी हो उसे लहरिया कहते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि राजस्थान में नवविवाहिता बहू के लिए लहरिया भेजा जाता है, वह मुख्यतः पचरंगी या रानी कलर में होता है और उसके साथ श्रृंगार का सामान लहरिये का चूड़ा और घेवर मुख्य रूप से भेजे जाते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि पति पत्नी का जो आपस का प्यार होता है वही सच्चा श्रृंगार होता है। एक साथी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ इसे सावनी कहते हैं और इसमें न्यूली मैरिड जो लड़कियों के लिए नई साड़ी चूड़ियां और पूरा सुहाग का सामान, खिलौने मिठाइयां और छोटे भाई बहनों के लिए भी कपड़े लाते हैं और मेरी बेटी के लिए भी सावनी अभी आएगी। और एक साथी लिख रहे हैं कि ससुराल से आने वाला उपहार जो हमारे यहाँ आता है उसे हरियाली कहते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि पहले सावन पर दुल्हन को चाहे वो मायके में हो या ससुराल में भेजे जाने वाले सामान को हमारे यहाँ संधारा कहते हैं। इसमें एक खास मिठाई, फिरनी और घेवर, तीन रंगों से बना झूले के लिए रस्सा, कपड़े, बर्तन और एक दो आभूषण भेजे जाते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि शादी के बाद पहले सावन या हरियाली तीज पर सिंजारा, नवविवाहिता स्त्री के मायके से जो उपहार भेजा जाता है उसे कहा जाता है, उसे सिंधारा हम यहाँ पर कहते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। जी हाँ, लहरिया के बारे में हमने बात की, खासतौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इसे पहना जाता है और विभिन्न रंगों में ये होता है और बहुत सारे रंगों की लाइनें आड़ी एक तिरछी लाइनें होती है और इस तरह से वो लहरिया सावन के महीने में मुख्य रूप से पहना जाता है और बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। चलिए अब हम अगला गाना आपके लिए लेकर आए हैं, दो रास्ते फिल्म का गाना, लता जी की आवाज़ से, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

दो रास्ते फिल्म का ये गाना हमने सुना। एक साथी हमारी लिख रही है कि मौसम कोई भी हो, त्योहार कोई भी हो, इस सवाल सदियों से सभी के मन में रहता है कि स्त्रियां इतना क्यों सजती है। घर में कितना भी काम धाम हो, वे सजने के लिए वक्त निकाल ही लेती है। स्त्रियों के अधिकार के अलावा एक मुख्य तथ्य यह है कि सजने से स्त्रियों में आत्मविश्वास की एक अलग अनुभूति प्रकट होती है। सलीके से लगाया गया काजल, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी में स्त्रियों का सौंदर्य निखर कर सामने आता है। सादगी के सौंदर्य में नहाई हुई किसी स्त्री को देखिए, वे नेह में नत और विनीत लगती है। किसी भी मौसम में नेह की तरह बरसती हुई स्नेह और संवेदना के रस में सिंचित नारी का असल सौंदर्य यही है। जी हाँ, सादगी का भी अपना आकर्षण होता है। ये सवाल हम आपसे करने ही जा रहे थे। सजना तो अच्छा लगता ही है, लेकिन सादगी का भी अपना आकर्षण होता है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, ये हमें बताइएगा। चलिए, अगला गाना परिणीता फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज़ और अरुण कुमार मुखर्जी का इसमें संगीत है। गीत किसका है ये आप हमें बताइएगा। कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये भी बता सकते हैं।

भरत व्यास का लिखा हुआ ये गाना है और मीना कुमारी पर फिल्म आया गया है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज तो गानों की हरियाली ही हरियाली है जी, एक के बाद एक अपने लिस्ट तो सुपर हिट है, बहुत आभार विविध भारती का। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हर एक स्त्रियों को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, बिंदिया काजल कजरा गजरा पायल मेहंदी चुनर हरी हरी चूड़ियां ये सब पहनकर अपने आप खुश होती है और सोचती है साजन भी जरूर कहेंगे कि तेरी बिंदिया रे और गजरा लगा के गजरा सजा के, ये वो कहेंगी जी। धन्यवाद आपका। चलिए अब मधु फिल्म का गाना हम आपको, देखिए हमने सोचा था कि कौन सी फिल्म का गाना है ये आपसे पूछेंगे लेकिन हमने ही बता दिया। मधु फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, नक्श लायलपुरी के बोल हैं, संगीत किसका है आप बताइए।

एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि लता मंगेशकर द्वारा गाया गया धानी चुनर मोरी हाय रे मधु फिल्म का ये गाना एक कालजयी गीत है।

नक्शलायल पुरी द्वारा रचित इस फिल्म में चुनरी के माध्यम से यौवन और प्रेम की चंचलता को दर्शाया गया है। रोशन का संगीत और लता मंगेशकर की आवाज इस क्लासिक को और भी मनमोहक बना देती है। एक साथी लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र में श्रावण महीने से त्योहार शुरू हो जाते हैं। पहले के जमाने में स्त्रियां 9 गज की साड़ियां पहनती थी, बाद में वो 5 गज पर आ गई है। सज धज कर त्योहार में हर्षोल्लास के साथ वो शामिल होती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक फूल चार कांटे इस फिल्म का गाना है, मुकेश की आवाज है, शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप बताइए।

सुनील दत्त और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना एक साथी की ये बात कि हमारे शहर में बरखा रानी बड़े प्यार से धरती का साथ सिंगार कर रही है और सुरीला सफर में हम नारी के आंतरिक और बाह्य साथ सिंगार की बातें कर रहे हैं, उस पर सुंदर से गीत सुन रहे हैं। ऐसी प्यारी अनुभूति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि सजने संवरने के लिए तो शहरों में आज पार्लरों की बाढ़ सी आ गई है। घर पर सस्ती महिलाओं का अब मन कहां भरता है। काम से फुर्सत मिलते ही बैग टांग कर पर्स लिए एक हाथ में मोबाइल और जा पहुंचती शहर के व्यस्ततम पार्लर में और नख से शिखर तक पूरा मेकअप कराकर ही लौटती है। वे ये जो पतिदेव हैं बड़े नाराज हमें लग रहे हैं। तो श्रृंगार जरूरी है लेकिन सीमाएं तय करना भी बहुत जरूरी है। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना अभिमान फिल्म से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत किसका है आप बताइए।

अभिमान फिल्म का ये गाना आपने सुना और इसमें बहुत खूबसूरत सा जो ये संगीत है ये एस डी बर्मन का संगीत है। बहुत सारे श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख करके भेज दिए हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे बिल्कुल साथ साथ रहे, हर बात का आपने जवाब दिया और खूबसूरत आपके कमेंट्स थे और आपने ये भी लिखा कि गीत आपको पसंद आए, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारी मुलाकात होगी। आज का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। आज्ञा दीजिए मंजू द्विवेदी को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, कई बार जो बात हम अपनी जुबान से नहीं कह पाते वो हम संकेतों में या इशारों में व्यक्त करते हैं। कई बार हमारे संकेत स्पष्ट नहीं होते तो समझने वालों को उलझन हो जाती है या अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। मानव तो मानव, पशु पक्षी तक संकेतों में बातें करते हैं। मधुमक्खियां तो नृत्य के संकेत से अपना संदेश देती हैं। हम लोग भी तो इशारों में न जाने अपने दिल की कितनी बातें कह जाते हैं। तभी तो सुप्रसिद्ध मध्यकालीन कवि बिहारी लाल नायक नायिका के इशारों भरे प्रयासों के लिए कहते हैं, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। सच में इशारों की भाषा अनूठी होती है।

से। भाषा के अतिरिक्त इशारों से हम अपनी भावना को और स्पष्ट एवं प्रभावशाली बना देते हैं। कई बार सर को हिलाकर या हाथों के इशारों से हम कई बातें बिना बोले भी स्पष्ट कर देते हैं। कहते हैं आंखें हमारे मन का दर्पण होती हैं, और इसीलिए आंखों के इशारों का क्या कहना। आंखों के विभिन्न प्रकार के संकेतों से हम क्रोध, घृणा, प्रेम, हर प्रकार की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। कई बार तो दो दिलों का रिश्ता भी मासूम से आंखों के इशारों से ही तो शुरू होता है।

0: दुनिया संकेतों या इशारों से भरी हुई है। जिंदगी को सही ढंग से जीने के लिए हर प्रकार के इशारों को समझकर उसके अनुसार काम करना ही तो समझदारी है ना? कवि की कविता हो या जिंदगी में कुदरत का इशारा या ट्रैफिक सिग्नल का लाल हरी पीली बत्तियों का इशारा, इसलिए इशारों को सही ढंग से समझना भी तो जरूरी है।
1: बाजू।

कहते हैं समझदार को इशारा ही काफी होता है, यानी समझदार लोग थोड़ी सी बात से ही पूरी बात समझ लेते हैं। इशारों को समझकर जीवन को बेहतर बनाना भी एक कला है। इशारों से मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति को पूर्णता मिलती है। आज का त्रिवेणी का सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: जो पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जय जय कहा से हुजूर।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया, 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट

0: पूछ रहे ना।
1: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
2: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। कई मांग है कि सीबीआई जांच करा दो और जेएसएससी के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ईडी जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है।
1: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
3: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
1: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। मार्च के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तीनों जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ

0: मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साह पूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दो पहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
4: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या

0: बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं, ऐसा नहीं है। ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का जो पहला गाना है तूफान और दिया। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, संगीत है वसंत देसाई का।

लता मंगेशकर की आवाज में ये मीरा भजन आपने सुना, संगीत वसंत देसाई का, फिल्म का नाम तूफान और दिया। और अब श्रीमती 420 इस फिल्म का गाना आपको हम सुनवा रहे हैं। गीता दत्त की आवाज, जानेसार अख्तर के बोल, संगीत है ओपी नैयर का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। अब जो गीत आपके लिए लेकर आए हैं ये लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में शतरंज फिल्म का गाना है। राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है सी रामचंद्र का।

रंगीन रातें ये फिल्म का नाम है जिसका गीत अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में। केदार शर्मा के बोल, संगीत है रोशन का।

राजी सही ये अपनी बरसात सही जब थलते

0: और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्युलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: राजहट फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।

लीजिए अब सुनिए CID फिल्म का गाना गीता दत्त की आवाज में, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार OP नैयर।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं, पॉकेट मार फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और साथियों के आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, संगीत है मदन मोहन का।

0: जी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में कथित भर्ती परीक्षा अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं, जबकि पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। मार्च के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। छात्रों ने कहा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच सहित प्रमुख मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं ईडी ने कथित जेपीएससी परीक्षा अनियमितताओं के संबंध में ईसीआईआर दर्ज किया है। महवीश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: परीक्षा विवाद को लेकर विधानसभा की ओर मार्च कर रहे आंदोलित छात्रों और पुलिस के बीच आज हल्की झड़प हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के प्रयास में 2 छात्र और 1 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद राजधानी रांची के संवेदनशील इलाकों और विधानसभा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी कर दी गई है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक

0: प्रकाश समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर खेलगांव स्थित कैंप जेल भेज दिया है। श्री मरांडी ने सरकार पर हठ धर्मता का आरोप लगाया है।
1: एसएससी से लेकर के जेपीएससी सभी एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, नौकरी को बेचा गया है। बच्चों की एक ही मांग है, उसकी सीबीआई जांच हो। अच्छा, हम सब लोग चाहते थे मुख्यमंत्री से हम लोग मिले और बात करें, लेकिन हम सब लोगों को गेट पर ही रोक दिया गया और वहीं से गिरफ्तार करके खेलगांव में, पूरे झारखंड में हम सब इस लड़ाई को लड़ेंगे।
0: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्य सरकार तानाशाही पर उतारू है और पुलिस के बल पर छात्रों की आवाज को दबाना चाहती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज सदन की कार्यवाही में भारी राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिली। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों की अनुपस्थिति पर चिंता जताई। इस बीच सदन में मंत्री सुदीव्य कुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा ने छात्र आंदोलन को हैक कर लिया है। उन्होंने छात्रों से दोबारा वार्ता की मेज पर आने की अपील करते हुए कहा कि सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। भाजपा महानगर इकाई द्वारा आज राजधानी रांची में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस देश प्रेम यात्रा में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सेठ ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की।
2: हजारों किलोमीटर की सरहद पर जब लाखों सैनिक -40 डिग्री टेम्परेचर कितना भी ऊंचा हो कोई परवाह नहीं, नारा गाते भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो आज हम सब भी जब स्वाधीनता दिवस के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो यह हमारी आन बान शान है।
0: रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 के तहत आज विशेष फिल्म स्क्रीनिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल्लूई भाषा में बनी निर्देशक प्रिंसिपाल के फिल्म व्हाट आर यू सर्चिंग दिखाई जाएगी, जो आदिवासी समाज की सोच और पहचान को दर्शाती है। इसके साथ ही अशोक वेलू द्वारा निर्देशित भावनात्मक फिल्म लुक एट द स्काई का भी प्रदर्शन होगा, जो दर्शकों को प्रकृति से जुड़ाव का भावपूर्ण अनुभव कराती है। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर आज पूरे राज्य के शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। देवघर के प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में लाखों श्रद्धालु कतारबद्ध होकर पवित्र ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं कोडरमा के चंदवारा में हजारों शिव भक्तों ने गोरी नदी से जल भरकर 12 किलोमीटर की भव्य कांवर पदयात्रा निकाली और दो मुहानी धाम में जलाभिषेक कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी
2: और सोनाली पाठक का नमस्कार। क्या हालचाल है?
1: देखिए, हम किसी से जब बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्या हालचाल है, क्या हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है आजकल। और ये हालचाल पूछना बहुत ही ज्यादा जरूरी है,
2: बहुत जरूरी बात है। और आजकल ऐसे हो रहा है मंजू जी,
1: हाँ?
2: कि ये बात जो है ना, ये युवा के ना पीछे भी छूटता जा रहा है।
1: अच्छा,
2: लोग मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए, इतने झुके रहते हैं कि वे हालचाल

0: चिंता नहीं करेंगे, उनकी परवाह नहीं करेंगे, उनकी कद्र नहीं करेंगे या उन्हें सम्मान नहीं देंगे, तो ये बहुत गलत बात होगी।
1: और ऐसा है ना, हर किसी को इस अवस्था से गुजरना है।
0: बिल्कुल,
1: अगर हम बुजुर्गों की परवाह करेंगे, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो देख के वो भी बुजुर्गों की परवाह करना सीखेंगे।
0: हाँ।
1: अगर हम उनके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं तो यही हमारे साथ भी हो सकता है।
0: आज सीढ़ी के जिस पायदान पर बुजुर्ग खड़े हैं, कल हम भी उसी पायदान पर खड़े होंगे, तो इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए आज हमने विषय चुना है कि बढ़ती उम्र और बुजुर्गों का हठीलापन। तो ये हट वाली जो बात है, तो ऐसा नहीं कि सभी में होती है, लेकिन कई कारण होते हैं इसके पीछे,
1: जिसके पीछे वो हटेले हो जाते हैं।
0: शारीरिक अवस्था भी होती है और बाहर के भी बहुत सारे कारण होते हैं। आसपास का वातावरण हो सकता है, आसपास के लोग हो सकते हैं, परिस्थितियां हो सकती, कोई भी कारण हो सकता है। तो उन कारणों का आज हम विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा
1: कथा सुधा, जिसका सारे श्रोतागण, सारी सखियां इंतजार कर रहे हैं, 73 भाग 1, इसे हम सुनेंगे। और व्यंजन,
0: हाँ, ये तो एक बहुत ही एक मुख्य हमारा जो कहते हैं सेक्शन हो सकता है या होता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि खाना पीना सभी को पसंद होता है। तो आज कौन से व्यंजन हम खिलाएंगे?
1: पश्चिम बंगाल के व्यंजन में बसंती पुलाव और संदेश, ये इसे सौंदेश भी कहते हैं।
0: जी हाँ। तो हमारा सौंदेश ये है कि आप सुनते रहिए विविध भारतीय सखी सहेली कार्यक्रम, सुनिए। और ये जो व्यंजन हम थोड़ी देर में बनाने वाले हैं या इसकी रेसिपी जो बनाने वाले हैं, तो इसके बारे में आप बिल्कुल सजग रहिएगा कि किस, देखिए एक व्यंजन होता है लेकिन रेसिपी जो है बहुत अलग तरह से, अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से बनाई जाती है। उसका स्वाद भी जैसे जैसे हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अलग होता
1: बदलता जाता है।
0: हाँ।
1: और उसकी जो उसकी मिट्टी की खुशबू है ना, वो उस व्यंजन में नजर आती है ना।
0: लेकिन विविध भारती एक ऐसा मंच है कि जहाँ पर हर क्षेत्र के श्रोता इसे सुनते हैं और अपने अपने क्षेत्र के बारे में वो बताते हैं कि वहाँ इसे किस तरह से बनाया जाता है, कब खाया जाता है, इसका रंग कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, इसकी सुगंध कैसी होती है।
1: तो हम श्रोताओं से कहेंगे आप भी लिखकर भेजिए कि आपने ये बसंती पुलाव या सौंदेश बनाया है या नहीं बनाया है। और अगर नहीं बनाया तो बनाने वाले हैं क्या, या फिर जिनके घर में बनता है तो वो लिखकर भेजिए। साथ ही बुजुर्गों वाली जो बात कही हमने, तो आपके घर में बुजुर्ग है क्या और किस तरह से उनका हट होता है, कभी बाल हट की तरह भी होता है उनका हट, तो आप उनका हट पूरा करते हैं या नहीं, इस तरह से कमेंट्स हमें जरूर लिखकर भेजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार है।
0: बिल्कुल, फिलहाल हमें गीत का इंतजार कर रहे हैं।
1: सुनते हैं।
2: देख लिया कहां रहता हूं, जहां मौत जिंदगी पर हंसती है।
3: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
2: लेकिन कब, कैसे
3: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।

0: सोनाली, गाना हमने सुन लिया और अब कथा सुधा का वक्त हो गया है। तो आज की जो कहानी है तेतर, इसका पहला भाग हम सुनेंगे। इसके बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने कुछ बातें लिखी है कि इस ये जो शब्द है तेतर, इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में लिखा है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि तेतर महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध मार्मिक कहानी है, जो तीन पुत्रों के पश्चात पैदा होने वाली कन्या और उससे जुड़े समाज के अंधविश्वासों पर आधारित है। और कहानी का परिचय और मुख्य बिंदु कथानक तीनों बेटों के बाद घर में बेटी यानी कि तेतर का जन्म होता है, तो उसके बारे में जो बातें हैं, बहुत मान्यताएं हैं, उसके बारे में ये कहानी है। हमारे श्रोताओं ने ये जानकारी हमें लिख करके भेजी, सुन ले अपन।
1: सुनते हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। कहना न होगा कि प्रेमचंद ने अपने समय के समाज में जो कुछ भी देखा उसका हूबहू सजीव चित्रण भी किया, जो आज के समय में हमें रास्ता दिखाने का भी काम करता है। लड़कियों के जन्म को लेकर बनी हुई मानसिकता और घोर निराशा व चिंता को देखते हुए एक लेखक ने इस कहानी के माध्यम से सभी को आगाह करने का प्रयास किया है। तेतर नाम की कहानी में लेखक ने तीन लड़कों के बाद जन्म लेने वाली लड़की का उल्लेख किया है, जिसे पहले से ही हमारे पुरुष प्रधान समाज में एक आफत और चिंता के रूप में देखा जाता है। कहानी में मुख्य रूप से समाज में एक तेतर लड़की को लेकर फैले हुए अंधविश्वास पर चोट की गई है, जो कहीं न कहीं हमारे बीच के कुछ लोगों द्वारा प्रसारित किया जाता है और इस अंधविश्वास को पुख्ता करने के लिए तरह तरह का स्वांग किया जाता है। जो व्यक्ति इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता, उसे भी इन अंधविश्वास से भरे समाज में डर लगने लगता है। जैसे कि कहानी में लड़की का पिता, जिसका नाम दामोदर है, वो इन अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता, पर कहीं न कहीं वो भी अपनी माँ की बातों से थोड़ा घबराया हुआ था। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपको सुनवा रहे हैं इस कहानी का पहला भाग।
4: आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। तीन पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ। माता सौर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और पिता की वृद्धा माता सौर द्वार पर सूख गई। अनर्थ महा अनर्थ, भगवान ही कुशल करे तो हो, ये पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभागिन को इसी घर में आना था, आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान सातवें शत्रु के घर में भी तेतर का जन्म ना दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त, शिक्षित आदमी थे,

0: शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिन होती है, या पिता को लेती, या माता को, या अपने को। उनकी वृद्धा माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने।
1: अरे कलमुही है कलमुही, न जाने क्या करने आई है यहाँ। अरे किसी ऐसे के घर जाती जिसके औलाद नहीं है तो उसके तो दिन फिर जाते।
0: दामोदर दत्त दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे।
2: अम्मा तेतर वेतर कुछ नहीं, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है, ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा। गाने वालियों को बुला लो अम्मा, नहीं तो लोग कहेंगे तीन बेटे हुए तो कैसे फूली फिरती थी, एक बेटी हो गई तो घर में कोहराम मच गया।
1: अरे बेटा तुम क्या जानो इन बातों को, मेरे सिर तो बीत चुकी है, प्राण तो उसी में समाया हुआ है। तेतर ही के जन्म से तुम्हारे दादा का देहांत हुआ, तभी से तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कहां उठता है।
2: अम्मा इस कष्ट के निवारण का कोई तो उपाय होगा।
1: उपाय बताने वाले तो बहुत तेरे हैं, और पंडित जी से पूछो कोई ना कोई उपाय बता ही देंगे, पर इससे कुछ होता नहीं है। मैंने कौन से अनुष्ठान नहीं किए, पर पंडित जी की तो मुठ्ठियां गर्म हुई, यहां जो सिर पर पड़ना था वो पड़ ही गया, अब टके के रह गए पंडित जी, जजमान मरे या जिए उनकी बला से, उन्हें दक्षिणा मिलनी चाहिए बस। लड़की तो जरा देखो दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हृष्ट पुष्ट है ये, बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल होंठ हैं, जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्टा रंग तो देखो, लंबी सी नाक। कलमुही नहलाते समय रोई भी नहीं, ठुकुर ठुकुर ताकती रही, ये सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं, हाँ।
0: दामोदर दत्त के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी ना थे, लड़की के रूप का बखान सुनकर उनका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। बोले,
2: अम्मा तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुला भेजो, गाना बजाना होने दो, भाग्य में जो कुछ है वो तो होगा ही।
1: क्या बताएं, जी तो हुलसता ही नहीं, लेकिन करूं क्या।
2: अम्मा गाना न होने से कष्ट का निवारण तो होगा नहीं कि हो जाएगा, अगर इतने सस्ते में जान छूटे तो न कराऊंगा ना।
1: अब बुलाए लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना था वो तो हो ही गया।
0: इतने में सौर में से पुकार कर लक्ष्मी ने कहा,
3: अम्मा जी, ओ अम्मा जी, बहू जी कहती हैं गाना वाना कराने का कोई काम नहीं है।
1: भला उनसे कहो चुप बैठी रहें, बाहर निकलकर मनमानी करेंगी, 12 ही दिन हैं, बहुत दिन नहीं है। बहुत इतराती फिरती थी, ये ना करूंगी वो ना करूंगी, देवी क्या है देवता क्या है, मर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाने लगती थी, तो अब चुप से बैठी क्यों नहीं रहती हैं। मेमे तो तेतर को अशुभ नहीं मानती, और सब बातों में जब मेमों की बराबर करती हैं तो इस बात में भी करें, कहो चुप बैठी रहें। और सुनो लक्ष्मी, जाओ जरा गाने वालियों को बुला लाओ, और हाँ सब जगह न्योता दे दो, और पड़ोस में भी कहती जाना, हाँ।

0: सवेरा होते ही लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा,
1: बड़ी अम्मा बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ बताइए ना।
2: अरे लड़की तो हुई है बेटा।
1: क्या? ओहो हो हो हो, पैजनिया पहनकर छुन छुन चलेगी? जरा मुझे दिखा दो दादी जी, थोड़ा दिखा दो ना।
2: अरे तो क्या शोर में जाएगा है, पागल हो।

0: गया क्या? चल बाहर चल, लड़के नहीं जाते अंदर।
1: लड़के की उत्सुकता न मानी, सौर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला,
2: अम्मा अम्मा जरा बच्ची को मुझे दिखा दो, एक बार दिखा दो अम्मा।
3: कहाँ जाते हो? बच्ची भी सोई है, चलो बाद में आना।
2: बच्ची को मुझे दिखा दो, जरा दिखा दो, गोद में लेकर देखूंगा।
1: लक्ष्मी ने कन्या उसे दिखा दी तो वहाँ से दौड़ता हुआ वो अपने छोटे भाइयों के पास पहुँचा और उन्हें जगा जगा कर खुशखबरी सुनाने लगा।
2: अरे छोटू सुनो, अरे छोटू सुनो, उठो उठो। अरे मैं अभी गुड़िया देखकर आ रहा हूँ।
4: कोई लगाओ भैया, नन्ही सी होगी?
2: अरे बिल्कुल नन्ही सी, एकदम गुड़िया जैसी है। गोरी तो ऐसी कि क्या किसी साहब की लड़की होगी। ये लड़की तो मैं लूंगा।
4: हम भी देखेंगे। कोई लगाओ।
2: देखा कैसी सुंदर है,
4: ऐसा के मन करके सोए। देखो ना भैया, हमको भी दिखाओ। नहीं नहीं, हमें तो हम भी देखेंगे।
2: खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े आतिशबाजी, क्या मजा आएगा।
4: बड़ा मजा आएगा।
1: मंझला और छोटा ऐसे मग्न हो रहे थे मानो वो मनोहर दृश्य आंखों के सामने है। उनके सरल नेत्र मनोल्लास से चमक रहे थे।
4: फूल आविया भी होंगे,
5: ढेर सारे फूल होंगे, हम भी फूल लेंगे।
4: बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा।
5: कितने सुंदर है।
1: छठी भी हुई, बरही भी हुई, गाना बजाना, खाना खिलाना, देना दिलाना, सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जाती थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन और रात नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से विकल होकर रोने लगती। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात यह थी कि अब की उसकी छाती में दूध ही नहीं उतरा। यूं भी उसे देर से उतरता था, पर लड़कों की बेर उसे नाना प्रकार की दूधवर्धक औषधियां खिलाई जाती। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता, यहां तक कि दूध उतर ही आता था। पर अब की ये आयोजनाएं न की गईं। फूल से बच्ची कुमलाती जाती थी। माँ तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। हाँ, लक्ष्मी कभी चुटकियां बजाकर चुमकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती कि वो आंखें पोंछती हुई चली जाती थी। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस ना पड़ता था। बड़ा बेटा सिद्धू बच्चे को बाहर ले जाकर खिलाने के लिए बार बार जिद करता तो माँ उसे झिड़क देती।

0: तीन चार महीने हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न थी। चुप चुप की आवाज आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वो ना रोती थी ना हाथ पैर फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मग्न थी मानो उसमें सुधा रस भरा हुआ है। वो माता की ओर मुंह भी ना फेरती थी, मानो उसका उन पर कोई अधिकार नहीं, उसके लिए वहां कोई आशा नहीं। बाबू साहब को उस पर दया आई।
1: अरे बच्चे, कितनी प्यारी है गुड़िया। इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ भावी अनिष्ट की आशंका के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से

0: इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? आ जाओ गुड़िया, आ जाओ।
1: उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पैर उछालकर गुंगुंग करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई।

0: प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर लाए।
1: अरे यहाँ क्यों ले आए, पड़ी रहने दो ना वहीं पर। ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है, अभागन कहीं की, रात दिन तो प्राण खाती रहती है, अब मर भी नहीं जाती कि जान छूट जाए।
2: अरे बस भी करो, मैं से बाहर ले जाता हूँ।
0: दामोदर दत्त उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खिलाने लगे। उसके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी, पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चरा करती थी। इस समय भी वो चर रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा,
2: सिद्धू सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ला ला ला ला ला, लाओ तेरी बहन को दूध पिलाएंगे, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो।
0: सिद्धू को दिल लगी हाथ आई, उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा, आज शायद पहली बार उसकी शुधा तृप्त हुई थी। वो पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया।

कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पिता का प्यार, भाइयों का दुलार मिलने से नन्ही बच्ची दिन ब दिन निखरती जा रही है। आगे क्या होता है इसके लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा भाग। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। कहानी में भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, वृद्ध दादी रेणु चतुर्वेदी, दामोदर दीपक के सावलेकर, दामोदर की स्त्री स्वप्निल श्रीवास्तव, लक्ष्मी चंचल वर्मा, बाल कलाकार प्रज्वल सिंह, वेदांत सिंह और रुद्र सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, संकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: सोनाली, हमने बरखा फिल्म का ये गाना सुन लिया और उससे पहले हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानी तेतर उसका पहला भाग भी सुन लिया। अगला भाग हम जरूर सुनेंगे अगले सोमवार के दिन, लेकिन अभी
1: अब ब्रेक लेते हैं।
0: हाँ।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और हम फिर से हाजिर हैं सखियों से बातचीत करने के लिए। और अब अपने विषय पर आते हैं, उससे पहले तुम कुछ कहना चाहती हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है,
0: हाँ?
1: मंजू जी, कि इस समय मेरी धर्म पत्नी और मैं स्वयं डल लेक के सामने श्रीनगर के होटल के रूम में आनंद ले रहे हैं और अपने शहर अजमेर से लगभग 1,500 किलोमीटर दूर ये हमारी दीवानगी विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। जो सुबह सुरीला सफर जो प्रोग्राम चल रहा था ना, तब भी हमारे इन्हीं श्रोता का फोन आया, मैसेज आया था, और उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बात लिखी थी कि वो घूमने गए हैं और वहां पर जो नजारे हैं उसके बारे में लिखा था। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह के अपडेट्स जो है वो हमें देते रहते हैं। और आज हमारा जो विषय है, बुजुर्गों में बढ़ता हठीलापन, इसके बारे में भी हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें लिखी है। पहले कुछ बात हम अपनी, यानी जो हम कहना चाहते हैं वो करते हैं कि कहा जाता है कि बचपन और बुढ़ापा जीवन के दो ऐसे पड़ाव होते हैं जहां व्यक्ति को सबसे अधिक स्नेह, धैर्य और अपनापन चाहिए होता है। फर्क केवल इतना ही होता है कि बचपन की जो जिद होती है वो मासूमियत भरी होती है, लेकिन बुढ़ापे की जो जिद होती है वो कई बार हट का रूप ले लेती है। यानी बच्चों की जिद तो हमें समझ में आती है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे हैं, जिद तो करेंगे, लेकिन वही जब बुजुर्ग व्यक्ति करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इन्हें ये कैसे हट कर सकते हैं,
1: ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना। वैसे मंजू जी, आज के समय में ये शिकायत अक्सर सुनने को मिलती है कि हमारे पिताजी या माताजी बहुत जिद्दी हो गए हैं, लेकिन यदि इस व्यवहार के पीछे के कारणों को अगर समझा जाए तो पता चलता है कि उनका हट केवल स्वभाव नहीं बल्कि परिस्थितियां, अकेलापन और भावनात्मक असुरक्षा का ये परिणाम हो सकता है।
0: तो हमें इन कारणों को जानने के बारे में सोचना चाहिए या जानना चाहिए। तो हठीलापन वो स्थिति होती है जब व्यक्ति अपनी बात, अपनी आदत या अपने निर्णय पर अड़ जाता है और दूसरे के विचारों को स्वीकार करने में उसे कठिनाई महसूस होती है। बुजुर्गों में ये जो व्यवहार, ये

0: अक्सर उम्र, अनुभव, स्वास्थ्य और बदलते सामाजिक परिवेश के कारण दिखाई देते हैं। यानी कारण कोई भी हो सकता है,
1: हमें समझ कारण होते हैं ना?
0: हाँ, हमें समझना पड़ेगा।
1: अब जैसे बदलते समय में ये जो स्वीकारना है, इस बदलते समय में खुद को यानी उसके हिसाब से ढालने, इसमें उन्हें कठिनाई आ सकती है। और जिस समाज में उन्होंने जीवन बिताया, आज वही समाज पूरी तरह बदल चुका होता है। नई तकनीक है, नई सोच है, नई जीवन शैली है और नई पारिवारिक मूल्य उनके लिए सहज नहीं होते हैं।
0: बिल्कुल। और जैसे कि इसके बारे में अगर हम एक उदाहरण दें तो हमारे घर में कोई भी बुजुर्ग हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, ससुर, कोई भी हो सकते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि पूरा परिवार जो है वो रोज एक साथ बैठ करके भोजन करे। लेकिन होता क्या है कि आजकल जिस तरह से नौकरी लोग कर रहे हैं और उनका समय बहुत ज्यादा होता है, नौकरी का, पढ़ाई है या अलग अलग समय के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि परिवार टूट रहा है। जबकि अगर वास्तविकता की तरफ अगर हम नजर डालें तो यही कहा जा सकता है कि दिनचर्या सबकी अलग अलग है, तो परिस्थितियां कुछ बदल गई हैं, लेकिन कुछ लोगों को इन परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है उनके हठीलेपन का।
1: पर हम एक उसमें बीच का एक रास्ता चुन सकते हैं कि भाई ठीक है, दादाजी का मन है, उनकी इच्छा है, तो हम हफ्ते में एक बार या दो बार तो हम कर ही सकते हैं।
0: हाँ, जब संभव
1: कर ही सकते हैं
0: जी। हाँ।
1: तो होता यूं है कि लोग खाना खाने बैठे हैं, उस वक्त भी उनका ध्यान नहीं होता है कि खाने में नमक ज्यादा है या कुछ कम है या कुछ है, वो तो उस मोबाइल देखते हुए खाते हैं।
0: हाँ, और या तो टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए, जबकि पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पूरा परिवार साथ में बैठ करके एक दूसरे से बातचीत करते हुए भोजन करते थे, तो उसमें सुख दुख का बंटवारा भी हो जाता था। सब अपने मन की बात कहते थे, दिन भर क्या हुआ उसके बारे में एक विश्लेषण होता था। तो वो एक बहुत ही अच्छा एक तरीका था जो अभी भी होना चाहिए। लेकिन जब नहीं होता है तो कई बार बुजुर्ग लोगों को ये बात ठीक नहीं लगती है,
1: तकलीफदायक हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: और एक बात है मंजू जी कि आजकल ना सम्मान थोड़ा सा कम देने लगे हैं लोग, कि पुराने जमाने में हमारे जो दादाजी हुआ करते थे वे अपने पिताजी को या उनके दादाजी को बहुत सम्मान देते थे, उन्हें महत्व देते थे। हर काम में कोई भी बड़ा या छोटा काम करने से पहले उनकी सलाह ली जाती थी। पर आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि जैसे ना कि खुद की जैसी इच्छा हो उसी तरह से व्यवहार करे। पर बुजुर्गों को थोड़ा सा अगर मान सम्मान दिया, उनसे पूछ परख लिया, अगर उनसे सलाह ले ली तो उन्हें भी अच्छा लगता है। फिर ऐसी बात अगर उन्हें इस तरह से उन्हें शामिल नहीं किया गया तो वे नाराज हो जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जमाने में कैसे बुजुर्ग बैठ कर आपस में पूछते थे, परखते थे, फिर कोई घर का निर्णय लेते थे। आजकल तो हमें सब काम होने के बाद में पता चलता है कि नया घर खरीदा जा रहा है या फिर कोई शादी विवाह का मामला है या फिर कोई अन्य मामला है, बच्चों के एडमिशन की भी बात हो तो भी अरे हमें तो पूछा भी नहीं कि एडमिशन भी हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें ना बुजुर्गों को थोड़ी
0: चुभ जाती
1: हो सकती है।
0: बिल्कुल। और पहले के जमाने की तुम बात कर रही हो तो जो बड़े लोग होते थे ना, एक बार अगर उन्होंने कह दिया कि ये होना है, यही होगा, तो हमारे जो पिताजी थे वो उनकी बात को बिना सोचे समझे मान लिया करते थे। लेकिन अब शायद थोड़ी सी परिस्थितियां बदली हैं और लोग ये सोचते हैं कि नहीं, नए जमाने या नई तकनीक या नए जो चाल चलन या जो तरीका जो है, चलन में जो तरीका है, उसके बारे में शायद बुजुर्गों को इतना पता ना हो। तकनीक बहुत कुछ बदल गई है तो हमें क्या करना है ये हमें ही ज्यादा अच्छी तरह से मालूम है। शायद इस सोच की वजह से भी हम पूछते नहीं हैं उनसे, और ये भी एक कारण है कि ये उनके मन में कुछ इस तरह की भावनाएं पैदा करते हैं बुजुर्गों के मन में कि अरे अब हमारी तो कोई आवश्यकता ही नहीं बची, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। और फिर वो अपने महत्व को शायद ये चाहते हैं कि हमारा भी कुछ महत्व बताने के लिए भी हो सकता है ये एक कारण कि उनमें हठीलापन आ जाए
1: और कभी कभी रूठ भी जाते हैं।
0: बिल्कुल। तो उन्हें मनाना ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। गीत सुन लें, आप
1: सुनते हैं गीत।

0: मंजू जी, हमारे एक सखी ने लिखा है, मैं इस समय बेटी के घर बर्लिन से सखी सहेली कार्यक्रम सुन रही हूँ। इस समय यहाँ 12:05 हुए हैं, इंडियन टाइम से 3.5 घंटे पीछे हैं। कितना अच्छा लगता है ना।
1: हाँ, समय कोई भी हो, लेकिन अगर आप विविध भारती सुन रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी आनंद की बात है। चलिए, हमारा जो विषय है उस पर हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें लिखी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के मोबाइल और डिजिटल युग में सबसे बड़ा बुरा हाल जो है वो उम्र दराज और बुजुर्गों का है। जो कभी समाज के ऊपरी पायदान पर होते थे, उसे आज समाज कोई पूछता भी नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा जीवन का अनुभव उनके पास होता है और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहले समाज और परिवार के सभी बड़े काम जिन वडिलों को पूछे, वडिल यानी बड़े लोगों से पूछे बिना नहीं होता था, आज उनको पूछा नहीं जाता है। तो ये गलत है। अगर आप किसी भी घर में ऐसा होता है तो ये नहीं होना चाहिए।
0: एक साथ ही लिखते हैं मंजू जी कि मैं भी 75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, मुझमें कोई हठीलापन नहीं है। घर के सभी सदस्य मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं उन सभी की खबर ख्याल रखता हूँ। सुबह विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते हुए व्यायाम प्राणायाम कर लेता हूँ, शाम को इवनिंग वॉक करने चला जाता हूँ। इन सभी के अलावा विविध भारती फेसबुक पेज से कई श्रोता मित्र, उनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं, और उनके लिए विविध भारती के लिए यही कहता हूँ कि तेरे पास आकर मेरा वक्त गुजर जाता है। 2 घड़ी के लिए नहीं, जिंदगी की हर घड़ी के लिए गम जाने किधर चला जाता है पता ही नहीं चलता।
1: क्या बात है। जिंदगी के प्रति हमारा जो नजरिया होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है।
0: सकारात्मक होना चाहिए।
1: बिल्कुल। शारीरिक अवस्था चाहे कुछ भी हो, चाहे हम जवान हो या ढलती उम्र हो या बुढ़ापा हो, लेकिन जब हमारा नजरिया सही होता है तो जो शारीरिक परिस्थितियां हैं उनमें भी कुछ तो बदलाव आ ही जाता है।
0: यानी और है ना, छोड़ देने की आदत कि ठीक है उनके हिसाब से चलो, या फिर है ना कि हर चीज को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है।
1: हमें भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी उम्र इतनी बड़ी है तो परिस्थितियों में बदलाव आना स्वाभाविक बात है। उन परिस्थितियों से अगर थोड़ा सा सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाए, अपने नजरिए को थोड़ा बदल दिया जाए कि हाँ ये बदलाव तो होगा ही, हमारे जमाने में ऐसा होता था लेकिन इस जमाने में ऐसा हो रहा है, तो हमें भी इस समय के अनुसार चलना है। ये अगर सोच थोड़ी सी कर ली जाए तो भी बहुत सारी परेशानियों से हम बचे रह सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि बढ़ती उम्र और बुजुर्गों का हठीलापन

0: भाई, बढ़ती हुई उम्र एक तो वैसे ही खतरे की घंटी है, ऊपर से उनका हठीलापन। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे सोने पे सुहागा नहीं। ये हम हमारा सोचना ऐसा है कि ऐसी बात नहीं है, सोने पे सुहागा वाली बात नहीं है ये। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि हठीले लोगों से लगता है कि आप सभी का पाला पड़ा नहीं है, और इस तरह की बात लिखी है। हमारा इनसे ये कहना है कि बुजुर्गों के बारे में आप इस तरह से ये लिखना थोड़ा ठीक नहीं है। उन्हें थोड़ा आदर भाव से,
1: वे सिर्फ
0: उनकी
1: सम्मान
0: समस्या,
1: चाहते।
0: बिल्कुल उनकी जो समस्या है उसकी तरफ हमारी नजर होनी चाहिए, और उसे कैसे दूर किया जा सकता है, और उनकी समस्या को समझने का प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। कि जैसे कई बार होता है कि उम्र के हिसाब से हमारे जो सिर के बहुत सारे अंग होते हैं वो थोड़े से मंद पड़ने लग जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लग
1: भूलने
0: जाती है,
1: लगते हैं।
0: भूलने लगते हैं। तो इस तरह के जो बदलाव आते हैं उससे भी ये समस्या होती। हमें ऐसा लगता है कि हठीलापन है, जबकि ऐसा वो करते नहीं है, बल्कि ऐसा हो जाता है कि वो अपनी एक बात से चिपक जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो हठीलापन कर रहे हैं, तो हमें इन बातों को समझना होगा।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्गों की जिद से निपटने के उपाय धैर्य से सुने, उनकी बातों को काटे नहीं, उन्हें महसूस कराए कि उनकी राय क्या में महत्वपूर्ण क्या है, सम्मान दे, उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए, आदेश देने के बजाय प्यार से सुझाव दे, सक्रिय रखे उन्हें, सैर योग या पारिवारिक गतिविधियों में शामिल करे।
0: बिल्कुल, एक साथ ही ये भी लिख रहे हैं कि बुजुर्गों का हठीलापन कोई बीमारी नहीं, बल्कि उनके जीवन के इस पड़ाव की एक पुकार है, जो अपनों का साथ और सम्मान चाहती है। उन्हें बदलने की कोशिश करने के बजाय उनके इस व्यवहार को धैर्य और प्रेम से संभालना ही एक परिपक्व समाज और परिवार की पहचान होता है। तो ये बहुत सारे श्रोताओं ने बातें लिखी है, और भी कोई बात अगर तुम्हारे पास है तो तुम पढ़ के बता सकती हो हमें।
1: जी, एक साथ ही लिखते हैं कि बढ़ती उम्र में बुजुर्गों में हठीलापन आना एक बहुत ही मुख्य समस्या है, आम समस्या है। मुख्य कारणों में बढ़ती उम्र तो है, इसके चलते मुख्य कारणों में स्वतंत्रता खो देने का डर होता है, शारीरिक या संज्ञात्मक कमी, डिमेंशिया के कारण पराधीन होने का मनोवैज्ञानिक डर बना हुआ रहता है, जिसके कारण हमें उनमें बच्चों की तरह हठीलापन का एहसास होने लगता है। खासकर जब बढ़ती उम्र में उनकी उपेक्षा होने लगती है, तब उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। इसलिए उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, प्यार से समझाकर उनकी भावनाओं का सम्मान करें।
0: बिल्कुल, अब हम संगीत का भी सम्मान करते हैं, एक गीत सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं गीत।

0: ये फिल्म अगर देखी हो ना तो इसमें जो ये गाना है ना, दादी अम्मा मान जाओ, तो दादी के जो पोते होते हैं वो किस तरह से बड़े प्यार से दादी अम्मा को मनाते हैं, तो वो वाकई में देखने लायक है।
1: और ऐसे ही अगर दादी को या दादा को मनाया जाए तो दादी या दादा रूठेंगे नहीं, बिल्कुल से मान जाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही प्यार और ऐसा ही सम्मान उनके प्रति होना बहुत आवश्यक है। अब कुछ खाने पीने की बातें हो जाए।
1: आज हम पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाले हैं।
0: हाँ, जो बसंती चावल और सौंदेश की हम बात कर रहे हैं, एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बसंती चावल पंजाब के बहुत सारे प्रांत में बसंत पंचमी के दिन बनाया जाता है, जिसमें बासमती चावल को घी में पकाते हैं और उसमें केसर, ड्राई फ्रूट और चीनी का सिरप मिलाकर बनाते हैं, और मैंने अपने पड़ोसी के घर ये खाया है और बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी के साथ एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सौंदेश तो खाने के लिए मिठाई की दुकानों से मिल जाता है, बंगाली सहेली के घर पर बहुत सारे हमने बंगाली व्यंजन खाए हैं।
1: एक ने सौंदेश की रेसिपी लिखकर भेजी है हमारे एक साथी ने। इसकी सामग्री और तैयारी, तो दूध 1 लीटर फुल क्रीम दूध लेना है, चीनी 3 से 4 बड़े चम्मच लेना है, इलायची पाउडर छोटा आधा चम्मच और नींबू का रस या सिरका 2 बड़े चम्मच दूध को फाड़ने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: बनाने के लिए छेना बनाए, दूध को उबाले, फिर गैस बंद कर दे और नींबू के रस या सिरके में थोड़ा सा पानी मिलाकर धीरे धीरे दूध में डाले ताकि वे आराम से फट जाए। अब पानी निकाल ले। अब फटे हुए दूध को सूती कपड़े में छान ले और साफ पानी से धोकर अतिरिक्त पानी निकालकर उसे निचोड़ ले। अब उसको अच्छे से मैश करना है, उसको मसलना है। छेने को प्लेट में निकालकर हथेलियों से 7 से 8 मिनट तक चिकना होने तक मस ले। अब इसको पकाना है। इसमें अब पकाने के लिए इसमें पीसी चीनी डालना है मसलने के बाद में, और इलायची पाउडर मिलाए और मिश्रण को पैन में धीमी आंच तक 3 से 4 मिनट तक नरम होने तक पकाए और ठंडा करें और इसे आकार देना है। हाथों में घी लगाकर मिश्रण की छोटी छोटी लोइयां बनाएं और मनचाहा आकार देकर पिस्ता से या फिर काजू या फिर बादाम से सजा दे।
0: बिल्कुल सही बात तुमने कही है कि किस तरह से सजाया जाए। लेकिन सोनाली, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि पहले के जमाने में चाहे कोई त्योहार आए या कोई पर्व हो, कोई उत्सव हो, तो घर में ही सारी मिठाइयां
1: बनाई जाती थी।
0: हाँ, और वो बड़ी स्वादिष्ट भी लगती थी और कई कई दिनों तक हम उसे
1: खाते थे।
0: स्वाद मुंह से जाता ही नहीं था। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं कि बनाने का समय ही नहीं है तो बस बाजार से ले आओ और खा लो
1: और फ्रिज में रख दो।
0: हाँ, फ्रिज में रख दो। तो इसकी बजाय हम कभी कभी ये बनाने की अगर कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि घर की बनी हुई जो मिठाइयां होती है उसका स्वाद एकदम अलग होता है और शुद्धता की भी तो बात है ना। हमें पता है कि हमने कौन कौन सी सामग्री इसके अंदर मिलाई है, किस तरह से बनाया, और अगर घर में बनता रहेगा तो ये जो रेसिपी है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक
1: ट्रांसफर होती रहेगी।
0: अन्यथा अगर आगे हम नहीं बनाएंगे तो आगे वाली पीढ़ी को तो पता ही नहीं चलेगा कि इन पर्वों पर, इन उत्सवों पर क्या बनता था हमारे घर में और कैसे बनाया जाता है। तो ये भी एक बात है ना।
1: और जब हम घर में बनाते तो अच्छे हाइजीन का ध्यान रखते हैं।
0: हाँ।
1: साफ हाथ धोकर फिर हम ढक कर रखते हैं, उसमें कुछ कीड़ा ना लग जाए, इसलिए हम कितना ध्यान रखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और ध्यान रख के बनाना बहुत जरूरी है।
0: और पहले के जमाने में तो मैंने ये भी देखा है कि जब ये ऐसे पर्व उत्सव आते थे तो अपने घर में क्या बना है, एक प्लेट भर के हम अपने पड़ोसियों के और रिश्तेदारों के घर भी देने के लिए जाते थे और वहां से भी प्लेट भर के आता था। हाँ। तो हमें ये पता चलता था कि वहां क्या बनता है और उनकी उसी जो मिठाई है उसका स्वाद वहां का कैसा है। अगर हमें ऐसा लगता था कि नहीं, ये हमारे स्वाद से ज्यादा अच्छा है, तो हम कोशिश करते थे कि
1: वैसा
0: बनाया जाए।
1: यानी संस्कृतियों का भी आदान प्रदान पहले हुआ करता था,
0: होता था। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि घर में इस तरह की रेसिपी बनाना चाहिए हमें। चलिए, बसंती पुलाव किस तरह से बनाया जाए, हमारे श्रोता ने ये बात लिख करके भेजी है। तो बसंती पुलाव एक पीले सुनहरे रंग का सुगंधित मीठा सा चावल का व्यंजन है। बसंती नाम इसके सुंदर पीले रंग से जुड़ा है। इसे विशेष अवसरों, पूजा और पारिवारिक समारोहों में बनाया जाता है। मुख्य विशेषताएं उन्होंने लिखी कि आमतौर पर सुगंधित चावल का इस्तेमाल किया जाता है। घी, हल्दी या केसर से इसका आकर्षक रंग और खुशबू आती है।

0: किशमिश और काजू जैसे मेवे डाले जा सकते हैं। इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता आदि मसाले इसकी सुगंध बढ़ाते हैं और बंगाली भोजन में इसे अक्सर आलू की या दम या अन्य सब्जियों के साथ परोसा जाता है। और बसंती पुलाव की खासियत यह है कि इसमें मीठे और मसालेदार स्वाद का एक सुंदर संतुलन मिलता है। ये बात इन्होंने लिख करके भेजी है। और अगर इसकी रेसिपी भी हमारे साथियों ने लिख करके भेजी है तो वो भी हमें बताना चाहिए।
1: कितना उसमें, यानी 2 कटोरी चावल है तो उसमें कितना तेल लेना है, फिर कौन से खड़े मसाले का इस्तेमाल किया जाता है, पानी कितना डालना है, इस तरह से भी अगर लिख के भेजे ना तो अन्य श्रोता जो घर में सुन रहे हैं उन्हें भी और भी सहूलियत होगी बनाने
0: बिल्कुल
1: में।
0: और यहाँ एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे इन व्यंजनों की इन्होंने बात की कि इसमें गर्म मसाले भी मिलाए जाते हैं और मीठा भी स्वाद आता है, तो जो गर्म मसाले एक संतुलित मात्रा में मिलाए जाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बड़े हितकर होते हैं। तो पहले के जमाने के जो भी मीठे व्यंजन, चाहे कोई भी और व्यंजन हो, तो उनमें स्वाद के साथ सेहत का भी पूरा खजाना छिपा हुआ था। तो ये इसलिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर में बनाएंगे तो हम इन बातों का भी ख्याल रखेंगे।
1: और है ना, घर में मंजू जी जो बनाए जाते हैं ना मौसम के हिसाब से बनाए जाते हैं। कि जैसे सर्दियों में गोंद के लड्डू सबके घर में बनते ही बनते थे उस जमाने में, फिर अभी बारिश का मौसम आएगा तो अभी मकई आ रही तो मकई के व्यंजन बनते ही थे, क्योंकि हम साल भर उस वक्त सब चीजें नहीं मिलती थी।
0: बिल्कुल, तो इन बातों का ख्याल रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलो गीत सुनते हैं।

0: चंचल। सुना ली, इस गाने में जो एक शब्द है ना, धीरे से तेरा ये मुस्काना, बड़ा प्यारा लगता है। घर में भी जब कोई अच्छी सी कोई मिठाई मम्मी दादी नानी के हाथ से बनती है और वो हमें पसंद हो तो धीरे से एक मुस्कुराहट हमारे भी चेहरे पर आती है ना,
1: और वो खुशबू है ना, हाँ? वो खुशबू से ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन खाने के पहले, चखने के पहले ही उस खुशबू से जो घर में इतनी खूबसूरत महक आ जाती है ना, हाँ? कि हमें ऐसा लगता है अरे वाह, आज तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा हमें।

0: बिल्कुल।
1: और एक हमारी सखी ने भी लिखा है कि हम जो संदेश है वो हम गुड़ का हमारी सहेली बनाती है।
0: अच्छा,
1: तो आजकल जो हेल्दी ऑप्शन लोग चुन रहे हैं कि शक्कर के बजाय गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उसमें स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं।
0: बिल्कुल। और कहते हैं कि रसोई घर तो एक प्रयोगशाला होती है, जितने प्रयोग करेंगे उतनी नई नई बातें हमें पता चलेगी। चलिए, अब एक बात हमें ये पता चल गई कि कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है, तो अब हमें सखियों सखाओं से आज्ञा लेनी होगी। तो आज्ञा दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में कथित भर्ती परीक्षा अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं, जबकि पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। परीक्षा विवाद को लेकर विधानसभा की ओर मार्च कर रहे आंदोलित छात्रों और पुलिस के बीच आज हल्की झड़प हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के प्रयास में दो छात्र और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ रुपए से अधिक के पहले अनुपूरक बजट को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी है। इसमें सर्वाधिक राशि ग्रामीण विकास विभाग को दी गई है। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा महानगर इकाई द्वारा आज राजधानी रांची में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस देश प्रेम यात्रा में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू मुख्य रूप से शामिल हुए। साहिबगंज के उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने जिले के दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए दूर संचार समिति की बैठक की। उन्होंने पलाशगाछी और दुर्गा टोला जैसे नेटवर्क विहीन दियारा एवं पहाड़ी गांवों में मोबाइल टावर स्थापित करने और ग्रामीण आबादी को बेहतर संचार सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश बीएसएनएल को दिया। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर आज पूरे राज्य के शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। देवघर के प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में लाखों श्रद्धालु कतारबद्ध होकर पवित्र ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: पदार्थ है जो आपके शरीर में है, जो बहुत सारी ग्लैंड्स इसको सिक्रीट करती है, और ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, लेकिन इसका असर बहुत ही सीरियस होता है। चाहे वो कम हो जाए तो भी उसका असर बहुत सिग्निफिकेंट होता है, और वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो भी उसका असर काफ़ी गंभीर होता है। तो एक तरह से एक बैलेंस होना चाहिए हार्मोन के लेवल में। अगर हार्मोन्स के लेवल का बैलेंस खराब हो गया तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होंगे, और ये बहुत सारे हार्मोन्स है बॉडी के अंदर और नए नए और निकलते जा रहे हैं जैसे जैसे रिसर्च हो रहा है, साइंस प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे।
3: महिलाओं में ये समस्या आमतौर पर ज्यादा देखी जाती है।
2: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारी जो डिसऑर्डर्स है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है वो महिलाओं में, अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें

0: बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब देने में मुझे बहुत मजा आएगा,
1: जी
0: क्योंकि ये जो एरिया आपने चूज किया या अपन ने जो चूज किया कि कैसे बोन्स हार्मोन्स को अफेक्ट करती है, तो इसके बारे में जो जानकारी, तो सबसे पहले मैं इसमें आपसे और हमारे विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। और सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे महिलाओं में महीना बंद हो जाता है जिसको हम मीनोपॉज बोलते हैं या महावारी का बंद होना बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हार्मोन्स बनता है उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल एकदम कम आने लग जाता है और उसकी वजह से जो कॉमन सिम्टम्स तो महिलाओं में होता ही है कि जैसे चेहरे पे पसीना आना है, घबराहट होना है, मन उदास होना है, ये सारे सिम्टम्स उस टाइम पे होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन का इफेक्ट बोन्स पे भी बहुत होता है, तो अगर वो हार्मोन का जो एक पर्टिकुलर लेवल चल रहा है अचानक हार्मोन्स लेवल गिर जाता है तो उससे बोन्स वीक होना शुरू हो जाती है और उससे जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और ऑलमोस्ट 30-40% 50% महिलाओं को होता है और वो पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जबकि उस टाइम में उसको इंटरवीन करके उनकी बोन हेल्थ को अपन अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं।
1: क्या ये मुमकिन है कि इस तरह के मरीज पहले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास जाएं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनकी समस्या की जड़ क्या है और चीजें दूसरी दिशा में चली जाएं?
0: बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और उसका एक रीजन है कि आम पब्लिक को एंडोक्राइन डिपार्टमेंट के बारे में ज्यादा पता नहीं है, और ज्यादा पता है तो उनको यही जानते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मतलब है कि वो डायबिटीज को देखता है, थायराइड डिसऑर्डर्स को देखता है या मोटापे को देखता है, तो ये एक तीन डिसऑर्डर्स के लिए उनको पता है कि ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देखते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बोन्स की देखरेख करते हैं, उसमें जैसे एक हार्मोन का नाम होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, एक होता है विटामिन डी, एक होता है और भी कुछ कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो तो मैं यहाँ पे बताने का फायदा नहीं, पर ये दो इम्पोर्टेंट हार्मोन होते हैं और इन दोनों इम्पोर्टेंट हार्मोन के बारे में जो इनका कैसे बनता है, ये कैसे काम करता है, इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसके अंडरस्टैंडिंग जो पढ़ाई जाती है समझी जाती है वो एंडोक्राइन डिपार्टमेंट वालों के थ्रू होती है। तो अगर इससे कोई बीमारी होती है तो अगर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का कंसल्ट करेंगे तो बीमारी जल्दी से पता चल सकती है और जल्दी से उसका इलाज हो सकता है, उसका आउटपुट बहुत अच्छा हो सकता है। पर आम पब्लिक को ये पता है कि ये हड्डी का बीमारी, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर आपको हड्डी का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है आप एक बार जरूर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने सुना है या देखा है हमने कि जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के 4 साल के या जन्म के तुरंत बाद उनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो इस तरह के फ्रैक्चर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हॉर्मोन्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो उसका अगर टाइम पे पता चले तो उसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। ऐसे ही एक दूसरा डिसऑर्डर्स होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड की वजह से, जब हार्मोन ज्यादा बन जाता है तो उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर कैल्शियम ज्यादा बनता है, आपको रीनल स्टोन्स हो जाते हैं, आपको बार बार पथरी बनती है और आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, पथरी का ऑपरेशन करके निकलवाते हैं, पर आप उसकी जड़ में नहीं पहुंच रहे और उसकी जड़ में नहीं पहुंचने की वजह से कि आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, उसका सही इलाज नहीं हो रहा, तो आपको प्रॉब्लम चलता ही रहता है और अल्टीमेटली इसकी वजह से किडनी खराब हो जाती है, आपको किडनी डिजीज होता है, किडनी फेलियर हो जाता है। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आपको, जैसे मैंने एक और चीज बता दी एक तरह से कि आपको बार बार पथरी बन रही तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ये
1: यहां
0: दूसरा
1: मुझे एक कंफ्यूजन हो रहा है, और वो ये हो रहा है कि अब जैसे आपने कहा कि हड्डियों की समस्याएं हैं, तो अब अमूमन क्या होता है कि हड्डियों के डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है, तो कैसी परिस्थितियों में व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि ये पथरी की समस्या है तो मुझे किडनी स्टोन के डॉक्टर के पास नहीं जानी है, ये हड्डियों की समस्या है तो मुझे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ये यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है, ये डिसाइड कैसे होगा?
0: तो मैं सबसे पहले आपको बोलता हूं, अपन एक ही क्वेश्चन में तीन चार आंसर पूछे हैं तो वन बाय वन लेता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपको हड्डी के फ्रैक्चर के बारे में,
1: जी
0: तो मैं ये बोलूंगा कि कोई भी फ्रैक्चर जो कि ट्रोमा की वजह से हुआ है, जैसे रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, जैसे और किसी वजह से चोट लग गई फ्रैक्चर हो गया, तो उसका बेस्ट डॉक्टर है ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो
1: जो
0: उसके
1: टूट फूट हुई है।
0: टूट फूट हुई उसके लिए जाना, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट का नाम ही हड्डी जोड़ तोड़ विभाग है ना, तो उनके पास जाना है। लेकिन सपोज आप बाथरूम में स्लिप कर गए,
1: जी
0: फ्रैक्चर हो गया, या हल्का धक्का लग गया फ्रैक्चर हो गया, दो सीढ़ी स्किप हो गए गिर गए फ्रैक्चर हो गया,

0: अपने आप फ्रैक्चर हो गया, इन सब के लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो अगर फ्रैक्चर एक्सटेंसिव ट्रॉमा की वजह से हुआ तो आपको जाना है ऑर्थोपेडिक्स के पास, पर जो माइनर ट्रॉमा से फ्रैक्चर हो रहा है, अपने आप हो रहा है, फैमिली में फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, उसके लिए आपको जाना है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट।
1: बिल्कुल साफ कर दिया आपने इस मामले को।
0: अब उसके बाद दूसरी बात जो आती है कि आपने पूछा पथरी के बारे में।
1: जी,
0: तो पथरी क्या होता है कि आमतौर पर पथरी 2-4% लोगों को पानी कम पीने की वजह से बन जाती है, पर अगर पथरी बार बार बन रही है, अगर जिंदगी में किसी को पथरी एक बार बन गई ठीक है वो बन सकती है, लेकिन आपको बार बार पथरी बन रही, बार बार दर्द हो रहा है, इमरजेंसी जाना पड़ रहा है, या आपके यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, वो आपको ऑपरेशन करके पथरी निकाल रहे हैं, 3 साल बाद फिर पथरी बन गया, इस तरह का तो प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब है कि वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि उसका इलाज लेना हो सकता है, लेकिन उसको क्यों बन रहा है उसका कारण जानने के लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा।
1: जी, मेनोपॉज की बात चल रही थी और आपने कहा कि कुछ खास लक्षण होते हैं जिनसे हर महिला को उस समय गुजरना पड़ता है। अचानक वजन बढ़ जाना, वाटर रिटेंशन, है ना, ये तमाम चीजें हैं। तो क्या ऐसे समय में ये दौर अपने आप निकल जाता है या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की मदद लेनी जरूरी होती है?
0: इसका आंसर ऐसा हो सकता है कि बहुत बार जो ये सिम्टम्स होते हैं सभी महिलाओं को एक जैसे नहीं होते हैं।
1: जी,
0: कुछ महिलाओं को पता भी नहीं चलता कि उनका मेनोपॉज हुआ और निकल गया। तो उनको लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है, बट उनके लिए करना है कि अच्छा एक्सरसाइज करना चाहिए। अक्सर अमूमन ये होता है कि हमारे घर परिवार में माताएं बहनें अपने आप को इग्नोर करती है अपनी हेल्थ को, और घर के सब लोगों के हेल्थ का ध्यान रखती कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया, पोते ने दूध पिया कि नहीं पिया, लेकिन वो अपने दूध पीने का ध्यान नहीं रखती है, अपना दही खाने का ध्यान नहीं रखती है, अपनी एक्सरसाइज नहीं करती, वो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अगर बिना किसी सिम्टम के लिए निकल जाए तो कुछ नहीं करना, अपना एक्सरसाइज चालू रखो, अपना कैल्शियम विटामिन डी का डाइट अच्छा रहो और वजन नहीं बढ़ने दो। लेकिन कुछ लोगों को बहुत मूड स्विंग होता है, अचानक पसीना आ जाता है, घबराहट होता है
1: जी,
0: और ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा। इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी से होते हैं। तो इस तरह के लोगों को आपको कंसल्ट करना चाहिए विदाउट टाइम वेस्टिंग। जैसे मैं एक इंस्टीट्यूट में काम करता हूं, तो हमारे जो रेसिडेंट्स आते हैं उनको पढ़ाने के लिए जब बात चलती तो किसी महिलाओं की हिस्ट्री लेनी होती है, तो मैं उनको पहला एक सवाल पूछता हूं कि उनको उनके महीने के बारे में आप जरूर पूछें कि महावारी कैसी चल रही है। महावारी ठीक चल रही है तो उनको कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने का चांस है। इसलिए हम बोलते हैं कि वुमेन्स के अंदर महावारी रेगुलर होना एक बैरोमीटर ऑफ हेल्थ है। अगर आपकी महावारी ठीक चल रही है तो आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक है। और हमने ऐसा देखा भी हमारे घर परिवार में, बचपन में मम्मी कहती थी कि अरे महीना एक महीना भी चूक गया तो आगे लग गया तो घर वालों को टेंशन रहता है ये क्यों हो रहा है, होना नहीं चाहिए। तो सेम चीज है यहाँ पे भी, वो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हिस्ट्री से बहुत सारी डिजीज आपको पता चल सकती है। अगर किसी का महीना गड़बड़ हो रहा है तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में बहुत कॉमन होता है,
1: तो डॉक्टर के पास तुरंत
0: बिल्कुल जाना चाहिए, बताना चाहिए ये। और बहुत सारी चीजें शक्ल देख के डायग्नोस कर सकते हैं हम,
1: तो इस बारे में बात करेंगे कि शक्ल देख के आप कैसे डायग्नोस करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि आप कहीं नहीं जाइएगा।
0: बिल्कुल,
1: पहले डॉक्टर साहब से एक गाने की फरमाइश करते हैं, उसके बाद शक्ल देख के कैसे आप मरीज पहचानते हैं ये बात होगी।
0: तो हम इसमें माताओं बहनों की बात कर रहे हैं तो एक अच्छा फेमस गाना है, फूलों का तारों का सबका कहना है मेरी एक बहना है।
1: क्या हरे रामा हरे कृष्णा का ये गीत आनंद बख्शी की बोल, आर डी बर्मन की तरह सुनते हैं ये गाना।

0: रहना है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बहन को समर्पित गाना, और आप इस गाने से पहले कह रहे थे कि आप चेहरा देखकर मर्ज भांप लेते हैं, ये तो बड़ी चमत्कारिक बात
2: और
1: है।
2: बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं जब उदयपुर मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएट था तो हमारे प्रिंसिपल होते थे डॉक्टर सूरवीर सिंह
1: जी। जी,
2: तो उनके बारे में ये फेमस था कि वो इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतने अच्छे डॉक्टर कि जब मरीज उनके कमरे में घुसता तभी बीमारी बता देते हैं।
1: अरे गजब।
2: तो अब वो
1: ऑब्जर्वेशन
2: उस टाइम हमारा इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि ये कैसे बता देते बीमारी। लेकिन जब मैं एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन किया तो मुझे पता चलता है कि हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां हमारी है जो हम बता सकते हैं कि ये मरीज अंदर घुस रहा है, इसको ये बीमारी होने की संभावना है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि हम 100% बता देंगे, ऐसा नहीं, लेकिन 80% 90% बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन को ये बीमारी होने की ज्यादा संभावना है, इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे।
1: जी जी।
2: जैसे अभी आपने एक दो बीमारियां होती है कि ऑस्टियोपोरोसिस का एग्जांपल देता हूं, बोन की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई पर्सन जिसको कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कोई हिस्ट्री नहीं है ट्रॉमा की, और वो ऐसे झुक के चलने लग जाए, आगे झुक करके चलने लग जाए
1: जी,
2: तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका स्पाइन का हाइट कम हो गया।
1: अच्छा,
2: उसका स्पाइन का हाइट कम होने की वजह से वो आगे झुक गया, तो ये बीमारी क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है। और आपने बहुत बार देखा होगा अपने आस पड़ोस में महिलाएं बहुत झुक जाती है। हम जनरली ये समझते हैं तो उम्र के हिसाब से हो गया, ये कोई बीमारी नहीं है, बट वो एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी की वजह से हो गया। अगर उनका टाइम पे इंटरवेंशन किया जाए तो वो ऐसे नहीं झुकेंगे
1: जी। कई बुजुर्गों को दिखाई कि उनकी कमर दोहरी हो जाती है, और ये पुराने जमाने में
2: ज्यादा होता
1: ज्यादा
2: था,
1: देखा जाता था।
2: और दूसरा बीमारी होता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, वो एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल।
1: जी जी।
2: तो वो हार्मोन जब ज्यादा बनता तो शरीर भारी हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, गोल हो जाता है, और कहीं भी हल्का चोट लगे तो निशान बनने लग जाते हैं, नील पड़ जाती है। ये सारी बीमारियां बहुत बार शक्ल देख के बता सकते हैं इस पर्सन को ये बीमारी है।
1: कॉर्टिसोल तो हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस है ना?
2: ये बिल्कुल, कॉर्टिसोल स्ट्रेस का हार्मोन है कि अगर आपका जब भी स्ट्रेस होगा तो ये बढ़ जाएगा।
1: हाँ, तो वो कम हो तब हैप्पी है आदमी।
2: हाँ, वो उसका ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए। जैसे कि मैं इसको लाइन को शायद मैं बार बार जब भी अपना डिस्कशन को बोलूंगा कि हमारे सारे हार्मोन के लेवल ऑप्टिमम होने चाहिए, अगर आप बढ़ गया तो भी खतरनाक है। कॉर्टिसोल कम हो गया आपका ब्लड प्रेशर चला जाएगा।
1: ओके।
2: हाँ, तो इसीलिए हर चीज बैलेंस में चलती है, इसलिए एंडोक्राइनोलॉजी को हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन।
1: क्या बात,
2: सब चीज वैसे रहना चाहिए,
1: अनुशासित।
2: जैसे डायबिटीज भी एक ऐसा बीमारी जिसमें अनुशासन रहना चाहिए।
1: हाँ,
2: अगर आप अपना खाना ठीक से नहीं करेंगे, आप अपना एक्सरसाइज ठीक से नहीं करेंगे, दवाई ठीक से नहीं लेंगे, तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन अगर आप ये तीन चीजों को प्रॉपर करेंगे तो आप जितना जी सकते हैं उतना जियेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: और चेहरा देख के कौन कौन सी चीजें समझ में आ जाती हैं?
2: और चेहरा देख

0: से, जैसे कि हार्मोन्स होते हैं, जिन हार्मोन्स को मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स बोलते हैं,
1: जी
0: तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि महिलाओं के अंदर फेशियल हेयर नहीं होंगे,
1: जी
0: पर अगर महिलाओं में फेशियल हेयर आना शुरू हो गए तो इसका मतलब उनको ये पर्टिकुलर जो मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया है। तो वो मेल हार्मोन्स लेवल बढ़ने के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, वो कितना सीवियरिटी है, जैसे बहुत सारी महिलाओं में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फेशियल हेयर आ जाते हैं, तो इसका मतलब वो कोई ट्यूमर हो सकता है जो कि ये हार्मोन ज़्यादा बना रहा है, तो वो पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कि कोई पुरुष है उसके चेहरे पे बाल नहीं है, तो वो इसका मतलब उसके अंदर मेल हार्मोन है वो नहीं है, उसकी वजह से चेहरे पे बाल नहीं आ रहे हैं, तो वो हम बीमारी बता सकते हैं, कह सकते हैं कि इसको ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी। फिर एक हार्मोन होता है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, वो आपकी
1: जी
0: ग्रोथ को रेगुलेट करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाए तो बंदा
1: 6 फुट के
0: सवा
1: ऊपर,
0: छः नहीं 7 फीट का हो सकता है, और चेहरा बड़ा हो जाएगा, हाथ बड़े हो जाएंगे। जैसे
1: अच्छा
0: आपने WWF में कुछ लोगों को देखा होगा, मैं नाम नहीं
1: जी
0: लेना चाहता हूँ, बट वो जैसे बहुत बड़े हो
1: हाँ
0: जाते हैं, हेल्थ लंबा चौड़ा, तो वो उनको बेसिकली एक तरह से वो ग्रोथ हार्मोन का एक बीमारी है, वो ज़्यादा है, उसकी वजह से वो ज़्यादा बढ़ गए हैं।
1: क्या बात। मध्य प्रदेश में एक पुलिस के व्यक्ति हुआ करते थे जो
0: हाँ,
1: एशिया के सबसे
0: वो
1: लंबे,
0: पंजाब में भी कुछ है,
1: जी
0: वो भी है। और दूसरा उसका उल्टा है, अगर आप उस हार्मोन नहीं बना आपको तो आपका हाइट कम रह जाएगा। तो इसलिए फिर मैं बोल रहा हूँ हार्मोन ऑप्टिमम इज रिक्वायर्ड टू हैव ए नॉर्मल। अगर कम है ग्रोथ हार्मोन तो आपका लंबाई नहीं बढ़ेगा, अगर ज्यादा हो गया तो आपका बहुत लंबाई बढ़ जाएगा, वो भी ठीक नहीं। तो ये हर हार्मोन जैसे ज्यादा है तो अलग प्रॉब्लम करता है, कम है तो अलग प्रॉब्लम करता है, और नॉर्मल है तो ठीक रहता है। तो आप बहुत सारी चीजें इसलिए देख के पहचान सकते हैं कि इसको क्या पॉसिबिलिटी है बीमारी होने की।
1: बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई है। और यहाँ एक चीज जो हड्डियों से जुड़ी बातें हो रही हैं, हड्डियों और हार्मोन्स के रिलेशन की बातें, तो कुछ केसेस जो आपने देखे हैं जिनके जरिए हमारे सुनने वालों को मदद मिलेगी कि ये क्या सिम्टम्स थे और इनका क्या उपाय हुआ।
0: तो ऐसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और
1: जी
0: उदयपुर मेडिकल कॉलेज से मेरी अपनी पढ़ाई करी। तो जब मैं एक किसी कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे गया तो मेरे टीचर थे डॉक्टर DC शर्मा साहब, तो उन्होंने कोई पेशेंट उनके पास गया तो उनको समझ नहीं आया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, तो संजय तुम अगर ठीक समझते हो तो इसको वहाँ भेज देता हूँ। वो वहाँ पे आ गए पेशेंट, जब उन पेशेंट का हमने हिस्ट्री लेना शुरू किया तो बोला कि मैं पूरे सब जगह में गया हूँ, दिल्ली बॉम्बे सब जगह, पर कोई बीमारी का ठीक से पता नहीं चला। तो फिर वो पेशेंट हमारे पास आ गया, वो जब आया था स्ट्रेचर पे आया था, हमने उसको एडमिट करा और उसको हम धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन शुरू करें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हम 1-1.5 महीने में उसका बीमारी का हम पता लगाए कि ये बीमारी है, और दुनिया में उस बीमारी केवल उस टाइम में 25 केसेस थे केवल पूरी दुनिया के अंदर,
1: इतनी दुर्लभ।
0: इतनी दुर्लभ। अब दुर्लभ बीमारी है तो उसका बारे में ज्यादा पता नहीं है, दुर्लभ बीमारी उसका इलाज भी नहीं है, तो
1: जी
0: इलाज कैसे किया जाए।
1: जी
0: तो हमने उसको स्टडी करके एक प्लान किया कि भाई ये दवाई कोशिश करना चाहिए, और भगवान की दया से गॉड्स ग्रेस वो बीमारी के अंदर वो दवाई लग गई और चल गई, और वो पेशेंट हमारे पास से लेट के आया था और चल के गया। फिर उसका छोटा भाई भी आया, उसको भी यही बीमारी थी, वो भी ऐसे ही चल के गया, और उसके जब हिस्ट्री पूछा तो उसकी मदर, उसकी मामी मामा जी, उनको भी ये बीमारी थी। तो एक तरह से एक काइंड ऑफ जेनेटिक हो सकता है या एक एनवायरमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो पेशेंट को हमने ग्रोथ हार्मोन से ट्रीट किया और वो बिल्कुल ठीक होके गए।
1: महिलाओं में इस तरह के कुछ केसेस जिनका जिक्र आप करना चाहें।
0: महिलाओं में इस तरह की बीमारियों में अगेन मैं अगर बोन्स की बात करूंगा तो क्या होता है कि मीनोपोज के टाइम पे बोन्स खराब होना शुरू होता है,
1: जी
0: और अगर उनको पहले से कोई बीमारी अंडरलाइंग चल रही बोन की तो वो एकदम एग्जेसरबेट हो जाती है।
1: ओ
0: जैसे आपको ऑलरेडी मीनोपोज में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा, एस्ट्रोजन चला गया, और आपको ऑलरेडी कुछ बीमारी है, जैसे हमारे एक पेशेंट थी सीलिएक डिजीज जिसको हम बोलते हैं वीट एलर्जी, मे बी नॉर्थ इंडिया में काफी कॉमन है जहाँ पे वीट मेन डाइट है, साउथ इंडिया में उतना कॉमन नहीं होगा। तो उसमें उस लेडी को क्या हुआ कि 45 साल की उम्र में जब महीना बंद होना शुरू हुआ तो उसको अचानक बोन्स वीक होना शुरू हो गई, और बोन्स इतनी वीक हो गई कि वो बेड पे आ गई और उसकी मालिश करने से उसकी फ्रैक्चर हो गया हाथ का। मालिश
1: मालिश
0: करने
1: करना कितना गलत हो गया।
0: हाँ मतलब मालिश करने से ही फ्रैक्चर हो गया, मतलब हल्का ही किया होगा ये तो पता नहीं, बट उससे फ्रैक्चर हो गया, तो उसका बोन्स इतना वीक हो गया।
1: ओहो
0: और जब उसको हम भर्ती करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसमें पता चला कि उसको वीट एलर्जी है, और वीट एलर्जी पहले भी होगी लेकिन जब महीना बंद होना तब वीट एलर्जी और महीना बंद होना दोनों साथ जुड़ गए, तो 1 और 1 2 की जगह 1 और 1 11 हो गया, और उसको फ्रैक्चर हो गया। उसको फिर एडमिट करा और उसका इन्वेस्टिगेट किया, उसका कुछ नहीं किया हमने, उसका केवल वीट बंद कर दिया
1: जी।

0: और वो 3 महीने बाद में हमारे पास चलती हुई आई, तो पहले हम उसका वजन कम हो रहा उसके लिए इलाज कर रहे हैं, उसके मोटापे का इलाज करना पड़
1: तो
0: रहा
1: ऐसे दिलचस्प मामले भी आते हैं, लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्मोन्स का असर
0: है।
1: हड्डियों पर भी पड़ता है, जो आज के इस कार्यक्रम का फोकस है।
0: बिल्कुल,
1: और डॉक्टर साहब, अब एक गाने पर फोकस किया जाए, आपकी पसंद का अगला गाना बताइएगा।
0: तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था।
1: क्या बात है, ये गाना सुनते हैं, चांद सी महबूबा हो, आनंद बख्शी साहब के ये बोल हैं, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बातें हो रही हैं हार्मोन्स और हड्डियों के कनेक्शन की, और आपने बताया कि किस तरह से बीमारी कुछ और है और उसको समझा कुछ और जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: ये आम आदमी के लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौती है जितनी डॉक्टर्स के लिए।
1: या एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कुछ हद तक, पूरे तरह से नहीं पर कुछ हद तक, बिकॉज बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज होती है जिसके बारे में लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं होता है
0: जी,
1: या उसका प्रॉपर रेफरल समझ में नहीं आता। उसका रीजन ये भी हो सकता है, अगर बीमारी पता नहीं तो कैसे रेफर करें, किसको रेफर करें। तो ऐसा डॉक्टर्स में भी हो सकता है, आम आदमी में तो होता ही है पर डॉक्टर्स में भी हो सकता है। और दूसरा है, बोन्स की प्रॉब्लम का एक दूसरा दिक्कत उसमें है कि एक कहावत आपने सुना होगा, राजस्थानी में बोलता हूं मैं, बहुत मामे के भांजे भूखे रह जाते हैं। समझ गए? मतलब उसमें ऐसा होता है कि भाई वो भांजा उस मामा जी के यहाँ खाना खा लेगा, उसके यहाँ खा लेगा, उसके यहाँ खा लेगा, और अल्टीमेटली भूखा रह जाता है कोई। तो उसी तरह से हड्डी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट देखते हैं इसको। अब जैसे आपने बताया मीनोपॉज का जिक्र कर रहे, तो अभी ऑब्वियसली मीनोपॉज पे महिला गायनी वाले के पास जाएंगी
0: जी।
1: फ्रैक्चर की बात करें तो पर्सन ऑर्थोपेडिक्स वाले के पास चला जाएगा, और हो सकता है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास आ जाए, या कभी कभी वो रिमेटोलॉजी की बीमारी से कंफ्यूज हो जाता है कि जोड़ में दर्द हो रहा है,
0: संधिवात जैसी कुछ चीज़ है।
1: तो उस तरह से बंदा कंफ्यूज रहता है, उसको खुद तो पता नहीं होता कहाँ जाना होता है, तो वो फिर चक्कर लगाता रहता है। तो उसमें वो अगर सही डॉक्टर के पास पहली बार ही पहुंच गया तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं पहुंचा, घूमते घूमते लास्ट में उस डॉक्टर के पास आया जिसका ये बीमारी है, तो उसमें उसको काफी टाइम लग जाता है और बीमारी काफी बढ़ भी जाती है, तो उसको फिर नियंत्रण करने के लिए भी थोड़ा और ज्यादा टाइम लग जाता है।
0: एक सही मार्गदर्शन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरे को लगता है आपका ये जो प्रोग्राम आप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हॉर्मोन्स एंड डायबिटीज, इससे हमारे श्रोताओं को काफी समझ में आएगा और वो सही जगह पे सही डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हड्डियों की बातें तो हमने की, अब दो चीजों की बातें मुझे लगता है कि करना चाहिए, एक तो डायबिटीज की बात और दूसरी थायराइड की बात।
1: बिल्कुल,
0: ये बताइए कि किन हार्मोन्स से ये तब्दीली आती है और किसी को थायराइड उभर के आता है, दोनों तरह के थायराइड, और इसको पहचाना कैसे जाए अर्ली स्टेज पर?
1: थायराइड हार्मोन का भी ऐसा होता है, ऑप्टिमम रहना चाहिए
0: जी।
1: अगर कम हो गया लेवल तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म
0: जी,
1: और अगर लेवल ज्यादा हो गया उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म।
0: दो तरह के हो गए।
1: अब इनमें हाइपोथायरॉयडिज्म काफी कॉमन होता है, ज्यादा कॉमन होता है, और जैसा कि हमने पहले भी बताया महिलाओं में

0: कॉमन होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, और उसका प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि पहले आज के कुछ सालों पहले ज़्यादा उसके बारे में ध्यान नहीं होता था। और उसकी वजह से क्या होता था कि माँ को तो प्रॉब्लम है पर बच्चे को भी प्रॉब्लम होता, होने वाले बच्चे को। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड का टेस्टिंग और उसका इलाज बहुत ही ज़रूरी होता
1: ये
0: है,
1: बहुत याद रखने वाली बात
0: बहुत
1: है
0: ही
1: सभी
0: ज़रूरी होता,
1: श्रोताओं के लिए।
0: बिल्कुल। फिर हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में होता है, उसके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं, कि जैसे थकान हो रहा है, सुस्ती हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, किसी को भी कभी भी हो सकते हैं, तो उसमें समझ में नहीं आता कि क्या है। लेकिन इसमें बात ये कि अगर वो सिम्टम लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, कि आपको कब्ज रह रहा है अभी 3 महीने 6 महीने से चलता जा रहा है।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 हुए हैं। बी से प्रायोजित कार्यक्रम NCERT

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही विनम्र होकर झुक जाता है, और सफलता भाग्य से नहीं बल्कि सही सोच, निरंतर मेहनत और धैर्य से ही मिलती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। आप हमारे चिर परिचित श्रोता हैं। लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी आपको प्यार भरा नमस्कार। हमें दिनांक 21/7/2026 और 22/7/2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया। आगे आपने लिखा है,
2: जिसमें आपने ये भी जानिए के तहत भारत के अनूठे मेलों की जानकारी दी। इसमें आपने असम और नागालैंड के मेलों की जो दुर्लभ जानकारी दी वो हमें बेहद पसंद आई
1: जी।
2: दिनांक 22 जुलाई 2026 के ही प्रसारण में आपने सुंदरिया की कहानी सुनाई, वो भी हमें बेहद पसंद आई। ऐसा लगा मानो पूरा दृश्य आंखों के सामने दिख रहा हो। बहुत अच्छी कहानी थी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक शिकायत भी है हमारा संदेश प्रोग्राम में शामिल नहीं किए जाने की। कोई नाराजगी है तो माफ करें।
1: तो राजेश जी, आपको कहना चाहते हैं कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, हमने आपका संदेश आज के प्रसारण में सबसे पहले शामिल कर लिया
2: जी। हाँ। कुलगांव जम्मू कश्मीर से मोहम्मद असलम मीर,
1: और राजा जी नगर बेंगलोर से हमारे चिर परिचित श्रोता NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने लिखा है,
2: अजीत जी विमलेश जी, मिट्टी की पुस्तकों से भोजपत्र से लेकर तालपत्र और ई पुस्तकों तक, पुस्तकों पर आधारित ये विषय सुनना वाकई शानदार था। वास्तव में आपकी चर्चाएं इतनी उत्कृष्ट थीं कि हमें ऐसा लगा मानो हम उन्हें ई पुस्तकों से ही पढ़ रहे हों
1: जी।
2: आपके वर्णन करने का तरीका और उन्हें सरल भाषा में समझाना बहुत ही बढ़िया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद NR प्रसाद जी और अखिला जी, आपको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे जी का, और साथ में वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी का।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया?
2: ये नारा दिया था प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। AI के आविष्कार का श्रेय जाता है अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी को।
1: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न,

0: हमारा अंतिम प्रश्न था, मेघालय के मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है, क्यों?
1: इसका उत्तर है, मावली नोंग गांव के पास जो पुल है वो जीवित पेड़ों की जड़ों से बनाया गया है, इसलिए इसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है।
0: तो श्रोताओं, प्रश्नोत्तरी में आप सबकी प्रतिभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक को डाउनलोड कीजिए।
0: जी हाँ, और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहां आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम,
0: वीर कुंवर सिंह।
1: ये कार्यक्रम महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी देशभक्त राजा वीर कुंवर सिंह के जीवन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी वीरता की गाथा प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने बिहार के शाहाबाद में गंगा नदी के तट पर अंग्रेजों से लोहा लिया।
2: हमका सिपाहियन के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जरा डालो।
3: '1857 भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमींदारों, किसानों, काश्तकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत आगे आए, जैसे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी। मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया। जगदीशपुर, दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा। जनता बगावत करने लगी। कहा जाता है कुंवर सिंह और जगदीशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई, जिससे अंग्रेज और खफा हो गए। पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया, पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे।
2: अगर तुम लोगों ने फौज को इकट्ठा किया तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देगा, अंडरस्टैंड?
3: उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था।
4: मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। '1777 में कुंवर सिंह का जन्म साहबजादा सिंह के घर हुआ। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे। इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे कंपनी की बकाया राशि का

0: सुना तुमने?
1: क्या
0: पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है?
1: हैं?
0: अब हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे?
1: मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे, वो समझौता करने वालों में से नहीं है।
0: ठीक कहते हो भाई, अभी देखा नहीं जब पीर अली की मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था। अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे।
1: हाँ, मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे।
2: कुंवर सिंह चार भाई थे, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपति सिंह। अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे, वे हमेशा उनके साथ रहते थे। जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी।
3: बड़ बहादुर वाह हरकिशन वाह, अरे कैसे दानापुर में अंग्रेजन के छक्का छुड़ा दे। अरे का हो अब हमार कुंवर सिंह का करें?
4: अरे सुने में आयल बा कुंवर सिंह के सब खबर हो गई बा, कभो कुछ हो सके ना। हाँ
5: ऐसा चाहिए कि जिसके बारे में
0: हुजूर अभी अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है, अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं, हमें क्या आदेश है?
6: क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है, सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपकी क्या राय है?
7: भैया सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो दो हाथ हो जाएं। काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है, अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रौंद देते हैं।
6: ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान
0: जी हुजूर,
6: सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिले।
0: जी हुजूर।
6: तो ठीक है, आरा चलने की तैयारी करो।
8: July 26, 1857 आरा में कुंवर सिंह की कोठी, चारों ओर सैनिकों की चहलकदमी। दानापुर से आए सैनिकों के सामने कुंवर सिंह खड़े हैं।
6: सैनिक भाइयों और बहादुर साथियों, अब समय आ गया है कि हम कंपनी की गुलामी की जंजीरें काटकर फेंक दें। आप सबने विद्रोह करके हिम्मत और साहस का परिचय दिया है। हरकिशन सिंह और रंजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं, इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है। ये दोनों सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़िए, सबसे पहले हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है, फिर पूरे देश से। मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है, शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे।
9: अमर सिंह जिंदाबाद, अमर सिंह जिंदाबाद, हरकिशन सिंह जिंदाबाद, अमर सिंह जिंदाबाद, रंजीत राम जिंदाबाद।

0: सैनिकों के नारों से आरा कोठी का प्रांगण गुंजायमान हो उठा। सैनिकों की चहल पहल बढ़ गई। तभी सैनिकों की तरफ से हरकिशन सिंह आगे बढ़े और कुंवर सिंह की बगल में आ खड़े हुए। अदब से उन्हें सलामी देते हुए वो सैनिकों की तरफ मुखातिब हुए।
1: साथियों, आप सबने दानापुर में अंग्रेजी फौजों और अफसरों के द्वारा किया गया शोषण और दमन देखा है। उनके यहाँ रहते हुए हम स्वाधीन नहीं है। हमारे किसान भाई कर्ज के बोझ से दब गए हैं। अब जंग शुरू होती है कुंवर

0: कहा जाता है कि कुंवर सिंह और हरकिशन सिंह के भाषण का सिपाहियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में देशी सिपाहियों ने अंग्रेजी फौजों की आरा में घेराबंदी की। लड़ाई जमकर हुई। कई अंग्रेज सैनिक लड़ाई में मारे गए। कुंवर सिंह ने कैप्टन डनवर की फौज को पराजित किया। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतेह के नाम से जाना जाता है।
1: अंग्रेजी फौजों ने दोबारा तैयारी की और कुछ ही दिनों बाद मेजर आयर के कमांड में बीबीगंज के स्थान पर एक और युद्ध हुआ। कुंवर सिंह को अपने सिपाहियों के साथ जगदीशपुर लौटना पड़ा। 12 अगस्त को एक घमासान युद्ध हुआ। कुंवर सिंह की सेना पराजित हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कुंवर सिंह और उनके सिपाहियों को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। फिर फौज संगठित की। देश को आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आगे आए। लोगों का जोश देखकर मिर्जापुर, रीवा, बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची।
2: कुंवर सिंह जिंदाबाद! कुंवर सिंह
3: जिंदाबाद!
2: भारत माता की
3: जय!
2: भारत माता की
3: जय!
1: लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया।
4: अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं। हमने कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। खुदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं।
5: आमीन। खुदा आपकी मुराद पूरी करे।
4: हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करें।
6: बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसानमंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है। अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे।
2: कुंवर सिंह।

ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे। कुंवर सिंह ने बेगम हजरत महल के विश्वास को नहीं तोड़ा। 17 मार्च को कुंवर सिंह और देशी सिपाहियों की टुकड़ियां अतरौलिया के मैदान में इकट्ठा हुईं। 22 मार्च को आजमगढ़ जिले में तैनात कर्नल मिलमैन ने कुंवर सिंह के सिपाहियों पर भारी हमला किया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम वीर कुंवर सिंह, और आइए अब सुनते हैं ओज और वीर रस से परिपूर्ण सुंदर कविता वीर तुम बढ़े चलो।
1: हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों और युवाओं को साहस, संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां और प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हों।
0: जी,

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वीर तुम बढ़े चलो। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर।
4: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार मामले में सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया है। ख्यांगते पर परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी से रिश्वत लेने और सांठगांठ का आरोप है। विधानसभा घेराव के लिए निकले आंदोलित छात्र सुरक्षा घेरा तोड़कर विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार यानी गेट नंबर 1 मार्ग तक पहुंच गए हैं और वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। गौरतलब है कि इसी गेट नंबर 1 से मुख्यमंत्री और अन्य अति विशिष्ट महानुभावों का विधानसभा में आना जाना होता है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। सरायकेला खरसावां जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर 11 से 14 अगस्त तक जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण में योजना की कार्यप्रणाली, कार्यों की स्वीकृति, मजदूरी भुगतान और सामाजिक अंकेक्षण की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। साहिबगंज के उपायुक्त दीपक कुमार दुबे की अध्यक्षता में समाहरणालय में आत्मा शासकीय निकाय की बैठक आयोजित की गई। इसमें किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण और परिभ्रमण कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। लातेहार पुलिस ने एक बड़े मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 146 किलो गांजा जब्त कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मकैया टाड़ पिकेट से बिहार जा रही कार को, रेकी में इस्तेमाल की जा रही एक बोलेरो को भी जब्त किया है। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर खूंटी के प्रसिद्ध बाबा आमरेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही भक्तों ने कतारबद्ध होकर बनई नदी से लाए पवित्र जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:02 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। दोस्तों, इवनिंग मेलोडी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहला गाना हम आपको सुनवाते हैं फिल्म आखिरी रास्ता से।
1: Story, but everybody will sing with me.
2: Okay.
1: Ready? Come on. One, two, three, four.

हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में आइए हम सुनते हैं विपिन देव और आदित्य देव की आवाज में ये गीत।
1: सुगंध के मुष्टि वर्धना

अभी आप सुन रहे थे इवनिंग मेलोडी। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। पेश कार्यक्रम खेती बारी।

0: कार्यक्रम खेती बारी सुने वालन सभे भाई बहन के एक कार्यक्रम में स्वागत हन, जोहार हन। और देखा कि कार्यक्रम में हमें उपस्थित हो गई है कार्यक्रम के लेकर के। और देखा कार्यक्रम खेती बारी में, जैसा कि हमें जाना ही है कि हमें के जो देश है ये कृषि प्रधान देश है और देश के अधिकतर जो आबादी है खेती बारी और पशुपालन पर ही निर्भर करा है। और देखा हमें खेती बारी में देखा अभी हमें के धान हमें रोपनी लगभग हो गए है और सभी जन के आशा करिए कि होइए गए होते, क्योंकि थोड़ा सा जब बारिश है वो थोड़ा बाद में होले जेकर कारण हमें के थोड़ा देर में हमें रोपनी के काम कर लिए। और देखा बहुत लोग जो है अगर रोपनी के काम कर ले है और एकर में देखा श्री विधि के भी कुछ लोग किसान प्रयोग कर ले है और छीटा विधि के, जैसे कि हम जानेंगे कि एक रोपाई विधि के। और खेती बारी भी हम इन करते रहिए, साथ साथ साग सब्जी भी हम इन उपजाते रहिए। और देखा बरसाती टमाटर के समय है, मूली के समय है और बैगन के समय है, तो हम इन खेती बारी के अपन जो करेंगे धान उन और साथ साथ अपन बारी जारी में भी लगल रहे है ये। और साथ साथ भाई बहन के देखा कि खेती बारी तो हम इन करवे करेंगे और पशुपालन भी करेंगे, साथ साथ अब हम इन ऐसा व्यवसाय भी कर लिए कि जेकर से एक महीना या डेढ़ या दो महीना में हम इनके एक अच्छा खासा आमदनी भी हो जाए और बहुत ज़्यादा ओकर में मेहनत भी नहीं लगे। हमारे सारा है भाई बहन की जैसा कि है मशरूम के खेती के बारे में कि मशरूम के खेती जेकर में हम इन जब बात करिए खेती के तो लगे बहुत ज़्यादा पानी लगता है, लेकिन मशरूम के खेती एक अपवाद भी है खेती बारे में कि एकर में नाम मात्र के एकर में पानी लगा है, कम जगह लगा है, कम समय लगा है, कम एकर में लागत लगा है और मुनाफा एकर में बढ़िया हुआ है। इसी कारण जो है शहर के लोग हो भी खेती बारी अब करने लगले है, जबकि शहर के अगर हम बात करिए कि बहुत कम बोला कि जमीन रहा है जिकर में अगर खेती बारी दूसरा चीज हमें करिए तो नहीं कर पा रहे। थोड़ा बहुत अपन बोला किचन गार्डन के रूप में हमें इस्तेमाल कर सकेंगे, थोड़ा बहुत कि अपन जो है साग सब्जी उपजा सकेंगे, लेकिन लंबा चौड़ा पैमाने पर हमें शहर में खेती बाड़ी नहीं करेंगे। लेकिन मशरूम के खेती जो है अब लोग शहर में भी करे लगले हैं और गांव में भी करे लगले हैं। साथ ही साथ बहुत सा किसान भाई बहन देखा कि मुर्गी पालन भी करे लगले है जो कि लगभग एक से डेढ़ महीना के व्यवसाय भी रह रहा है, एक अच्छा खासा आमदनी भी कर में हो जाए। तो खेती बाड़ी भी हम इन करेगी, पशुपालन भी करेगी और बढ़िया ढंग से हम इन कर रही है। और देखा कि पशुपालन के बात हम इन कर रहे, जैसा कि हम इन जाने ही है कि जी किसान खेती बाड़ी बढ़िया ढंग से कर रहा है, पशुपालन भी वो लगभग बढ़िया ढंग से कर रहा है। क्या कि देखा दोनों एक दूसरा के पूरक है, खेती बाड़ी हो या पशुपालन हो दोनों एक दूसरा के पूरक हम इसलिए बोल लिए, क्या कि देखा खेती बाड़ी से जे चीज उपजा है और जे चीज अपशिष्ट बच जा है वो हम इनके पशुपालन में काम आ जाए। पशुपालन में हुए गोबर खाद हम इनके काम आ गए खेती बाड़ी में गोबर खाद के रूप में, तो यही कारण हम इन खेती बाड़ी और पशुपालन के बताए ये एक दूसरा के पूरक है। साथ ही साथ अभी भी बहुत सा जो छोटा खेत है ओकर में अभी भी बहुत सा लोग हलबल के प्रयोग करा है या जेकर पास साधन बहुत नहीं है तो भी अभी हलबल के प्रयोग करा है, लेकिन चूंकि धान के समय है और लोग जब देखा कि बोला किराया पर भी 700 से 800 रुपया में प्रति घंटा ट्रैक्टर के इस्तेमाल करके भी खेती बाड़ी अपन करा है, तो खेती बाड़ी हम इन कर रही है, पशुपालन भी हम इन कर रही है। लेकिन पशुपालन में कभी कभी ये हुआ है कि हम इनके जागरूकता के अभाव में या बोला कि हम इन अनसुना कर दी है कोई बात के जेकर कारण हम इन कभी कभी एक में हम इनके दुष्परिणाम भी बोला हम इन पशुपालन में हम इनके हुआ है और एक में हम इनके हानि भी हुआ है। तो भाई हम इन बात कर लिए कि बरसात के समय में जो खुरपका और मुंह पका रोग जो हुआ है जेकरा हम इन FMD भी बोलेगी इंग्लिश में, जरा फूड एंड माउथ डिजीज जो हम इन बोलेगी, तो ये भी हम इनके देखे के मिले हैं। तो बरसात के समय में ये रोग बहुत सा देखे के मिले है, तो एकर में देखा कि अगर हम इन काहे ये रोग हुआ है तो एकर में बात है वो है कि बरसात के समय में कीचड़ में और गंदगी में रहे के कारण ये रोग हो जाए है कर में। और एक ये रोग जो है एक संक्रामक रोग है कर में हम इन है, अगर एक बोला कि एक हम इनके पशुधन में पशु के हुआ है तो दूसरा पशु में भी उचित हुआ है, क्योंकि बरसात में देखा कि जे पशु के है नमी और कीचड़ के सामना करना पड़ा है जेकर कारण ये रोग फैला भी है। अगर हम इन लक्षण के बात करबे कि अगर कोई भी पशु के अगर ये रोग हो गए है तो का ओकर में लक्षण दिखते है, तो ओकर में लक्षण ये दिखते है कि तेज बुखार रहते पशु के, मुंह से लार गिरते, खुर और जीभ पर छाला पड़ जाते अब एकर में हुआ का है कि पशु ई कारण जे हुआ है कि लंगड़ावे लगा है, क्योंकि पैर में समझ जाए दर्द एक तरफ से रहा है खुरपका में, खाना नहीं खा है, खाना लगभग त्याग ही देवे है, और खाना त्यागे से कमजोरी भी हुआ है। बचाव के अगर हम इन बात करबे एकर में, तो बचाव के में जब एकर में है कि मानसून के पहले ही हम इन FMD के जे टीकाकरण हम इनके कराए के चाहिए, जेकर से ये रोग हम इनके पशु में नहीं लगे। साफ सफाई के एकर में बहुत जरूरी चीज है कि साफ सफाई के भी एकर में होवे के चाहिए। साथ ही साथ अगर केवल भी पशु के हो जाए तो तुरंत वो पशु के अलग कर देवे के चाहिए, और अब ओकर उपचार शुरू करे के चाहिए। उपचार में अगर हम इन बात करबे तो घाव के सफाई कर में करे के चाहिए, और घाव के सफाई देखा है बहुत सा जे लोग अपन गांव के भाषा में लाल दवाई भी बोले है, वो लाल दवाई नहीं रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट के घोल रहा है, जे कि साफ सफाई में एकर से करल जाए। बहुत सा लोग देखा कि नीम के पानी के जब पत्ता हुआ है नीम पानी, तो ओकर से भी साफ सफाई करा है, फिनाइल से भी साफ सफाई करा है। कीड़ा से बचाव के खातिर तारपीन तेल और फिनाइल के एकर में उपयोग करा है। साथ ही साथ अगर हम इन इतना उपचार कर लिए फिर भी हम इनके पशु अगर ठीक न हो ले, तो तुरंत जो नजदीकी पशु चिकित्सक बढ़िया है तुरंत मिले के भी तुरंत चाहिए, और सलाल जो देवे है ओकरा अपनाए के चाहिए। और देखा ये हम इन बात कर लिए खुर पका मुंह पका जो रोग होवे है पशुधन में हम इनके ओकर बारे में, तो देखा अगर कोई भी बीमारी हम इनके होवे हैं तो जब पहले अगर हम टीकाकरण कर दिए तो हम इनके बीमारी का सामना नए के बराबर करे के पड़ा है। लेकिन जब कुछ हो जाए तो बात थोड़ा सा निकल जाए, लेकिन फिर भी हमें अगर सचेत रहिए और जागरूक रहिए तो ये रोग से हमें अपन पशुधन के बचा सकेंगे। और देखा भाई बहन अब आगे हम इन बढ़ रही कार्यक्रम में, और अभी समय हो चुके है जरूरी संदेश के और एगो प्यारा सा गीत के, तो सुनिए जरूरी संदेश के साथ एगो लोकगीत भी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: महादेव की
1: जय हो।
0: देवों में महादेव की महिमा अपार है, इनका अलख जगाओ तो बेड़ा पार है।
1: जय हो जय हो जय हो।
0: सुनिए जरा ये ध्यान से कथा है यथाह की, सुनिए जरा ये ध्यान से कथा है यथाह की, महिमा

0: और देखा हमें भोले बाबा का गीत भी सुना लिया, जरूरी संदेश भी और पहले हमें सुना लिए। और देखा कि अब हम इन बात करबे वन्य जीव संरक्षण के विषय में, जो कि हम इनके एक तरह का जिम्मेवारी भी है। और देखा कि आज जो है विश्व शेर दिवस भी है और 2013 से एक शुरुआत होले है। और बात करबे हम इन जो भारत में शेर के लगातार जो वृद्धि हो रहा है और एकर में देखा भाई कि 891 अभी एक बात करबे हम इन 891 जो शेर अभी हम इनके भारत देश में है और एकर हम इन बढ़ावा भी दे रही कि ज्यादा से ज्यादा और शेर यहाँ पे हो ताकि एक संतुलन की स्थिति भी बने। और एकर में देखा कि हम इनके जो प्रयास है अवैध शिकार के जो रोकना है, जागरूकता करना है और सुरक्षित एक माहौल भी देना है। कहा कि भाई बहन जैसा कि हम जाने ये कि हर जीव के इस संसार में बहुत महत्व है, जैसा कि एक हम इन बात करबे एक चिड़िया से लेकर के एक हाथी तक के यहाँ पे पूरा महत्व है। और हम इन कुछ समय पहले हम इन देख भी रह लिए आसपास के हम इन क्षेत्र में कि हाथी के इधर जो है कि बहुत ज़्यादा आवागमन भी हो गए हले। देखा एक बात हुआ कि हम इन ही जो ही है एक संतुलन के जब स्थिति रहे तो ओकरा बिगाड़ा ही है और जल हम इनके वहाँ जंगल के जब हम इन नष्ट कर रही है और जब जंगल नष्ट हुआ है तो उनका जो खाना है ओकर कमी हुआ है, जबकि खाना के तलाश में ही बोला कि वो गांव घर तरफ हम इनके आवे है। और एकर से देखा एक तरह के बात तो गड़बड़ कि जहाँ धान ज्यादा है, चावल ज्यादा है या महुआ के समय जब बीछे के समय हुआ उस समय भी देखा कि हाथी का प्रकोप भी हम इनके गांव घर तरफ हुआ है। तो एकर में जब हुआ है कभी कभी कि हम इनके पशुधन के भी एकर में हानि हुआ है, कभी कभी आमना सामना भी मनुष्य और हाथी के बीच में जब हो जाए तो हम इन एक तरह के अपन ज्यादा उग्र न होइए और एक तरह का बदला कि अगर हम इन भगावे कहे जैसे शोर करके भगा सके या आग जला करके भगा सके पर गाँव घर से दूर तो हम इन ये सब काम हम इन अपन कर सके ही है। और देखा कि बात कर लिए कि ये तो हाथी के बात कर लिए और तरह के हम इन कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, चूंकि अभी बरसात के भी समय है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इन आसपास में पेड़ पौधा हम इन लगाइए तो हम इनके एक पर्यावरण के लिए बढ़िया भी होता है। क्योंकि बहुत तरह का देखा कि प्रदूषण हम इनके आसपास में हुआ है, जबकि हम इनके जो पेड़ अगर हम इन लगाए तो ही हम इन प्रदूषण से बच सके ही है। अब देखा आगे हम इन अब बात करबे और आगे हम इन जानकारी भी ला लिए कि किसान से, जो कि छट्टू महतो किसान हथिन और ये जानकारी दे रहे थे कि बरसाती टमाटर और मूली की खेती किस तरह करल जाए और खेती बाड़ी में जो है माटी जांच के काम महत्व है ओकर बारे में ये जानकारी दे रहे थे। तो आवे सुनिए ये जानकारी बरसाती टमाटर और मूली की खेती के विषय में और जानकारी दे रहे थे छट्टू महतो।
1: श्रोताओं आज हमारे साथ है एक अनुभवी किसान छट्टू महतो। तो छट्टू जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जोहार है।
2: जोहार जोहार जोहार।
1: छट्टू जी आप कितना दिन से खेती कर रहे हैं?
2: हम तो बहुत दिन से खेती कर रहे हैं, कम से कम 30-35 साल से।
1: 30-35 साल से जी। अच्छा एक बात बताइए, पहले का खेती में और अभी का खेती में कुछ आपको अंतर लगता है?
2: बहुत अंतर है।
1: क्या अंतर लगता है?
2: पहले जो है सब जो है सब देसी बीज था, खाद और आपका कीटनाशक दवाई कुछ नहीं था। अभी जो है सब हाइब्रिड का जमाना आ गया है, हाइब्रिड हो गया है। जितना किस्म का सब्जी है, धान है, सब हाइब्रिड हो गया है।
1: जी हाँ, अभी आपके खेत में क्या लगा हुआ है?
2: अभी खेत में मेरा टमाटर लगा हुआ है, मूली लगा हुआ है।
1: अच्छा, टमाटर और मूली का बात करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर हम खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें सबसे मुख्य चीज होता है मिट्टी। मिट्टी अगर हमारा बढ़िया रहेगा तो कोई भी चीज हमारा बढ़िया फलेगा, बढ़िया फूलेगा। तो मिट्टी आपका कैसा मिट्टी है?
2: मिट्टी मेरा जो है सो कुछ बलवाही मिट्टी भी है और कुछ दोमट मिट्टी भी है।
1: जी हाँ, हाँ। मिट्टी का जांच आप करवाए हैं?
2: हाँ, मिट्टी का जांच करवा के हम करते हैं।
1: अच्छा, मिट्टी की जांच करवाने से आप मिट्टी किस तरह लेते हैं, चारों खेत कोना से किस तरह लेते हैं?
2: पांच जगह से लेते हैं।
1: पांच जगह से लेते हैं,
2: चारों कोना से ले लेते हैं और एक बीच से ले लेते हैं।
1: अच्छा, गहराई कितना आता है?
2: गहराई वही 6-7 इंच।
1: 6-7 इंच।
2: हाँ।
1: अच्छा, मिट्टी ले लिए, उसके बाद क्या करते हैं?
2: उसके बाद जो है सो मिट्टी को सुखा करके जो है सो उसको आधा किलो के लगभग, जैसे हम पांचों जगह से लिए तो 2.5 किलो निकाले।
1: हाँ।
2: तो सब मिट्टी को हमने मिला दिया। अब मिलाने के बाद जो है सो फिर हम जो है सो चार भाग कर लिए और एक भाग जो है सो हम उठा लिए।
1: हाँ। अच्छा ही वो उठा
2: तो कम हो गया, आधा किलो के लगभग हो गया, और वही मिट्टी जो है सो हम लैब लेते चल गए।
1: तो उसमें कुछ है, पुर्जा में कुछ लिख करके देते होंगे?
2: हाँ हाँ, वो देते हैं कि ये चीज का कमी है, ये चीज डालना पड़ेगा, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, कितना क्या डालना है, मात्रा में बताते हैं कट्ठा के अनुसार से कितना डालना।
1: अच्छा, वो तो वो बताते हैं, आप अपना खेत का नाम हम लिखते होंगे या क्या खेत में क्या लगाए थे या कल क्या लगाए?
2: हाँ, पहले क्या लगा हुआ था और मैंने क्या फिर
1: लगाइएगा,
2: कौन किस्म का पौधा लगाइएगा, उसके अनुसार से आपका जो है सो वहाँ देने के लिए बताया जाता है।
1: अच्छा, वहाँ जब बता दिया जाता है फिर वो चीज को आप दूर करते हैं। और मिट्टी की बढ़िया हो इसके लिए आप क्या करते हैं, गोबर खाद का प्रयोग करते हैं?
2: नहीं, गोबर खाद का भी प्रयोग करते हैं।
1: अच्छा अच्छा, एक ट्रैक्टर अगर गोबर खाद हम डालें तो वो कितना कट्ठा में हो जाता है बढ़िया से, कितना कर एक ट्रैक्टर गोबर खाद कितना कट्ठा में हो जाएगा?
2: एक ट्रैक्टर गोबर जो है कितना में होगा? 4-5 कट्ठा।
1: 4-5 कट्ठा। अभी सर एक ट्रैक्टर का रेट क्या चलता है?
2: अभी एक ट्रैक्टर का रेट तो बहुत हाई हो गया है, 2000 रुपया।
1: तो आपका घर का ही मतलब गाय गरु का गोबर रहता है या खरीदते?
2: सब मार्केट से मंगाते हैं।
1: सब मार्केट से ही मंगाते हैं। मिट्टी तो आप ठीक कर लिए। एक होता है इसमें समय, ठीक समय में सही बीज लगे या बढ़िया हमको बाजार में वो चीज जाए और बढ़िया मुनाफा हो, ये आप किस तरह ध्यान करते हैं कि सही समय पे वो बाजार चल जाए और बढ़िया रेट मिले? और सब किसान जब लगाते हैं उस समय कुछ पहले आप लगा देते हैं या बाद में लगाते हैं?
2: देखिए, सीजन में लगाइएगा तो कोई भी चीज सीजन में लगाइएगा तो दाम कम मिलेगा, आउट सीजन में लगाइएगा तो दाम ज्यादा मिलेगा।
1: आप क्या करते हैं?
2: हम तो ज्यादा आउट सीजन में लगाते हैं।
1: ज्यादा आउट सीजन लगाते हैं।
2: जैसे अभी हम टमाटर लगा दिया तो अभी बहुत टमाटर नहीं लग रहा, अब बीज छोड़ेगा तब तक ये आगे हो गया, 20-25 दिन आगे हो गया, तो मूल में तो वृद्धि होगा ही, दाम तो मिलेगा ही।
1: अच्छा, टमाटर का कौन सा किस्म लगाया
2: आप? हम हाइब्रिड किस्म लगाए हैं।
1: हाइब्रिड,
2: उसका नाम है 1286।
1: और ये मूली का?
2: मूली का लगाए हैं, हाइब्रिड है, इसका नाम है शकुंतला।
1: शकुंतला जी। दोनों का बीज में क्या आप मतलब क्या खासियत है?
2: ये जो है मूली का बीज जो है सो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, सॉलिड बैठता है, पत्ता बहुत कम रहता है और बहुत

0: आप सुथरा शोर जड़ ज्यादा नहीं रहता,
1: जड़ ज्यादा नहीं रहता।
0: हाँ, एक मेन केवल रहता है, वही जो बैठा हुआ रहता है वही रहता है। और बहुत बारीक बारीक रहता है, मैंने उसको तोड़ना छोड़ना नहीं पड़ता, एकदम पूरा साफ रहता है।
1: अच्छा,
0: शकुंतला ही खासियत है, और ये बरसात के लिए ही है वो।
1: अच्छा, बीज जब आप लेने जाते हैं तो दुकानदार के पास जाते हैं या कोई विशेषज्ञ से सलाह लेकर के बीज लेते हैं?
0: नहीं, एक बार लगा के देख लिया कि ठीक है तो अपने से हम मांगते हैं दुकानदार को, दुकानदार के राय पर हम नहीं लगाते हैं।
1: दुकानदार
0: के राय हम जो मांगते हैं कि ये हमको दो,
1: आपने बता दिए
0: ये चीज हमको दीजिए,
1: बस वही चीज।
0: हाँ, वही चीज चाहिए, दूसरा चीज नहीं।
1: दुकानदार देखते हैं कि बहुत सारे किसान नहीं जानते, जो उसका मन में आया जो नहीं बिक रहा है बीज वही दे दिया,
0: वो तो ठग लेता है,
1: ठग लेता है।
0: पुराना पुराना भी दे दिया, जो खराब है वो भी दे दिया कि लो लगाओ, जो मांगते हैं वही लेते हैं, नहीं है नहीं लेते हैं।
1: टमाटर और मूली आपका कितना दिन में निकल जाएगा?
0: मूली तो 15 दिन के बाद निकलेगा,
1: मूली 15 दिन के बाद।
0: हाँ,
1: टमाटर,
0: टमाटर निकलेगा 40 दिन बाद।
1: 40 दिन बाद बढ़िया रेट मिले, इसके लिए आप क्या करते हैं? व्यापारी खुद यहीं पे आपका आ जाता है या खुद आकर बेचते हैं?
0: नहीं, व्यापारी तो आ जाता है।
1: अच्छा, व्यापारी आ जाता है। अच्छा, आस पास में जैसे 4-5 बाजार है तो सब बाजार का जो भाव होता है एक ही होता है या कुछ वैरी भी करता है, अंतर भी होता है?
0: अंतर तो रोज होता है,
1: रोज होता है। आपके लिए कौन सा बाजार ज्यादा सुटेबल होता है?
0: हमारा तो लोकल बाजार है,
1: छलवाडे में।
0: हाँ, ये जो हजारीबाग में जो भाव बिकता है वो भाव यही बिक जाता है मेरा।
1: अच्छा अच्छा, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि चूंकि कोई भी चीज में है बदलाव होते जा रहा है, खेती बाड़ी का ही हम बात करते हैं कि इसमें भी बदलाव होते जा रहा है दिनों दिन, तो आधुनिक खेती जो हो रहा है सरकार भी समय समय पर यहाँ पर ट्रेनिंग करवाता है, प्रशिक्षण करवाता है, और सब जगह भी बहुत सा संस्था है वो भी करवाते हैं। आप ट्रेनिंग लिए हैं?
0: केवल आधुनिक वाला लिए हैं, लेकिन वो आधुनिक वाला जैसे अभी जो है सो बूंदा बूंद सिस्टम से खेती हो रहा है।
1: हाँ, टपक सिंचाई,
0: टपक सिंचाई वाला में, तो वो वाला हम अभी नहीं कर रहे हैं।
1: पहले लिए थे ट्रेनिंग वहाँ पे?
0: हाँ लिए हैं, लेकिन वो वाला हम भी नहीं कर रहे हैं।
1: अब वो टपक वाला नहीं,
0: टपक वाला नहीं कर रहे।
1: अच्छा, ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ आपको अंतर लगता है अपने में कि
0: बहुत अंतर है कि कैसे ना? अब ट्रेनिंग लेने के बाद में जैसे आप मिट्टी का जाँच कराने के लिए नहीं जानते थे तो वो जान गए, चीज का जानकारी हुआ, जैसे मशरूम अब उगाने लगे। हाँ, वो सबको ट्रेनिंग लिए हैं तो वो सब जान गए।
1: मशरूम भी आप उगाए हैं क्या?
0: हाँ, मशरूम उगाए हैं, मशरूम का भी ट्रेनिंग हम लिए हैं।
1: कितना दिन का ट्रेनिंग था वहाँ पे?
0: वहाँ था एक सप्ताह का,
1: एक सप्ताह ट्रेनिंग था।
0: हाँ, हाँ।
1: तो फिर उसके बाद आप मशरूम फायदा नजर आपको आया?
0: हाँ, फायदा नजर आया किसी ने,
1: क्योंकि
0: कम से कम घर में खाने के लिए तो हो जाता है,
1: घर में खाने के लिए हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि खेतीबाड़ी में तो बहुत ज्यादा पानी का जरूरत पड़ता है, लेकिन मशरूम उत्पादन में कम पानी का जरूरत पड़ता है। अगर कहीं पर कम पानी होता है या किस तरह अगर बरसात धोखा दे दिया तो मशरूम अगर कोई उत्पादन कर रहा है उसके लिए बढ़िया होता है। आप हमारे जो किसान भाई लोग सुन रहे हैं कार्यक्रम को, उनके लिए क्या सलाह देना चाहते हैं?
0: हम तो सलाह देना चाह रहे हैं कि जिस तरह हम कर रहे हैं वो भी करें। हाँ, वो भी करें।
1: आप खेती बाड़ी जो कर रहे हैं इससे संतुष्ट हैं?
0: हाँ, एकदम संतुष्ट।
1: छठो जी, आपने इतना बढ़िया जानकारी हमारे श्रोता भाई बहन को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो अभी हम इन जानकारी सुन लिए बरसाती टमाटर और मूली की उन्नत खेती के बारे में, जानकारी देवा हेल्थिन छट्टू महतो। और अब समय हो गए है मौसम के जानकारी और बाजार भाव के। और आज के बाजार भाव में है लाल आलू 18-20 रुपए किलो, सफ़ेद आलू 15-18 रुपए किलो, प्याज 35-40 रुपए किलो, फूलगोभी 35-40 रुपए किलो, पत्ता गोभी 30-35 रुपए किलो, पटल 35-40 रुपए किलो, भिंडी 20-25 रुपए किलो, नेनुआ 30-35 रुपए किलो, कद्दू 25-30 रुपए किलो, हरा मिर्च 80-90 रुपए किलो, शिमला मिर्च 90-100 रुपए किलो, गाजर 30-35 रुपए किलो, बीट 40-45 रुपए किलो, बीन 35-40 रुपए किलो, मूली 25-30 रुपए किलो, धनिया पत्ता 180-200 रुपए प्रति किलो, अदरक 100-120 रुपया, खीरा 30-35 रुपया, टमाटर 35-40 रुपया, और लाल साग और पालक साग 15-20 रुपया। और आज के जे मौसम के जानकारी में है, आज के जे अधिकतम तापमान रहले 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, और आर्द्रता 76%। और देखा कि आज बारिश की संभावना भी है और गर्जन के साथ संभावना है, और कल के जो मौसम के पूर्वानुमान है, कल के अधिकतम तापमान रहे के संभावना

ना है 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 74%। और यही जानकारी के साथ अब हम इनके कार्यक्रम खेती बारिश से अनुमति लेवे के समय भी हो गया है। तो हमारा अनुमति दा जोहार।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार मामले में सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया है। ख्यांगते पर परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी से रिश्वत लेने और सांठगांठ का आरोप है। विधानसभा घेराव के लिए निकले आंदोलित छात्र सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार यानी गेट नंबर 1 के मार्ग तक पहुंच गए हैं और वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। गौरतलब है कि इसी गेट नंबर 1 से मुख्यमंत्री और अन्य अति विशिष्ट महानुभावों का विधानसभा में आना जाना होता है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। सरायकेला खरसावां के गम्हरिया थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 2,00,000 रुपए मूल्य के 12 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साहिबगंज में आज वीबीजी रामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रखंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीआरडीए निदेशक विजय कुमार ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य प्रखंड स्तर पर कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने शिक्षा विभाग की बैठक में ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर लापरवाही बरतने के आरोप में गुमला सदर के बीपीओ का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। उन्होंने दोनों समय ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज न कराने वाले शिक्षकों को कड़ी चेतावनी देते हुए छात्र शिक्षक उपस्थिति डेटा में तत्काल सुधार सुनिश्चित करने को कहा है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पर्यावरण धर्म के प्रणेता डॉ. कौशल किशोर जायसवाल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के नई दिल्ली स्थित आवास पर जाकर उन्हें थाई किंग प्रजाति के जामुन का पौधा भेंट किया। डॉ. कौशल ने पूरी दुनिया से एकजुट होकर प्रकृति संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7:00 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:02 हुए हैं। पेश है महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना।

कार्यक्रम अंगना सुनने वाली सभी बहनों को ममता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, बारिश के इन दिनों चारों ओर की हरियाली मन को आनंद से भर देती है। सावन के झूले मन को लुभाते हैं, गीत खुद ब खुद होठों पे आ जाते हैं।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: बहनों, बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या है। कम उम्र में विवाह होने से बच्चों, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के अवसरों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बाल विवाह को रोकना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। माता पिता को बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और कम उम्र में विवाह नहीं करनी चाहिए। शिक्षक और

विद्यालय बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। समाज के लोगों, पंचायतों और सामाजिक संस्थाओं को बाल विवाह की सूचना मिलने पर उचित कदम उठाना चाहिए। बच्चों को भी अपनी पढ़ाई जारी रखने और अपने भविष्य के लिए निर्णय लेने के अवसर मिलने चाहिए। बहनों, जब परिवार, विद्यालय, समाज और प्रशासन मिलकर प्रयास करेंगे, तभी बाल विवाह को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। बच्चों का बचपन सुरक्षित रखना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। बाल विवाह के कारण बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का अवसर नहीं मिल पाता है। इससे बच्चों के अधिकार और स्वतंत्रता भी प्रभावित होते हैं। इसलिए बहनों, आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं और अपने बच्चों की कम उम्र में शादी कभी न होने दें।

0: फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी
1: एक ट्रेड में सिक्सर
2: ए अक्का
3: प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर
1: मतलब नुकसान की हैट्रिक इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए
5: बहनों अब आइए वार्ता सुनते हैं सीमा सहाय से महिला शिक्षा ग्रामीण विकास का आधार
6: वर्तमान युग में महिलाओं की शिक्षा एवं क्षमताओं का संवर्धन न केवल अपने आप में महत्वपूर्ण है बल्कि देश के आर्थिक एवं समग्र विकास का एकमात्र एवं सर्वोत्तम तरीका है देश के प्रथम उपराष्ट्रपति व शिक्षा शास्त्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि शिक्षित महिला के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता क्योंकि बच्चे की प्रथम शिक्षिका माँ ही होती है अतः महिला शिक्षा का महत्व द्विगुणित हो जाता है यह सही है कि ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित किए बिना उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना संभव नहीं है महिलाओं को सशक्त स्वावलंबी एवं आत्मविश्वासी बनाने में शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण है महिला शिक्षा से ही महिला सशक्तिकरण की प्राप्ति संभव है महिला सशक्तिकरण होने पर ही परिवार समाज तथा राष्ट्र के चहुमुखी विकास में पुरुषों के साथ महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है इस तरह से ग्रामीण महिला सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं को बल्कि संपूर्ण समाज एवं देश को लाभ होगा आदर्श नागरिकों का निर्माण होगा दुनिया में आज भी बेटियों को बेटी की तरह ही शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है वर्तमान विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बालिकाओं में शिक्षा का प्रसार जरूरी है बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार से न केवल आर्थिक स्थिति बढ़ाई जा सकती है बल्कि मातृत्व और मृत्यु दर में भी कमी लाई जा सकती है इस तरह से बालिका को सशक्त स्वावलंबी एवं आत्मविश्वासी बनाने में शिक्षा की अहम भूमिका है यही नहीं शिक्षा के बल पर ही ग्रामीण बालिकाएं समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता भेदभाव शोषण एवं उपेक्षा जैसे दंशों का डटकर मुकाबला कर सकती है इस तरह से सामाजिक आर्थिक विकास की राह पर अपने कदम बढ़ा सकती है वास्तव में ग्रामीण महिलाओं को साक्षर एवं शिक्षित करके ही उन्हें अपने अधिकारों कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक बनाया जाना संभव है क्योंकि शिक्षित महिलाएं अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए विकास के विभिन्न आयामों की प्राप्ति में सक्रिय योगदान देती हैं। यही नहीं बालिकाएं शिक्षित होकर परिवार के लिए कमावपूत बनकर परिवार को गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकती है शिक्षा के माध्यम से ही ग्रामीण महिलाओं में ग्रामीण बालिकाओं में सही दृष्टिकोण सही विचार एवं सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा हो सकती है इस तरह बालिका शिक्षा को परिवार समाज एवं देश के विकास की नींव कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति या गलत नहीं होगी शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही स्वतंत्रता के पश्चात पूर्ण साक्षरता प्राप्त हेतु 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकारों में समावेशित किया गया इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मिड डे मील, आंगन पाठशाला जैसे अनेक कार्यक्रमों एवं योजनाओं को संचालित कर रही है। इन सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के फलस्वरूप पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर कम हो रहा है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर व मिडिल स्तर पर बालिकाओं का नामांकन बढ़ा है। शिक्षा के प्रसार प्रचार के कारण बालिकाओं में विद्यालय छोड़ने की दर में

0: भी कमी आई है, अतः बालिकाओं में विद्यालय छोड़ने की दर अभी भी बालकों की अपेक्षा काफी अधिक है, जिसको नियंत्रित करके ही बालिकाओं का भविष्य सुखमय उज्जवल बनाया जाना संभव है। आज भी शिक्षा के बारे में लैंगिक अंतर बना हुआ है तथा निरक्षर महिलाओं की संख्या काफी अधिक है। महिला साक्षरता एवं शिक्षा के मार्ग में अनेक अवरोधक हैं, जिनको दूर करके ही अपेक्षित सफलता प्राप्त की जा सकती है। सर्वप्रथम गरीबी एवं निम्न आय स्तर की ग्रामीण महिला शिक्षा के लिए सबसे बड़ा बाधक है। देश की लगभग 26 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। इन गरीब परिवारों के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था सर्वप्रथम प्राथमिकता है। सामाजिक सांस्कृतिक विसंगतियों एवं कुरीतियों की वजह से भी ग्रामीण बालिका और महिलाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा एवं शिक्षा पर फिजूल खर्ची मानना जैसे तत्व भी ग्रामीण शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बेटी पराया धन है, यह संकीर्ण मानसिकता भी बालिका शिक्षा को हतोत्साहित करती है। इसके अलावा ग्रामीण बालिका विद्यालयों की कमी, विद्यालयों की दूरी, पाठ्यक्रमों में रोचकता का अभाव, घरेलू दायित्व एवं अभिभावकों में जागरूकता का अभाव जैसे तत्व भी बालिका शिक्षा के प्रसार में बाधा पहुंचाते हैं। ग्रामीण जन बालिका शिक्षा पर व्यय को फिजूल खर्ची मानते हुए बालिकाओं को शिक्षा से वंचित करके उनके भविष्य को अंधकारमय बना देते हैं। देश के विकास की कुंजी ग्रामीण बालिका शिक्षा एवं महिला साक्षरता ही है। आज ग्रामीण लड़कियों के प्रति भेदभाव, उपेक्षा एवं दोयम दर्जे के व्यवहार को परिवर्तित करना जरूरी है। इस परिवर्तन के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग, संवेदना एवं सहानुभूति परम आवश्यक है। गैर सरकारी एवं स्वयंसेवी संगठनों को भी ग्रामीण महिला शिक्षा में सक्रिय योगदान हेतु प्रेरित किया जा सकता है। ये संगठन महिलाओं में उनकी क्षमता, योग्यता एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ग्रामीण महिला एवं बालिका शिक्षा को प्रोन्नत करके देश पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सकता है। किसी भी समाज या देश के विकास के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति, परिवार और समाज के उत्थान में एक साथ उपयोगी भूमिका निभाती है। शिक्षा न केवल हमारे नैतिक विकास में मददगार होती है, बल्कि हमारी भौतिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए भी जरूरी है।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी महिला शिक्षा ग्रामीण विकास का आधार, वार्ताकार थी सीमा सहाय। तो इतनी अच्छी जानकारी के बाद आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

बहनों, 8 अगस्त सन 1942 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त सन 1942 को गांधी जी सहित कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में आंदोलन फैल गया। लोगों ने हड़तालें की, जुलूस निकाले और ब्रिटिश शासन का विरोध किया। इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन को यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के लोग अब स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। महिलाओं ने जुलूस और सभाओं में भाग लिया, विदेशी शासन के विरुद्ध जन जागरण किया, भूमिगत आंदोलन को सहयोग दिया, संदेश पहुंचाने और गुप्त गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जेल जाने और पुलिस की कार्रवाई का भी साहस से सामना किया। बहनों, अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त 1942 को मुंबई के इवालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। उषा मेहता ने गुप्त कांग्रेस रेडियो के माध्यम से आंदोलनकारियों तक संदेश पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं ने जुलूसों और हड़तालों में भाग लिया तथा लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का काम किया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं ने आंदोलनकारियों को भोजन, आश्रय और आवश्यक सहायता प्रदान की। भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता की लड़ाई को जन आंदोलन बना दिया। इसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने यह साबित किया कि भारत की स्वतंत्रता केवल पुरुषों की नहीं बल्कि पूरे देश की लड़ाई थी। तो बहनों, इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम अंगना सी ममता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

दोस्तों, अभी आप नितिन मुकेश और सुनैना की आवाजों में सुन रहे थे फिल्म का गीत। अब आइए अगला गीत सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है आबरू।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब आप थोड़ी ही देर में सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
6: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
7: सुगंध, क्या हो रहा है?
6: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे।
8: आई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
10: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
11: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
10: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
12: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
13: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को किया गिरफ्तार। अब तक कुल 20 गिरफ्तारियां। परीक्षा सुधार और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलित छात्रों का विधानसभा मार्च। बैरिकेडिंग तोड़ने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी दागे। विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन 8,399 करोड़ रुपए से अधिक का पहला अनुपूरक बजट पारित। सदन कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। सावन की दूसरी सोमवारी पर राज्यभर के शिवालयों में उमड़ा शिव भक्तों का जनसैलाब। देवघर में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। और रांची में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 के दूसरे दिन विशेष फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई जनजातीय जीवन पर आधारित फिल्में। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कथित भर्ती परीक्षा अनियमितताओं को लेकर छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान आज रांची में तनाव की स्थिति बनी रही। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज किया। इस बीच सीआईडी ने पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया है। पेश है एक रिपोर्ट।

0: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो 9 दिन के अनशन के बावजूद एम्बुलेंस से विधानसभा पहुंचे और स्ट्रेचर पर मार्च में शामिल हुए।
1: और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जो आवाज उठाया हूँ, लाखों युवाओं का दर्द है जो आज आपको दिखाई पड़ रहा है, और सरकार घबरा गई है, डर गई है और कायर की तरफ पुलिस को आगे कर रही है, टियर गैस का प्रयोग कर रही है, तो इससे शासन नहीं चलता है लोकतंत्र में। अभी भी समय है, 5 मिनट में सरकार फैसला ले और छात्र को संतुष्ट करे।
0: प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। इसी बीच झारखंड सीआईडी ने कथित भर्ती परीक्षा अनियमितताओं के मामले में पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। वहीं हजारीबाग के बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और छात्रों के आंदोलन का मुद्दा उठाया और सीबीआई जांच की मांग की। पुलिस कार्रवाई और पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद मामला और गर्मा गया है, जबकि छात्र अपनी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं। रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। सुरक्षा बलों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सहित कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लेकर खेलगांव स्थित कैंप जेल भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद सरकार की कार्रवाई पर विरोध जताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
3: सभी परीक्षाओं से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जाता है। विगत 17 दिनों से हमारे छात्र आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में राज्य में चलने वाली सरकार को कोई सूझ लेने तक की फुर्सत नहीं है। वार्ता के नाम पर बच्चों को बुलाती है और सिर्फ उनका मजाक करने का काम करती है, कोई निचोड़ निकालने का काम नहीं करती है।
2: इस बीच विधानसभा में मंत्री सुदिव्य कुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा ने छात्र आंदोलन को हैक कर लिया है। उन्होंने छात्रों से दोबारा वार्ता की मेज पर आने की अपील करते हुए कहा कि सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है।
4: तरफ से यह वक्तव्य दिया गया कि टीडीपीएल के द्वारा ली गई सारी परीक्षाओं को हम लोग जांच के घेरे में रखते हैं, अगर व्यापक गड़बड़ियों के कुछ प्रमाण उपलब्ध होंगे तो वैसी स्थिति में सरकार कार्रवाई करने को तत्पर रहेगी। और यह सदन छात्रों के प्रति पुनः इस बात को प्रदर्शित करता है कि छात्र हमारे बच्चे हैं, हम उनकी भावना और उनके उद्देश्यों के साथ हैं, वो वार्ता के टेबल पर आए, सरकार उनका समाधान करने को तत्पर है।
2: विधानसभा ने आज

0: आर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा महानगर इकाई द्वारा आज राजधानी रांची में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस देशप्रेम यात्रा में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सेठ ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की।
1: हजारों किलोमीटर की सरहद पर जब लाखों सैनिक -40 डिग्री टेम्परेचर कितना भी ऊंचा हो कोई परवाह नहीं, नारा गाते भारत माता की जय वंदे मातरम। तो आज हम सब भी जब स्वाधीनता दिवस के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो यह हमारी आन बान शान है।
0: उधर गिरिडीह जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों ने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना शुरू कर दिया है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री शालिनी वैश्ख्यार और स्थानीय नागरिकों ने इस पहल की सराहना की है। आम जनता का कहना है कि इस अभियान ने तिरंगे को हर नागरिक के लिए सुलभ बनाकर जन जन को राष्ट्र प्रेम और गौरव की अनूठी भावना से जोड़ दिया है। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर आज पूरे राज्य के शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। देवघर के प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में लाखों श्रद्धालु कतारबद्ध होकर पवित्र ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि देवघर में शाम तक 3,10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर लिया था।
2: देवघर सावनी मेले के दूसरे सोमवारी को कांवरियों का जत्था लगातार बढ़ रहा है। शाम के 7 बजे तक करीब 3,10,000 कांवरियों ने जलाभिषेक कर लिया। कांवरियों की लंबी कतार शाम तक 10 किलोमीटर तक थी। श्रद्धालुओं को बेहतर ढंग से जलाभिषेक कराने की दिशा में पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल और दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। साथ ही यातायात व्यवस्था में भी किसी तरह का दिक्कत न हो इसके लेकर भी जिला प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। पूरा देवघर केसरिया रंग से पटा है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के साथ पूरा देवघर गुंजमान है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
0: पूर्व रेलवे ने श्रावणी मेले के 11वें दिन 9 अगस्त को 2,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की, जिसमें सुल्तानगंज स्टेशन पर सबसे अधिक यात्रियों का आवागमन रहा। महाप्रबंधक सुश्री गीतिका पांडे ने के निर्देशन में जसीडी और देवघर सहित प्रमुख स्टेशनों पर विशेष ट्रेनों के साथ ही 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। रांची में आयोजित 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 के दूसरे और आखिरी दिन विशेष फिल्म फेस्टिवल के तहत जनजातीय जीवन, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इस सिनेमाई उत्सव में कुलुई भाषा की व्हाट आर यू सर्चिंग और लुक एट द स्काई जैसी फिल्मों की स्क्रीनिंग के जरिए युवाओं को आदिवासी समाज की समृद्ध विरासत से रूबरू कराया गया। कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के सैकड़ों जनसंचार छात्रों ने मास्टर क्लास में भी हिस्सा लिया। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के 9 जिलों के लिए तात्कालिक अलर्ट जारी किया है। अगले 1 से 3 घंटों में रांची, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, रामगढ़, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा के कुछ भागों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को किया गिरफ्तार। अब तक कुल 20 गिरफ्तारियां। परीक्षा सुधार और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलित छात्रों का विधानसभा मार्च। बैरिकेडिंग तोड़ने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी दागे। विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन 8,399 करोड़ रुपए से अधिक का पहला अनुपूरक बजट पारित। सदन कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। सावन की दूसरी सोमवारी पर राज्यभर के शिवालयों में उमड़ा शिव भक्तों का जनसैलाब। देवघर में 3,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। और रांची में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव के दूसरे दिन विशेष फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई जनजातीय जीवन पर आधारित फिल्में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है।
5: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता।
1: भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ धरातल पर दिखने लगा है। गरीब लोग आवास पाकर बेहद खुश हैं और सरकार के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं।
2: पहले मिट्टी का घर था, सरकार दिया तो घर बनाया। अभी सरकार दूसरों लेके बढ़िया से रहते हैं, पानी नहीं छूता है, बढ़िया अपना मकान से बना के बढ़िया से रहते। प्रधानमंत्री से धन्यवाद,
1: राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने गिरिडीह जिले को हाल के दिनों में 64 नए वाहन उपलब्ध कराए हैं। गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने बताया कि नए वाहन मिलने से पुलिस को अपराध रोकने में मदद मिलेगी।
3: डायल 112 को लेकर के जो गाड़ियां मिली हैं, जिससे पुलिस की एफिशिएंसी बढ़ेगी और जो भी थाने हैं हर एक थाने को उसके आवश्यकता के हिसाब से और उनका एरिया के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। पूर्व में भी 32 गाड़ियां मिली थी, पिछला बार हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया, तो वो 32 गाड़ियां बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और अब जो है विधि व्यवस्था को लेकर के लोगों के पास किसी तरह की समस्या है उस तक हम लोगों को पहुंचने में बहुत आसानी होगी और इसका काफी अच्छा सकारात्मक असर इधर हाल के दिनों में भी दिखा है। लोगों के द्वारा जो भी अगर कॉल किया जाता है डायल 112 में या हमारे कंट्रोल रूम में या जिला नियंत्रण कक्ष में, तो हम लोगों का रेस्पॉन्स टाइम 10 मिनट से कम हुआ है, जो पूरे स्टेट के एवरेज के से भी अच्छा माना जा सकता है उसको।
1: वन विभाग द्वारा समय पर एनओसी नहीं दिए जाने के कारण गिरिडीह में कई सड़क परियोजनाओं को मूर्त रूप नहीं दिया जा रहा है। कोडरमा की सांसद एवं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से उपाय ढूंढने का आग्रह किया है।
4: राज्य सरकार से कहना चाहेंगे कि राज्य के हित की बात जहां होती है, हमारे आदिवासी समाजों या जंगल में रहने वाले वैसे सभी लोगों के लिए कि बहुत ही परेशानी होती है जब सड़क नहीं होता, कितनी मुश्किल होती है महिलाओं को, जब अगर उन्हें प्रसव के समय हॉस्पिटल आना होता है, कोई बीमार पड़ जाते हैं, तो वैसी स्थिति में बहुत ही परेशानी होती है। तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, कोई एक आप ऐसी व्यवस्था करें ताकि उसमें हर विभाग जिससे भी एनओसी की आवश्यकता है जंगल में बसे लोगों के सुविधा के लिए, तो उसकी आप व्यवस्था कराएं, ये हम चाहेंगे। और आपने जिस गांव की ओर इंगित किया है, निश्चित रूप से हम इसको लेके भी विशेष रूप से जिला अधिकारी से भी हम बात करेंगे और राज्य सरकार से भी।
1: गिरिडीह जिले में हाल के दिनों में बरसापात में वृद्धि हुई है। बरसापात होने से धान की रुपाई में तेजी आई है। बरसापात के साथ साथ वज्रपात की घटना में भी वृद्धि हुई है। बीते मंगलवार को गिरिडीह जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में वज्रपात से एक दिन में 10 लोगों की मौत हो गई और इतने ही लोग घायल हो गए। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
0: अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल, आइए सुनते हैं विधानसभा समीक्षा।
1: प्रस्तुत है झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं दैनिक उदितवाणी रांची के विशेष संवाददाता उमापद महतो। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के विधायकों की अनुपस्थिति के बीच वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8,399,31,00,000 रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। भोजनावकाश के बाद सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा हुई, जिसके बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सरकार की ओर से जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड के वित्तीय प्रबंधन की नीति आयोग ने भी सराहना की है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में राज्य की राजस्व वसूली 25 से 26% रही है, जो संतोषजनक है। उन्होंने केंद्र सरकार पर केंद्रीय करों के अनुदान के बंटवारे में झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य को केवल 0.73% अनुदान राशि मिल रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रथम अनुपूरक बजट में ग्रामीण विकास से जुड़े विभागों को प्राथमिकता दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग के लिए 4,258,67,00,000 रुपए, ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 885,83,00,000 रुपए तथा पंचायती राज विभाग के लिए 244,80,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्राथमिक एवं व्यसक शिक्षा प्रभाग के लिए 946,30,00,000 रुपए, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आपदा प्रबंधन प्रभाग के लिए 490,68,00,000 रुपए तथा गृह प्रभाग के लिए 144,16,00,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, निर्वाचन विभाग तथा ऋण अदायगी और ब्याज भुगतान मद में भी राशि का प्रावधान किया गया है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू की। भाजपा विधायकों की अनुपस्थिति होने पर उन्होंने कहा कि सवाल देकर सदन में उपस्थित नहीं होना दुखद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी ने किसानों की संख्या के अनुरूप कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के बजट में वृद्धि नहीं होने का मुद्दा उठाया। विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर बजटीय प्रावधान किया जाता है। उन्होंने बताया कि बिरसा बीज उत्पादन एवं वितरण, फसल विस्तार, समेकित बिरसा, ग्राम विकास योजना, किसान समृद्धि योजना तथा कृषि यंत्र वितरण जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना और जोड़ा बैल वितरण योजना भी संचालित है तथा राज्य में पोल्ट्री फेडरेशन के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। किसानों को अब भेड़ पालन के लिए भी आवेदन करने की सुविधा दी गई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने जोल्हा हिंदू, धुनिया और नदाफ जातियों को राज्य की जाति सूची में शामिल किए जाने का मुद्दा उठाया। प्रभारी मंत्री दीपक बीरवा ने बताया कि इन जातियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अनुसूची एक में शामिल करने की कार्रवाई चल रही है और इसे 3 महीने के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। विधायक जयराम कुमार महतो ने सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में बीसी 1 और बीसी 2 वर्ग के लिए आरक्षण प्रावधान के पालन का प्रश्न उठाया। प्रभारी मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि रिक्तियों और आरक्षण सूची के अनुरूप नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी गई है। विधायक राजेश कच्छप ने प्रश्न पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद से कहा कि आरक्षी चालक संवर्ग की भर्ती, प्रोन्नति और सेवा शर्तों से संबंधित नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। भाकपा माले विधायक अरूप चटर्जी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्रों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जेपीएससी परीक्षा से संबंधित कई मांगों पर सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन सीजीएल परीक्षा को लेकर छात्र अब भी आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने आंदोलन में शामिल उपद्रवी तत्वों की पहचान करने की आवश्यकता बताई। झामुमो विधायक लुईस मरांडी के सवाल पर प्रभारी मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि प्राकृतिक आपदा में मकान क्षतिग्रस्त होने पर मैदानी क्षेत्रों में पक्के मकानों के लिए 1,20,000 रुपए तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कच्चे मकानों के लिए 1,30,000 रुपए तक सहायता देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान राशि बढ़ाने का आग्रह केंद्र सरकार से किया जाएगा। अनुपूरक बजट पारित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे दैनिक उदितवाणी रांची के विशेष संवाददाता उमापद महतो।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश कार्यक्रम आपकी योजना, संकलन एवं वाचन है प्रकाश कुमार राणा का, प्रस्तुत करता है राजीव कुमार और संयोजक है विक्रम कुमार रंजन।
3: श्रोताओं, क्या आप रोजगार की तलाश में हैं? और यदि आप में कार्य करने के लिए कौशल विकास, हुनर की कमी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वैसे युवाओं के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार एवं बैंकों की संयुक्त भागीदारी से हर जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हजारीबाग जिले की इंडियन बैंक ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान यानी RCT की। यहाँ निशुल्क सहायता की जाती है आपको कुशल और निपुण बनाने में, बैंकों से ऋण लेने में, एक सफल उद्यमी बनाने में, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं RCT यानी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की विशेषताएं और कार्यविधि के बारे में। इसी संदर्भ में हमारे साथ हैं RCT हजारीबाग के वासुदेव कुमार जी, जो कि वरिष्ठ प्रशिक्षण समन्वयक हैं। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार।
4: नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद
3: वासुदेव जी। हम आपके RCT सेंटर में हैं, तो आप बताएं कि RCT है क्या।
4: RCT बेसिकली ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार और बैंक की सहायता से हर एक जिले में, देश के हर एक जिले में चलाया जाता है। इसका विस्तार रूप है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, और ये हजारीबाग में इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित है और इसको इंडियन बैंक पूरा खर्च वहन करती है।
3: RCT यानी कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की क्या क्या उद्देश्य या विशेषताएं हैं?
4: बेसिकली ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT का मुख्य उद्देश्य होता है ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र से जो लोग होते हैं उसको स्वरोजगार से जोड़ना।
3: अच्छा।
4: और उनको जोड़ के उसका रोजगार मुहैया कराना, बैंकों से ऋण मुहैया करवाना, ये इसका बेसिक उद्देश्य है।
3: ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ऐसे BPL परिवार रहते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं, पढ़ाई लिखाई तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल पाता है, कौशल की कमी होती है, और रोजगार मिल भी जाती है तो बहुत कम दरों पे वे काम करते हैं। यदि हाथों में हुनर हो तो उन्हें अपना स्वरोजगार या तो कहीं काम करते तो उन्हें अधिक फायदा होगा या अधिक पैसे मिलेंगे, है ना, उनका जीवन स्तर सुधरेगा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि RCT की क्या क्या खूबियां हैं जो लोग आपसे जुड़ते हैं, युवा आपसे जुड़ते हैं।
4: RCT में जुड़ने का मुख्य उद्देश्य या फिर युवा जो आकर्षित होते हैं हमारी ओर, क्योंकि यहाँ पे RCT में बिल्कुल निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है।
3: अच्छा।
4: ये आवासीय है पूर्ण रूप से, यहाँ पे रह करके रहना खाना फ्री में है, ट्रेनिंग फ्री में, ट्रेनिंग का जो साजो सामान है वो फ्री में दिया जाता है।
3: अच्छा।
4: प्रशिक्षण के दौरान उन लोगों को निशुल्क पोशाक दिया जाता है, छात्रावास में रहने की व्यवस्था दिया जाता है, और विभिन्न उद्यमी के गुण कौशल को उनको अर्जित करने का तरीका, क्या क्या कौशल हैं, आप भविष्य में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसको उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाता है। उसके जो हमारे क्षेत्र में जो लोग कुशल प्रशिक्षक होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है।
3: अच्छा।
4: योग्य प्रशिक्षक द्वारा दिया जाता है। हमारे यहाँ कम अवधि का प्रशिक्षण और एक दिन में, एक दिवस में मिनिमम कम से कम 8 घंटा का प्रशिक्षण दिया जाता है उनको। प्रशिक्षण के दौरान उन लोगों को 2 वर्ष तक का बैक सपोर्ट करते हैं, पीछे से उसका सपोर्ट करते हैं कि क्या समस्या है, स्वरोजगार स्थापित करने में क्या समस्याएं आ रहे हैं हमें बताइए, हम उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखा जाता है। वो सारा JSLPS की दीदी लोग को प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें लोगों को बैंक के बारे में, बैंकिंग के बारे में, बैंक हमें क्या क्या सुविधाएं देती है, क्या क्या सरकार की योजनाएं चल रही है, उसके बारे में समूह में जाकर के वो लोग लोगों को बताती है। हम यहाँ मास्टर प्रशिक्षक तैयार करते हैं, वो फिर समूह में जाकर के वो लोगों को विस्तार से बताती है, और हम बैंक से कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके इसके बारे में उन लोगों को बताया जाता है। कृत्रिम आभूषण बनाने का, हाथ में, कान में, नाक में, गला में, पैर में,

0: वो पहनते हैं, वो सब चीज का प्रशिक्षण दिया गया है, मुर्गी पालन का, गाय पालन का, बकरी पालन का, मतलब पशुपालन से खेती बाड़ी से संबंधित अभी प्रशिक्षण। उसके बाद हमारे यहाँ महीना भर का भी प्रशिक्षण हो। प्रशिक्षण लेने के लिए उन युवाओं को क्या करना हो, कैसे आपसे जुड़ेंगे? हमसे जुड़ने के लिए सीधा RCT आ सकते हैं। यहाँ का पूरा पता है साकेतपुरी, जो नीलांबर पीताम्बर चौक के समीप है। हम गांव गांव में, पंचायत पंचायत में, ब्लॉक ब्लॉक में जा करके जागरूकता कार्यक्रम करते हैं। वहां से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। JSLPS का जो भी ऑफिस है, ब्लॉक ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, आपका क्लस्टर ऑफिस है, वहां पे भी आप जाकर के JRP दीदी से संपर्क करके वो हमारा एप्लीकेशन प्राप्त कर सकते हैं। हमें डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, से बात करके हमारा फॉर्म ले सकते हैं। और ये फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है।
1: इंडियन बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हजारीबाग के नाम से ये संचालन हो रहा है अभी। तो उन युवाओं को क्या क्या दस्तावेजों के साथ आपके पास या आपके कार्यालय आना होगा?
0: मेरे पास प्रशिक्षण लेने के लिए जो मूलभूत दस्तावेज है, पहला आधार कार्ड उनका होना चाहिए। अच्छा। उसमें उनका उम्र 18 साल से 45 साल के बीच में अंकित होना चाहिए।
1: ठीक।
0: दूसरा है आपका BPL नंबर का, या BPL जो आपको प्रमाणित करता है कि आप BPL परिवार से है। तीसरा चीज है आपका शैक्षणिक योग्यता कितना है। चौथा चीज है 4 पासपोर्ट आकार का फोटो। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड है, डिफरेंट ट्रेड के लिए, अलग अलग ट्रेड के लिए आपको अलग अलग शैक्षणिक योग्यता की जरूरत पड़ता है। जैसे 30 दिन वाला प्रोग्राम के लिए आपको एटलीस्ट कम से कम मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। बाकी कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित आपको कम से कम पढ़ना लिखना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, और आप एग्जाम में पास हो जाएं। एग्जाम परीक्षा जो पास करते हैं उन्हीं को प्रमाण पत्र दिया जाता है। यहाँ से सर हम आपको बताते हैं, 2 प्रमाण पत्र दिया जाता है। एक तो होता है कि जो ट्रेनिंग का प्रशिक्षण का कार्यक्रम का प्रतिभागी हुए, प्रतिभागी प्रमाण पत्र दिया जाता है। दूसरा होता है कि जो परीक्षा में पास करते हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेसर द्वारा, स्किल इंडिया के द्वारा उसको एक प्रमाण पत्र आता है। वो हमें, हम उसको प्रिंट नहीं करते हैं, वो वहीं से आता है और उनको हम देते हैं, परीक्षा पास करने के उपरांत।
1: इतनी सारी सुविधाएं दी जाती हैं उन प्रशिक्षकों को, वे अभ्यर्थी जो यहाँ सीखने आते हैं, युवा या महिलाएं, तो सीखने के बाद मन में इच्छा होती है कि क्यों ना अपना स्वरोजगार करें, क्योंकि सीखने का मतलब यही है, या तो कहीं रोजगार करें या तो अपना खुद का स्वरोजगार करें। तो क्या इंडियन बैंक जो है किस तरह से इनकी मदद करती है?
0: इंडियन बैंक का मुख्य उद्देश्य सर, जैसा कि हमने पहले बताया था, स्वरोजगार।
1: अच्छा।
0: ये स्वरोजगार ही करना है, इसमें आपको कहीं प्लेसमेंट या नौकरी के लिए आपको ये प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो ये पहला समझना है कि हमको इस प्रशिक्षण लिए है वो स्वरोजगार के लिए। इसे या तो खुद का रोजगार करना है, अगर आपके पास पूंजी है, खुद का पूंजी है, तो जिस क्षेत्र में आप प्रशिक्षण लिए हैं उसी चीज को आप स्वरोजगार के रूप में अपना, अपने घर जाकर के, घर बैठे आपको करना है, कहीं बाहर में नौकरी के लिए नहीं भेजना। दूसरा चीज, अगर पूंजी आपके पास नहीं है तो हम उन्हें प्रशिक्षण के दौरान ही उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आपके पास पूंजी अपना है या नहीं है। अगर पूंजी नहीं है तो आप हमारे यहाँ आवेदन दे दीजिए ऋण के लिए, आपको कितना ऋण की आवश्यकता है वो भी आप दर्शा दीजिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चिट्ठी बनाएंगे RCT का, अपना जो लेटर हेड होता है हमारा उसमें, और हम थ्रू हजारीबाग के LDM के थ्रू उसके सेवा क्षेत्र के बैंक में उस एप्लीकेशन को, आवेदन को भेज देते हैं कि ये हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लेके जा रही हैं, इनको ऋण की आवश्यकता है, ये हमें बताएं, आप इन्हें इसको ऋण मुहैया कराएं ताकि ये अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके।
1: हर जिले में चल रहा है, लेकिन उनके प्रायोजक या तो उनके देखरेख करने वाले बैंक अलग अलग होते हैं,
0: मॉनिटरिंग बैंक अलग अलग।
1: हाँ, मॉनिटरिंग बैंक जो होते हैं सो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ फिलहाल हजारीबाग जिले में, और ये जो है नीलांबर पीताम्बर चौक के समीप जो है सदानंद मार्ग में साकेतपुरी में जो चल रहा है, वहाँ इंडियन बैंक द्वारा देखरेख में ये चल रहा है। युवाओं को ये यहाँ प्रशिक्षण दिए, क्या अनुभव करते हैं आप, उनके जीवन में क्या बदलाव होता है?
0: हम यहाँ 2013 से पोस्टेड हैं, और करीब यहाँ से प्रत्येक वर्ष 700 से 800 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण लेते हैं। सर, जब हम फील्ड में जाते हैं, मैंने पहले बताया कि 2 साल तक इसको बैक सपोर्ट करते हैं हम लोग।
1: अच्छा।
0: और फील्ड में जाकर के फॉलो अप करते हैं, देखते हैं जाकर के क्या कर रहे हैं, वहाँ जाते हैं सर, वो लोग करता है तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलता है कि हमारा प्रशिक्षणार्थी, हम वहाँ जाते हैं तो हमें बुलाते हैं, बैठाते हैं, बढ़िया से बताते हैं कि सर आपके प्रशिक्षण वहाँ से लिए और हम अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमें सर बहुत खुशी होती है। और लोग रोजगार से, स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं, कि हमें क्या करना है कि लोगों को अधिक से अधिक स्वरोजगार से जोड़ने का काम करना है।
1: वह जो है पढ़ाई लिखाई करने के बाद हाथ में तो हुनर रहता नहीं था, वे पलायन कर जाते थे दूसरे राज्यों में, लेकिन कई कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से, खासकर RCT जो है, उन युवाओं को स्वरोजगार घर पे ही देता है। तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: नौजवान बेरोजगार युवक जो भी अपने घर में पढ़ लिख करके बैठे हुए बेरोजगार हैं, उनसे हम यही चाहेंगे कि अपने इच्छा के अनुसार किसी भी ट्रेड में प्रशिक्षण लेकर के आप अपना स्वरोजगार स्थापित करें। युवाओं से खासकर करके जो

0: 18 से 45 साल के बीच में घर में बैठे हैं, वो प्रशिक्षण करके कुछ ना कुछ करें और सरकार का सहयोग करें।
1: तो आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: RCT यानी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जो कि हर जिले में संचालित है, इसकी स्थापना के पीछे ग्रामीण क्षेत्र में BPL ग्रामीण गरीब परिवारों में बेरोजगार नवयुवक नवयुवतियों के लिए निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार से जुड़ना है, जिससे वे अपनी इच्छा अनुसार गतिविधियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने पैरों पर खड़े होकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके। तो सुनते हैं इस योजना के लाभुकों से उनकी राय और जानते हैं उनकी आत्मनिर्भरता की कड़ी को।
3: मेरा नाम पूर्णिमा कुमारी पासवान है। हम RCT से सिलाई के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं और हम लोग वहाँ से सारा कुछ सीखे हैं। पेटीकोट हो गया, ब्लाउज हो गया, फ्रॉक हो गया, नाइटी हो गया, बेबी फ्रॉक हो गया। उसके बाद हम लोग वहीं का एप्रन सिलाई कर रहे हैं, जो यूनिफॉर्म है वहाँ का।
1: क्या क्या सुविधाएं दी गई थी उस समय जिसमें आप सीख रही थी?
3: वहाँ से सारा सुविधा हम लोग को मिला था, जैसा कि कपड़ा वगैरह मिला था, सारा चीज, सिलाई का मशीन भी वहीं का था, खाना वगैरह भी मिलता था, शाम को चाय बिस्किट सारे कुछ, मैंने सुविधा में सब कुछ मिला वहाँ से हम लोगों को।
1: सीख जाने के बाद क्या किया आपने? देख रहे हैं कि आपके पास कई सिलाई मशीन है, तो यहाँ तक का सफर कैसे तय किए आप?
3: हम लोग कुछ लोन भी लिए और फिर अपने से भी कुछ अपना अपना सब पूंजी लगाए और फिर हम लोग यहीं पे, मैंने सर ही बताएं कि आप लोग वहाँ का यूनिफॉर्म सिलिए, तो उसी के माध्यम से हम लोग अभी सिलाई कर रहे हैं।
1: तो कहाँ कहाँ से काम आता है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि कई महिलाएं जो हैं आपस में ग्रुप बना के बैठी हैं।
3: सर जैसे तो अभी RCT का हम लोग एप्रन सी रहे हैं। अच्छा। फिर अगर हम लोग को कहीं से ब्लाउज का मिल गया ऑर्डर तो वो भी कर लेते हैं, पेटीकोट का मिल गया वो कर लेते हैं, कोई ऑर्डर दे दिया कोई अगल बगल से भी दे दिया वो लोग अभी ले लेते हैं, नाइटी वगैरह हो गया या फिर नाइट ड्रेस हो गया, मैंने जितना सिलाई वाला है हम लोग सब ऑर्डर ले लेते हैं और फिर हम लोग सब मिल के सीते हैं।
1: एक और दीदी हमारे साथ है, तो क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम किरण देवी है। यहाँ आके एप्रन सिलते RCT का।
1: आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
4: बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम लोग समूह में जुड़े, समूह के द्वारा JRP दीदी के द्वारा से फिर RCT का पता लगा, वहाँ से फिर हम लोग सारा सुविधा मिला, सिलाई के दौरान कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ और ना कमी हुआ। उसके बाद जब हम लोग का ट्रेनिंग खत्म हो गया तो फिर हम लोग ग्रुपिंग किए कि हम लोग को अब एप्रन सिलना चाहिए, तो उसके बाद हम लोग 10 महिला ग्रुप बनाए, फिर हम लोग को सैंपल मांगा गया, सर बोले कि नहीं सैंपल देना है, तो वहाँ के लिए फिर आप 2 एप्रन सिल के दिखाए, सर बोले अच्छा है। उसके बाद फिर से ऑर्डर आया 50 का, उसके बाद सब सिल के पहुँचाए RCT, वहाँ से फिर हम लोग को पैसा मिला और जो पैसा आया जो हम लोग को कमी था उस पैसा को हम लोग उस जगह पे यूज किए, तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि हम भी अपने पैर पर खड़ा होके कुछ आगे बढ़े।
1: एक और दीदी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम कुलसुम खातून है।
1: RCT यानी कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में कैसे पहुंची आप लोग?
5: हम लोग JSLPSA के द्वारा ग्रुप बनाए थे। अच्छा। तो वहीं से हम लोग पहुंचे, JRP दीदी हम लोग को बताई तो वहीं हम लोग पहुंचे। उसके बाद फिर 1 महीना का ट्रेनिंग हम लोग लिए, उसके बाद अपना आजीविका को बढ़ाने के लिए हम लोग को जो सुविधा वहां से मिला उसी से हम लोग आगे बढ़े।
6: मेरा नाम मंजू देवी हुआ। काम मिलता है हम लोग को, थोड़ा अच्छा भी लगता है करने में कि और हम लोग को काम मिला तो हम लोग काम करके थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, अपना आर्थिक सुविधा को मतलब आर्थिक स्थिति को सुधार में लाएंगे और उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। और जैसे घर से हम लोग बाहर निकलते हम लोग बहुत खुशी होती है कि चलो हम लोग अपने साथ जा रहे हैं, सारे ग्रुपिंग मिल करके हम लोग काम करेंगे, तो हम लोग को खुशी बहुत ज्यादा होती है कि हम लोग घर से बाहर निकल सकते हैं और अपना पैर पे खड़े हो सकते हैं।
1: पूर्णिमा पासवान जी से बात करते हैं कि किस तरह से ये जो है महिलाओं की स्थिति को पहले जो देखे थे और अभी जो देखते हैं, क्या आत्मनिर्भरता आती है उनके चेहरे में, उनकी आंखों में?
3: पहले से तो चेंजिंग है, पहले इन लोग के पास भाड़ा तक नहीं रहता था, अब तो खुद से अपना पैसा लगा के ये लोग काम कर रहे हैं, नहीं तो पहले किसी को मोहताज रहना पड़ता था, जैसे हो गया ससुर से मांग लिए या हस्बैंड से मांग लिए, लेकिन अब इन लोग को मांगने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये लोग के पास खुद आ गया है इतना कि ये लोग अपना आना जाने वाला ये कर सकते हैं। ये लोग सब है कि दूर दूर से है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह के सब है, कोई ओरिया से आती है, कोई बहरी से आती है, कोई लालपुर चौक से आती है, एक सिंदूर से है, एक सिरसी से है और एक हुड़हुड़ू से है। हम ही लोग सब बैठ के एक जगह एक दिन मीटिंग रखे और फिर हम लोग बोले कि नहीं हम लोग को कुछ करना चाहिए, ऐसे सिलाई सीख के ऐसे बैठने से कोई फायदा नहीं है, इस सोच के हम लोग सोचे कि नहीं हम लोग जब सिलाई सीखे हैं तो उसको कुछ हम लोग करके दिखाएंगे, इस सोच के हम लोग आगे बढ़े हैं। थैंक यू सर।
2: इस तरह के कई कार्यक्रम निशुल्क इस RCT संस्थान के माध्यम से हर जिले में चलाया जा रहा है, तो उम्मीद है आप इस योजना का लाभ जरूर लेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी योजना, संकलन एवं वाचन था प्रकाश कुमार राणा का, प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है प्रोग्राम ऑल टाइम हिट्स।

इसी गाने के साथ ऑल टाइम हिट्स प्रोग्राम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से।

ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध व्यक्त करते हुए सदन से वॉकआउट किया। यह विधेयक औपनिवेशिक काल के पुराने अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विपक्षी सदस्यों के बीच हंगामे के बीच इस विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज बैंकिंग सेवाओं का बड़े स्तर पर डिजिटलीकरण हो गया है। बैंकिंग क्षेत्र की इस जरूरत को देखते हुए मूल कानून में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि मूल कानून में कागज आधारित प्रति पर बहुत जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले बैंकों को उनके लेनदेन के सिलसिले में कागजी रिकॉर्ड लेकर अदालत में बुलाया जाता था और इसमें डिजिटल रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं था। अब डिजिटल रिकॉर्ड मान्य होगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। चर्चा में बीजेपी के मानस रंजन मंगराज, भाजपा के अरुण सिंह और शंभू शरण पटेल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थम्बीदुरई और डॉ एम धनपाल, रंकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेदेपा के भाष्यम रामकृष्ण, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, द्रमुक सदस्य एल के सुधीश और शिवसेना की डॉक्टर ज्योति नागराज वाघमारे ने हिस्सा लिया। प्रस्तावित कानून में बैंकर्स बुक्स या बैंक कार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उसके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण या स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, विक्रमजीत सिंह साहनी, डॉ कल्पना सैनी, रेखा शर्मा, धनंजय भीमराव महादिक, बाबूराम निषाद, द्रमुक सदस्य पी विल्सन, बीजत के सुभाषीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू और तेदेपा के विजय चिंता कायला ने हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। उन्होंने कहा कि कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कलपुर्जे ऐसे हैं जिनका भारत में निर्माण नहीं होता, लेकिन देश में उनकी जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अनुबंध पर विनिर्माण करने वाली कंपनियों से जुड़ी विदेशी कंपनियों को कर छूट देने का प्रस्ताव है। यह छूट वर्तमान में 5 साल के लिए उपलब्ध है, जिसे बढ़ाकर वित्त वर्ष 2040-41 तक करने का प्रस्ताव है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पूर्व में भारतीय डेटा सेंटर का इस्तेमाल करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर छूट देने का वादा किया गया था, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार की बहुस्तरीय मंजूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। विधेयक में डेटा सेंटर के लिए अधिक स्पष्ट और सरल नियमों का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक में यूपीआई लेनदेन करने वाले पर
कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यूपीआई पहले की तरह ही छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुफ्त होगा। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के सांवैधानिक संकल्प को खारिज कर दिया है। विधेयक पर चर्चा और पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे इससे पहले ही सदन से वॉकआउट कर गए थे। मंत्री के जवाब के बाद कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात उच्च सदन में विशेष उल्लेख

पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण तीन बार बाधित हुई। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह की सदन में उपस्थिति और जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को मिले चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारेबाजी की। सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध विषयों को उठाने की अपील की। हंगामे के बीच ही भाजपा के राहुल सिन्हा, तरुण चुग, डॉक्टर के लक्ष्मण और बाबूभाई जयसंगभाई देसाई ने आसन की अनुमति से सदन में लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। इस दौरान विपक्षी सांसद आगे की पंक्ति के पास एकत्र हो गए और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिए जाने की मांग करने लगे। राधाकृष्णन ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने को कहा ताकि उनकी मांग पर विचार किया जा सके। अपनी बात का असर होता न देख सभापति ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आसन की अनुमति से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और प्रवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ऊर्जा संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। कुछ सदस्य तो अपने स्थान से उठकर आगे आ गए। सदन में व्यवस्था न बनते देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक के फिर से शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच ही सदन ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। शोर शराबे के बीच ही सदन में 3 अन्य विधेयक खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए गए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृहमंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पहले दिन से यह मांग कर रहे थे कि गृहमंत्री अमित शाह को विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि मैं सरकार की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार विद्यार्थियों के मामले को लेकर चर्चा और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष से अनुरोध है कि उन्हें गृहमंत्री के जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, उन्हें पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी यह बात कही गई है कि सरकार विस्तार से चर्चा और जवाब देने को तैयार है। इस दौरान विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे। इस बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। श्री मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उनका कहना था कि यह विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है।
सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच

0: विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने आसन के समीप आकर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि वे गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहे थे और अब जब संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि गृह मंत्री सदन में चर्चा का जवाब देने को तैयार हैं तो सदन की कार्यवाही चलनी देनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। आसन पर उस समय आरएसपी नेता एन के प्रेमचंद्रन थे, जिन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया। वैसे सामान्य तौर पर लोकसभा में प्रश्नकाल के समय आसन पर अध्यक्ष ओम बिरला होते हैं। हंगामा जारी रहने पर भी श्री प्रेमचंद्रन ने बैठक शुरू होने पर भी के भी 2 मिनट अंदर ही दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहले ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। हालांकि ये दोनों विधेयक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम से सूचीबद्ध थे। हंगामा नहीं थमने पर भी पीठासीन सभापति संध्या राय ने दोपहर 12:14 पर सदन की बैठक अपराहन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस प्रकार मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही लगातार 16वें दिन आज भी सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन में आज पेश किए गए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। विधेयक के तहत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के तहत आने वाला एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत की गई थी। एनसीडीसी के प्रमुख कार्यों में कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और आयात निर्यात से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। इस नए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के वितरण के अनुसार जून 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन और केंद्र सरकार द्वारा सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद सहकारी क्षेत्र के विकास में एनसीडीसी की भूमिका काफी बढ़ गई है। केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 भी सदन में पेश किया गया, जिसमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 24 फरवरी को केरल का नाम बदलकर केरलम करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का आग्रह था। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:15 हुए हैं। पेश कार्यक्रम आपकी चाहत। आपकी चाहत कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को ममता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमने पहली फरमाइश ली है मगनपुर से अमजद अली और अब्बास आलम की। आप सुनना चाहते हैं मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में ये गीत। फिल्म का नाम है पुलिस और मुजरिम।

दोस्तों, अब हम सुनवाते हैं आपको फिल्म आखिरी अदालत का ये गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में। आप सबने फरमाइश की है, औरंगाबाद से हैं राजेश पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म आक्रमण से ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। इसकी फरमाइश की थी चेपाकला बड़का गांव से श्री बाबूलाल ठाकुर, श्रीमती सविया ठाकुर, तिलेश्वरी श्री भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश आदर्श, अनुराधा रुक्मणी, प्रियंका, दीपिका। अब आइए के की आवाज़ में कार्यक्रम का ये आखिरी गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसकी फरमाइश भेजी है कटनी से अनिल, अमर, संजीव, रंजन, राजू, दिलीप एवं रविकांत, बेर्डी सिंह, हुकुम, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु।

दोस्तों, इसी गाने के साथ कार्यक्रम आपकी चाहत से ममता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज़ 8:09 हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे, पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
2: The bill, among various other things that it wants to do.
3: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: Permits authentication through manual, digital and electronic signatures.
1: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
4: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही तीन तीन बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज चार विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में दो विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंक कार बहिसाक्ष विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
6: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
7: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
8: फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खिंगयांगडे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
9: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस में संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
10: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और harghartiranga.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
11: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ. अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉ. राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नेते निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes taxation bill to strengthen country's manufacturing ecosystem, attract investment and create jobs. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures UPI transactions to remain free. Legislation granting legal recognition to digital banking records as evidence also gets nod from Parliament. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges opposition to allow Lok Sabha to function for Home Minister Amit Shah's statement on student protest-related issues. Protests intensify in Jharkhand over recruitment exam irregularities after clashes between students and police during assembly march in Ranchi. 80th Independence Day celebrations to showcase Yuva Shakti and its contribution to Viksit Bharat by 2047. National song Vande Mataram to be sung from the ramparts of Red Fort for the first time. Heavy rainfall forecast for Himachal Pradesh and East Rajasthan tomorrow. And FIH Hockey World Cup 2026 begins later this week with new format as quarterfinals are scrapped. India drawn in the men's and women's Pool D. And now the news in detail. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with the Rajya Sabha returning it to the Lok Sabha after discussions. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025 and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on the 5th of June this year. Replying to the discussion, Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment and promote manufacturing activities. She said the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users.
2: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced, and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
12: The Parliament also passed the Bankers Books Evidence Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister had moved the bill, which has a provision that an electronic or digital record of the banker's book will be admissible, valid and legally enforceable as evidence. Replying to discussion on the bill, Finance Minister Sitharaman said, "This bill is a very reformative step which will help the country move forward at a faster pace."
2: The bill, among various other things that it wants to do, provides for a technology-neutral legal framework for bankers' books. It recognizes electronic and digital banking records. It standardizes the certification process, facilitates the admissibility of electronic banking records. It permits authentication through manual, digital and electronic signatures. It also therefore strengthens the statutory protection.
12: After completing its business, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha today passed the Tribunals Reforms Bill 2026. The bill was passed without any discussion amid uproar by opposition members after several issues, including alleged police action during students' protest on the NEET matter. As the pandemonium continued, the chair adjourned the house for the day. Our correspondent brings a report on today's proceedings in both the Houses of Parliament.
13: Both the Houses of Parliament today faced repeated disruptions due to the opposition protest and uproar on various issues. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were both adjourned for three times due to the opposition ruckus. However, the Lok Sabha completed its legislative business by introducing four bills, of which one legislation, the Tribunals Reforms Bill 2026, was passed without discussion. The Rajya Sabha also completed its listed legislative business. The Bankers Books Evidence Bill 2026 aimed at modernizing the banking system and bringing it in line with the requirements of the digital era was passed by the upper house. In addition, the house also discussed and returned the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 to the Lok Sabha. With Suparna Saikia, Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
12: Lok Sabha Speaker Om Birla today made a personal appeal to the floor leaders to cooperate in the smooth functioning of the house and participate in the discussion on key bills. Mr. Birla stated this during the Business Advisory Committee meeting held at Parliament House. He said the people's issues cannot be left waiting in the corridors and they must be reflected, debated and resolved on the floor of this house. Speaking to reporters at the Parliament premises after the BAC meeting, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government is ready for a detailed discussion in Parliament regarding the recent student protests and related issues. Mr. Rijiju appealed to the opposition to allow the House to function so that Union Home Minister Amit Shah can make a statement about the students' protest and address all concerns raised by the opposition members.
6: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा
14: देयर कैन बी डिस्कशन ऑन द स्टूडेंट मूवमेंट इन दिल्ली एंड ऑल स्टूडेंट रिलेटेड मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस अक्रॉस द कंट्री माय रिक्वेस्ट टू द कांग्रेस पार्टी एंड आवर कलीग्स इन द अपोजिशन इज दैट सिंस द गवर्नमेंट इज रेडी टू डिस्कस द स्टूडेंट मूवमेंट यू शुड

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के हुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, कोधे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

फिल्म संगीत के चाहने वालों में बिरला ही कोई होगा जिसने महल फिल्म का ये गीत ना सुना होगा। हम बात कर रहे हैं 40 के दशक के मशहूर संगीतकार खेमचंद प्रकाश की। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्हें समुचित सम्मान और प्रसिद्धि मृत्यु उपरांत मिली है। खेमचंद प्रकाश उन्हीं में से एक थे।

0: हेमचंद प्रकाश का जन्म 12 दिसंबर 1907 को राजस्थान के सुजानगढ़ में हुआ था। न केवल संगीत बल्कि नृत्य की भी आरंभिक शिक्षा उन्हें अपने पिता से मिली, जो राज दरबार में ध्रुपद गायक और कथक नर्तक थे। किशोरावस्था में ही खेमचंद प्रकाश को पहले बीकानेर और उसके बाद में नेपाल के राज दरबार में गायक कलाकार के रूप में नियुक्ति मिल गई थी। आगे किस्मत उन्हें कोलकाता ले आई, जहां वे सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर्स में नियुक्त हुए। 1935 में बनी फिल्म देवदास के संगीतकार तिमिर बरन के सहायक के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। 1938 की फिल्म स्ट्रीट सिंगर के लिए खेमचंद प्रकाश ने एक मजाहिया गीत भी गाया।
1: लो खा लो मैं जम खाना, खा लो मैं जम खाना।

0: गया तंगाई रास्ते में ठोकर खाई, मैंने न गया तंगाई रास्ते में ठोकर खाई, और चोट देखो आई और चोट देखो आई।
1: उसके बाद खेमचंद प्रकाश मुंबई आ गए। शुरुआत हुई 1939 में। सुप्रीम पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्में मेरी आंखें और गाजी सलाउद्दीन के लिए उन्होंने संगीत निर्देशन किया।

और फिर बहुत जल्द रणजीत मूवीटोन फिल्म स्टूडियो के नियमित संगीतकार के रूप में खेमचंद प्रकाश नियुक्त हुए। उस शुरुआती दौर में रणजीत मूवीटोन की फिल्में थीं दिवाली, होली, परदेसी, फरियाद इत्यादि। उन दिनों खेमचंद प्रकाश के गीतों में ज्यादातर स्वर होता था खुर्शीद का। इस जोड़ी ने 40 के दशक के आरंभ में बहुत से मशहूर गीत दिए। 1943 में बनी रणजीत स्टूडियो की फिल्म तानसेन जबरदस्त हिट हुई।

राजा आपनो विसरन थाए बिराजा आपनो ये अचल जहानी रोम चुम रोम चुम रोम चुम रोम चुम रोम चुम रोम

1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आई जिद्दी। इस फिल्म में एक गायक के रूप में किशोर कुमार को सबसे पहला अवसर दिया संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने। जिद्दी का ही एक और गीत जो लता जी ने गाया था, संगीत प्रेमियों द्वारा खूब पसंद किया गया।

और फिर 1949 में आई फिल्म महल। महल के पहले बाजार में फिल्मी गीतों के जो रिकॉर्ड्स मिलते थे, उन ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पर फिल्म की कहानी के उस गीत को पर्दे पर गाने वाले पात्र का नाम हुआ करता था। महल फिल्म का ये गीत आएगा आने वाला रिकॉर्ड पर इन बोलों के आगे नाम लिखा था कामिनी। ऑल इंडिया रेडियो से ये गीत प्रसारित हुआ। बहुत से सुनने वालों ने रेडियो के दफ्तर में फोन करके जानना चाहा कि ये आवाज किसकी है, और फिर रेडियो से गायिका का नाम प्रसारित हुआ लता मंगेशकर, संगीतकार खेमचंद प्रकाश। इस गीत को और लता जी को बेशुमार शोहरत हासिल हुई, मगर अफसोस महल के रिलीज होने से 2 माह पूर्व 10 अगस्त 1950 को संगीतकार खेमचंद प्रकाश 42 वर्ष की अल्पायु में इस संसार से विदा हो चुके थे।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार खेमचंद प्रकाश पर, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब जयंत पात्रीकर को दीजिए इजाजत।
1: आज के फनकार।

0: अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
1: माननीय सभापति जी,
2: क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 226 डॉक्टर के लक्ष्मण गौरव।
3: प्रश्न संख्या 226, क्या विद्युत मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत संशोधन नियम 2026 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के प्रारूप के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख उद्देश्य तथा प्रमुख सुधार क्या हैं? ख, इन सुधारों से विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं 2400 घंटे बिजली आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित होने की संभावना है? और ग, इन सुधारों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श करने तथा देश भर में इनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?
2: फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर के लक्ष्मण गौरव।
4: सर, अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ अवर बिलोड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, India's power sector has undergone a historic transformation with a strong focus on ensuring affordable, reliable and sustained electricity for every year. And due to Modi ji government's policies, states like Telangana has witnessed rapid growth in industries, data centers, urban infrastructure leading to increasing electricity demands, which has significant potential for solar energy, including decentralized and agricultural solarization. So through you, I request the Honorable Minister to explain how the proposed reforms will encourage greater adoption of distributed renewable energy, battery energy storage and smart distribution system in states like Telangana while ensuring the financial sustainability of DISCOMs. Thank you, sir.
3: Shri Manohar Lal, Vidyut Mantri.
5: Sabhapati Mahoday, पॉलिसी 2026 इसको तैयार करने में डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी की फाइनेंशियल फैसिलिटी मजबूत करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं और जो प्रावधान बनाए गए हैं वो सारे देश भर के लिए लागू होंगे और तेलंगाना में भी उसी प्रकार से उनको लागू किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी तीव्रता से लाने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी स्टोरेज के साथ सबसे पहले रूफ टॉप सोलर, उसके बाद पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, इस प्रकार के प्रावधान, रिन्यूएबल एनर्जी को ओपन एक्सेस, इसमें भी सेल्फ सेल करने का प्रावधान रखा गया है। को लोकेटेड स्टोरेज अर्थात जहां जनरेशन होगी उसके निकट ही स्टोरेज के प्रावधान, चाहे बैटरी स्टोरेज के हो अथवा पंप स्टोरेज के हो, उनको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज एग्रीगेटर को बेहतर रिन्यूएबल एनर्जी का फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा एनवायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है और एनवायरमेंट की फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग एक बहुत इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसलिए ये पॉलिसी अपने सभी आयामों को ध्यान में रखकर के बनाई गई है और इस पॉलिसी में नए प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे फ्लोटिंग सोलर, एग्री फोटोवोल्टिक सॉल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है, अर्थात सोलर एनर्जी को अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सके इसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है। वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करने ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि ग्रिड स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आता है, क्योंकि ये डे टाइम में ही, यानी सोलर एनर्जी डे टाइम में ही मिलेगा और ग्रिड की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमको उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है, उसको सुधारने के लिए, पीक डेफिसिट को कम करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, इनको लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, बैटरी कंपोनेंट को भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब से पहले बैटरी के कंपोनेंट ये सभी इंपोर्ट करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि हमें अपने मेक इन इंडिया के आधार पर और सभी इसको बढ़ावा दे रहे हैं। धन्यवाद स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये ड्राफ्ट जो पॉलिसी बनाई गई है जिसको सर्कुलेट किया गया था और सभी जो भी इसमें स्टेक होल्डर थे सबका कंसल्टेशन कर लिया गया है। अब ये फाइनलाइज करने के राह पर है और इसके अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट इसके बारे में पूछा गया। डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर एक डीएसओ फ्रेमवर्क ये भी बनाया गया है। डिमांड साइड मैनेजमेंट क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट दोनों का ध्यान रखेंगे तभी हम रेगुलर पावर की सप्लाई हम कर पाएंगे। और ऐसे ही डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है स्मार्ट ईवी चार्जिंग क्योंकि आगे आगे अब हमारी जो डिमांड है चाहे डाटा सेंटर्स हो अथवा ईवी चार्जिंग हो एआई का जो इस्तेमाल हो इससे एनर्जी की डिमांड ये हमारी बढ़ने वाली है। इसलिए जीआईएस बेस्ड एसेट मैपिंग और डिजिटल ट्विन इसी प्रकार टाइम ऑफ यूज टैरिफ यानी टाइम ऑफ यूज में जिस समय हमारे पास सोलर पावर ज्यादा है उस समय उसका यूज ज्यादा बढ़े जब हमारे पास पावर की कमी है उस समय डिमांड की शिफ्ट की जाए तो टाइम ऑफ यूज टैरिफ को भी इसका प्रोत्साहन देने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा सके। मान्यवाद डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी क्योंकि आज पावर डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा अगर कोई कठिन बात है वो डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी ये कंफर्म है। सभी डिस्कॉम

0: किया जाता था, लेकिन ऑटोमेटिक टैरिफ के अंदर उसका जो है कैसे पास थ्रू हो। हमारे एपीएमसी लॉसेज एक समय था 2014 में जब 30% से भी ऊपर था, अभी देशभर का जो एपीएमसी लॉसेज है वो लगभग 15% है, काफी कम आया है, लेकिन इसको और भी हमको इसको कम करना है, वो भी इस पॉलिसी के अंदर दर्शाया गया है। कैसे लॉस रिडक्शन हो, कैसे हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कोई प्लान परफॉर्मेंस अच्छा करता है उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट, ये कैसे कम हो, क्योंकि कॉस्ट को कम करने के लिए कई तरीके होंगे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, ये कैसे कम हो। ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडी बर्डन इसका कम करने के लिए स्टोरेज के साथ साथ एग्रीकल्चर फीडर के संरक्षण को भी प्रभावित करती है। तो हमने तीन प्रकार के और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा बीमा योजना ने पीएम कुसुम की तीन योजनाएं बनाई गई है। पहली योजना उसके अंदर जिसको कंपोनेंट ए कहेंगे, वो 2 मेगावाट तक ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर सिस्टम जिसके ऊपर डाला जाएगा, और चाहे वो कोई भी जमीन हो, कल्टीवेटर हो अथवा बैरन हो, इसमें पावर को बना सकते हैं, पावर को ग्रिड से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी को दे नहीं सकते हैं। एक योजना उसमें कंपोनेंट बी है, जिसके अंदर हम ऑफ ग्रिड इस प्रकार के कनेक्शन देते हैं, ना पावर ली जा सकती ना दी जा सकती है, केवल किसान अपने उपयोग के लिए उस सोलर पावर का उपयोग कर सकता है। और कंपोनेंट सी, इसमें एक्स्ट्रा पावर यदि बनती है तो ग्रिड में डाल करके किसान जो अपनी इनकम भी कर सकता है, अगर किसान को अपनी फसल के इनकम के साथ साथ ऊर्जा दाता बन करके और ऊर्जा की इनकम अपने साथ जोड़नी है, तो किसान को एक बहुत बड़ा लाभ इसमें होने वाला है। तो मान्यवाद, ऐसे ही जो हमारे डाटा सेंटर्स हैं वो लगातार इसमें बढ़ रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के नाते से स्मार्ट मीटर का प्रावधान इसमें किया गया है, और स्मार्ट मीटर में भी ऑप्शनली ये भी कहा कि पोस्ट पेड किस प्रकार से लागू किया जाए, तो पोस्ट पेड के हिसाब से भी हमने सबसे पहले गवर्नमेंट मीटर और उनको अलाउ किया है तो पोस्ट पेड पर आए, बाकी सबको ऐच्छिक रखा गया है, कोई आएगा तो अच्छा है, पेड के लिए इंसेंटिव की स्कीम बना रहे हैं। इसी प्रकार से तेलंगाना का जहां तक विषय है, तेलंगाना पीएम कुसुम के टोटल 1797 मेगावाट में से 84 मेगावाट अभी उन्होंने कंपोनेंट ए में उपयोग किया है। तो ये तेलंगाना के नाते से इस प्रश्न का जैसे मैंने उत्तर दिया, इसको स्टेक होल्डर इनपुट पर ध्यान करके ड्यू कंसल्टेशन के बाद फाइनल पॉलिसी नोटिफाई की जाएगी।
1: नाउ द सेकंड सप्लीमेंट्री सक्रम सिंह साधु जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पंजाब में एफिशिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए 9600 करोड़ रुपए का आपने सैंक्शन किया। पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसान की खेती के लिए बैकबोन है चेयरपर्सन साहब, और हाईली डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। 14 लाख ट्यूबवेल से किसान खेती के लिए पानी निकालता है, और मैं किसान का बेटा हूं, मैंने देखा कि खेतों में जो खंभे लगे हैं बिजली के वो हमारे लिए बाधा बन रहे हैं। मैं मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, सवाल भी पूछना चाहूंगा कि खेतों में से खंभे हटाकर अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए अभियान चल रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा, और पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी जा रही है केंद्र की ओर से, मेरा ये सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद
0: सभापति महोदय। ये विषय जो कि पंजाब के आंकड़ों से जुड़ा हुआ है, वैसे तो सारी योजनाएं जो भी बनाती हैं प्रदेश सरकारें बनाती हैं और अपने दायरे को रख करके ध्यान में रखकर के बनाती हैं। पंजाब के जो फाइनेंशियल वायबिलिटी डिस्कॉम की, जैसा मैंने पहले कहा, ये बहुत ही अच्छी नहीं है, तो पंजाब के डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी को देख करके ही उनको ऋण मिलता है। ये ठीक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं मुझे मिलने आए थे, उनको ऋण की आवश्यकता आरईसी से पीएससी से थी, लेकिन आरईसी पीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनको उसकी वायबिलिटी अपने आप देखनी है कि कौन सा लोन हमको देना कौन सा नहीं देना है। हाँ, जहां तक पावर किंग की डिमांड है, इस डिमांड को भी समय समय पर पूरा करते हैं, जब भी ये मांगते हैं तो करते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे कहने के अनुसार भी पंजाब के डिस्कॉम या पंजाब की सरकार आगे नहीं बढ़ती है, आगे न बढ़ने के कारण से, सेलमेंट के कारण से चीजें सहानुभूतिपूर्वक सोची नहीं जा सकती। उसका कारण है कि बाजार में बिजली मिलती है, अगर खरीदनी है तो बाजार से खरीदी जा सकती है, लेकिन बाजार से खरीदने के लिए पंजाब के पास

0: ऐसा नहीं है। और पंजाब ने विशेष तौर पिछले साल का जो एक हमारा क्लोज करने का ऑर्डर होता है उसमें एक एम्बिग्युटी पाई गई, उस एम्बिग्युटी के कारण से उनका केस एप्पल में चला गया। एप्पल ने अभी निर्णय देना है, जैसे ही ये एप्पल का 16 अगस्त को 18 अगस्त को डेट लगी है, उस प्रकार से जैसा निर्णय आएगा इनकी फाइनेंशियल ठीक होंगे तो इनको पूरी सहायता की जाए। इसमें
1: श्रीमान विजय खंडकालिया जी, श्रीमान विजय खंडकालिया जी,
2: धन्यवाद चेयरमैन जी। सर पूरी माता ग्रीन हाइड्रोजन हब इन अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट, दिस इज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इनॉग्रेटेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन आई एम विटनेसिंग दिस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन अवर ओन डिस्ट्रिक्ट। सो द प्रोजेक्ट एनविसेज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 1.85 लाख करोड़, इंक्लूडिंग 20 GW ऑफ रेन्यूबल एनर्जी कैपेसिटी, एंड इज प्लांट टू प्रोड्यूस 1500 TDP ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड 7500 TDP ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव। सर माई क्वेश्चन हियर इज आई वॉन्ट टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर इफ द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग मेजर्स टू एंश्योर टाइम बाउंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन NTPC, द सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी एंड अदर कंसर्न सेंट्रल एजेंसीज फॉर द रिक्वायर्ड ट्रांसमिशन एंड ग्रिड कनेक्टिविटी सो दैट एडिक्वेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन प्लेस हेड ऑफ कमिशनिंग एंड डज नॉट कंस्ट्रेन द हब प्लान कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: शुभापन सिंह महोदय, वैसे तो जो उन्होंने प्रारंभ किया कौन से प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहा है ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी इन जनरल जो ने विषय उठाया कि ट्रांसमिशन की जो कठिनाई है जो दिक्कत है मैं मानता हूं, बहुत से एरियाज में अलग अलग कारणों से ट्रांसमिशन लाइन की दिक्कतें आती हैं। ट्रांसमिशन लाइन चूंकि बहुत से मल्टी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जनता का विरोध भी होता है, किसानों का विरोध भी होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, उन सबको सुधार करने के बाद हम ROW का जो सेक्टर विशेष तौर पर रहता है उसके लिए नई गाइडलाइंस तय की है। और नई गाइडलाइंस मुझे खुशी है इस बात की कि कुल मिलाकर 17-18 स्टेट्स ने नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, और नई गाइडलाइंस जारी करने के बाद किसानों का कंपनसेशन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गया उनको और वहां की लाइनें चालू हो गई हैं। लेकिन जहां कहीं ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं बनेगी वहां इवैक्यूएशन करने में जनरेशन होने के बाद भी कठिनाई आएगी, इसलिए जहां कहीं भी विषय कर रहे हैं वो प्रश्नों के अलग से स्थान के बारे में कोई बताया गया तो जैसा अलग प्रश्न रखेंगे उसका उत्तर दे
1: देंगे। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रोफेसर मनोज कुमार झा, तो श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी,
3: मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पहली बार इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है, आपके माध्यम से मैं विद्युत मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ जहाँ नया उद्योग धंधे खुल रहे हैं और लगातार विद्युत की आवश्यकता बढ़ रही है, तो क्या इस संबंध में दृष्टिगत रखते हुए जो बलौदा बाजार जिला है छत्तीसगढ़ का वह सीमेंट उद्योगों का हब है और वहाँ लगातार ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो क्या नवीन प्लांट ऊर्जा से संबंधित वहाँ लगाने की कोई योजना है या अन्य जिलों में छत्तीसगढ़ में कोई नई ऊर्जा से संबंधित हमारे ऊर्जा प्लांट लगाने की कोई योजना है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सदन को, वे मुझे यहाँ आप सबके बीच में पहली बार आज बात रखने का मौका मिला है, सादर प्रणाम।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर,
0: आदरणीय सभापति जी, वैसे देश भर में इस समय पावर की कहीं भी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हमने इस बार हाईएस्ट पीक डिमांड पावर की 270.8 GW एवर हाईएस्ट इसको हमने आपूर्ति की है, और आज भी हमारी तैयारी है तो 284 GW की हमारे पास कैपेसिटी है, अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पूरा करेंगे। अगले वर्ष में 300 से ऊपर GW की हमने योजना बना ली है, इसलिए पावर देश भर में अब सरप्लस कहना कहें लेकिन पावर सफिशियंट हम अपने देश के अंदर है। इसी प्रकार से अब हर प्रदेश में अपनी योजनाओं स्वयं बनाते हैं, किसी प्रदेश में कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, यदि उनको पावर कहीं अपने रीजन के अंदर पावर नहीं मिलती है तो ट्रांसमिशन के कारण से पावर अगर नहीं पहुंचती तो अलग बात है, अन्यथा पावर ताज ओपन मार्केट में भी उपलब्ध है और ओपन मार्केट में जितनी उपलब्ध होती है उतनी खरीद भी आती नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ का जहां तक विषय है कहीं पावर की कोई भी हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई डिले हो रहा है तो स्थानीय विषय कोई हो सकता है, अगर अलग से उसका प्रश्न आएगा तो सब जवाब देंगे।
4: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश कार्यक्रम रजनीगंधा।

0: साढ़े तीन बजे।
1: अभी आप अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में सुन रहे थे फिल्म आज का अर्जुन से ये गीत। अब आइए कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और बप्पी लहरी की आवाजों में।
2: प्यारा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक फिल्म से। आज की फिल्म है आ अब लौट चलें।
1: ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ, कुछ

इसी गाने के साथ कार्यक्रम एक फिल्म से समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
4: Consequential amendment in related enactment.
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन में तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश के बाद बाढ़ आने की खबर है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तट से टकराने के बाद तूफान के कमजोर पड़ने के बावजूद खतरा बना हुआ है। आज सुबह तक फुजियान प्रांत में जमीन और समुद्र दोनों तरफ के संवेदनशील क्षेत्रों से 168,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is आकाशवाणी।
2: द न्यूज रेड बाय आर एस रघु। The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion. Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025 and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. Replying to the discussion, the Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment and promote manufacturing activities. She said the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users.
5: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protections against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
2: The Parliament also passed the Bankers Books Evidence Bill 2026, with Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Lok Sabha Speaker Om Birla today made a personal appeal to the floor leaders to cooperate in the smooth functioning of the House and participate in the discussion on key bills. Mr. Birla stated this during the Business Advisory Committee BAC meeting held at Parliament House. He said, "The people's issues cannot be left waiting in the corridors and they must be reflected, debated and resolved on the floor of this House." Speaking to reporters at the Parliament premises,